0: Thomas Kunjegi.
1: You're listening to Avineet.
2: Kia ora, bula, salam, namaste, sasrikal. Main hu aapka saathi Avi, aapka saath dene ke liye aa gaya hu ek baar phir. Aaj Tuesday hai, 18th of August, aur ye hai कारवा सिलसिला लंच बॉक्स का. अभी से लेकर तीन तक हमारा और आपका साथ रहेगा. ऐसे में ढेर सारी बातें भी आपके साथ में होती रहेंगी और बीच बीच में आपके लिए ढेर सारे यूं कहें मेलोडियस नंबर्स भी प्रेजेंट करते रहेंगे. ये सभी कुछ आपके फेवरेट डायल हम पर, प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. और हाँ, याद रहे आपके जो मैजिक नंबर्स है 5599, यहाँ पर आप अपने प्यारे प्यारे टेक्स्ट मैसेजेस भी हमारे लिए भेज सकते हैं. ये सभी कुछ रहेगा. सुनते रहिए वेलकम टू द शो. अभी का ढेरों सारा प्यार.
1: Bajao kya?
3: Everybody ready?
4: Ready, ready.
3: Beats ready, ya? Shanai? Mic testing 1, 2, 1, 2, 3, 4.

आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स विद अवि ओनली ऑन हम, और आज के शो को स्टार्ट करते हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ काइंडनेस, यानी कि आप अक्सर दूसरों को काइंडनेस शो करते हो, उनके लिए आप बिल्कुल काइंड होते हो, लेकिन हाउ काइंड आर यू टू योर सेल्फ? ये एक सवाल है जो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि अक्सर आप अपने बिजी लाइफस्टाइल में आप खुद को सेकेंडरी ऑप्शन रखते हो, आप परफेक्शन के लिए इतना भागते हो, सेल्फ क्रिटिसाइज करते हो, और कहीं ना कहीं आप खुद को पिंपा करना भूल जाते हो। इसीलिए आज के लिए ये नोट है आपके लिए कि आप खुद को भी थोड़ा सा काइंडनेस शो करें, और इसी नोट पर इस शो को शुरुआत करते हैं। मैं हूं अवि, ढेर सारा प्यार दीजिएगा ऑन 5599 और 104.2 FM साथ में रोवा पर।

0: face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
4: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
5: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
6: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Jams, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 p.m. Vedic Center Papatoy. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds Gift of Life Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh Papatoy or Shu Prasad, Kelston.
7: Non-stop Bollywood.
8: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते
7: हैं. हम playing Bollywood's biggest hits.
9: Lunchbox with Ketan.
10: हीरा लड़का है. Telescope लेके ढूंढेगी ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
9: हम. Office shoutout.
11: हम पर लंच बॉक्स में नाउ इज टाइम टू डू अ ऑफिस शाउट आउट और जो मैसेज आया है हमारे पास में ये है बेस्ट आर्ट बोटनी जंक्शन से जहां पर प्रिया और आहुति अपना लंच ब्रेक ले रही हैं और किचन में सुन रही हैं हमको यानी कि हमारे साथ में जुड़ी हुई है थैंक यू सो मच आपने पहले भी मैसेज किया है मेरे ख्याल से इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहिएगा और भी बातें आपके साथ में होती रहेंगी लेकिन जो अपकमिंग गाना है ये खास आप दोनों के लिए इन्जॉय योर लंच ब्रेक
7: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

लंच बॉक्स में मैं अभी आपको याद दिला देता हूँ हमारे रक्षाबंधन प्रमोशन के बारे में जो हमारे सोशल मीडिया पर जारी है। जी हाँ, हमारे हम फेसबुक पेज, हम 104.2 एफएम के फेसबुक पेज पर, यहाँ पर आपके पास में अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप $300 कैश इनाम रक्षाबंधन के मौके पर जीत सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना होगा, आपको हमारे हम फेसबुक पेज पर जाकर जो हमारा पिन पोस्ट है राखी का, इसके नीचे आप अगर जो भाई हो और अपनी बहन को लेकर कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट हो जो आपके लिए बिल्कुल प्यारी हो, आपकी बहना ने दिया होगा आपको, या फिर आप बहन हो और आपके भाई ने कहीं दूर से आपको एक गिफ्ट भेजा होगा विच यू चेरिश अलॉट, तो ऐसे ही गिफ्ट्स को लेकर, ऑब्जेक्ट्स को लेकर जो आपके लिए बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई है, तो इसका फोटो उतार के आप उस फेसबुक पेज के नीचे उस कमेंट में डाल दीजिए पिन पोस्ट के नीचे। और यहाँ पर फोटो अपलोड करने के बाद में बस दो तीन लाइंस लिखिए कि क्यों ये जो ऑब्जेक्ट है आपके लिए बिल्कुल स्पेशल है। इसके साथ में आप अपने सिबलिंग को टैग करिए, बस इतना ही करके आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगी या हो जाएंगे जहां पर आप $300 का कैश इनाम जीत सकेंगे फ्राइडे 28 अगस्त को। इसके अलावा जो आपकी विनिंग स्टोरी रहेगी इसे लाइव ऑन एयर आपके लिए पढ़ा भी जाएगा। ये सभी कुछ अंडर रक्षाबंधन सोशल कॉम्पिटिशन, सोशल मीडिया कॉम्पिटिशन, हमारे हम फेसबुक पेज पर।

0: हम पर लंच बॉक्स में मैं हूं आपका साथी अभी बस कमिंग अप नेक्स्ट आपके साथ में चटनी शॉट्स में कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर भी बातें होंगी बस थोड़ी देर में
1: लंच बॉक्स विद केतन
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं
1: इसके पीछे
3: हम
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर।
1: Hey नेहा, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
2: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
1: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
3: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
4: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
5: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
6: And award goes to Indelible Homes.
5: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
7: Kahani of Indelible Homes.
8: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Jams, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoi. Tickets sir, $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, gift of life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoi, or Shiv Prasad, Kelston.
9: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
10: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
9: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
10: Available at selected branches. T's and C's apply.
11: Lunchbox with Ketan.
12: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
13: चटनी शॉट्स.
14: हम पर लंच बॉक्स में मैं हूँ आपका साथी अभी और आज चटनी शॉट्स में आपके साथ में चर्चा करेंगे एक ऐसे टेम्पर जिसको आपने शायद पहले कभी सुना होगा. इसको कहते हैं ब्रेन फोग, जहाँ पर आपको कंसंट्रेट करने में डिफ़िकल्टीज होती है. इसके साथ में आप चीज़ें आसानी से भूलने लगते हो. तो अकॉर्डिंग टू BBC रिपोर्ट, आपके लिए क्या काम कर सकता है कि आप खुद के लिए एक रूटीन बनाएं. जब आपके पास में एक रूटीन रहेगा तो आप उस लूप से बाहर निकल सकेंगे जहाँ पर आप खुद को पूछते रहते हो आज क्या करना है या फिर अब नेक्स्ट क्या करना है. तो ऐसे में अगर जो आपके पास में एक रूटीन रहेगी जिसको आप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर आपके लिए कम हो जाएगी आपकी वॉकिंग मेमोरी से. और मोर इम्पोर्टेंटली ये भी बताया गया है कि आप ब्रेक्स लेते रहें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप ब्रेक्स लेते रहें ताकि आप अपने आप को रीसेट कर सकें. तो जैसे कि आप लंच बॉक्स में हमें सुनते हैं, इसी तरह से आप इन बिटवीन सुनते रहें. अगर जो रोवा पर आप हमारा साथ दे रहे हैं तो आप वॉक के लिए जा सकते हैं 5-10 मिनट के लिए, सो दैट यू कैन रीसेट योरसेल्फ. और मैंने कहा था ना शो के शुरुआत में, बी काइंड टू योरसेल्फ, खुद को भी पेम्पर करना जरूरी है. तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा था ताकि आप भी इसे फॉलो कर सके. अगर जो एक क्लाउडीनेस होती है सोच को लेकर, क्लैरिटी नहीं होती है, तो इसको आप कॉम्बैट कर सकते हो.
15: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: लेकर आए हैं आपके लिए थ्रोबैक विद द काइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 0800 रचना. अगर जो आपको जरूरत है एक साउंड फाइनेंशियल एडवाइस की तो नंबर याद रखना 0800 रचना.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: ट्यूजडे 18th ऑफ अगस्त और अभी का जो टेम्परेचर फील कर रहे हैं अराउंड 14 डिग्रीज तक है. सनसेट एट 5:50 PM दिस इवनिंग 6 डिग्रीज ओवरनाइट टेम्परेचर्स रहेंगे. वेदर मेनली फाइन फोरकास्ट किया गया है लेकिन चांसेस ऑफ अ फ्यू शावर्स इन द आफ्टरनून हियर एंड देयर.
0: लंच बॉक्स विद केतन.
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
0: लंच के मंच पे You're listening to Avineet.
1: हम्पर इज जस्ट आफ्टर वन. मैं हूँ आपका साथी. अभी तीन तक ये कारवा सिलसिला चलता रहेगा आपके साथ में. इस आओ पर भी ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं आपके साथ में शेयर करने को. इसके अलावा कुछ हॉट एंड स्पाइसी गाने भी है आपके लिए जो आपको कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती रहे. अभी का साथ है और इसी तरह से साथ देती रहेगा. कीप हमिंग.
0: बचाओ

0: गरम मसाला।
1: हम पर आप सुन रहे हैं अभी को और ये है लंच बॉक्स। और लंच बॉक्स में गरम मसाला के अलावा और सारी चीजें भी होती रहती हैं, जैसे कि कमिंग अप नेक्स्ट इज लंच टाइम रेंट लाइन, जहां पर एक टॉपिक और आपके लिए लेकर आया हूं। और आज का टॉपिक है वेट टाइम्स डिस्पाइट अपॉइंटमेंट, यानी कि आपको कहीं पर जाना है, ये क्लिनिक्स हो सकती है या फिर सलून्स हो सकती है या फिर यू कहें कि मैकेनिकल गैरेजेस में अपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन डिस्पाइट अपॉइंटमेंट के आप जब वहां पर टर्न अप होते हो, आपके लिए होता है एक लंबा सा वेट टाइम। इसके बारे में आपका क्या कहना है, 5599 पर आप मैसेज कर सकते हैं अपने ओपिनियंस, जिसके बारे में बस थोड़ी देर में बात करेंगे। याद रहे वेट टाइम्स डिस्पाइट अपॉइंटमेंट, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, 5599 पर जरूर मैसेज करें।

0: with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
0: रुजबे टिकट्स बुक हो गए
2: तो फिर देर किस बात की। बाली बुला रहा
0: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
0: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
1: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको मन बहल जाएगा आपका भी।
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे ओनली ऑन हम।
5: हे नेहा कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
6: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया। मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
5: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
7: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
8: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy, with Electoral Commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enrol, check, or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
9: Home loan के साथ थोड़ा cash भी पाना चाहते हैं? नया home loan लेना हो या मौजूदा loan का review करवाना हो? Squirrel आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त deal कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए power of the Squirrel effect. Squirrel.co.nz.
10: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoi. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, gift of life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jays Fresh and Valley Fresh, Papatoi or Shri Prasad, Kelston.
11: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ। बोली बस मेरा फोकस है।
12: हाँ। अच्छा
11: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
12: मिसेस सिंह
13: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
14: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
15: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the winter sparkle celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Centre, Auckland.
0: Lunchbox with Ketan.
3: Mujhe pasand hai ladka.
0: Hum. Lunchtime Rant Line.
16: आज लंच टाइम रेंट लाइन में जबकि टॉपिक है वेट टाइम्स डिस्पाइट अपॉइंटमेंट, यानी कि कहीं पर आपने अपॉइंटमेंट बनाकर आप गए हैं लेकिन इसके बावजूद आपको वेट करना पड़ता है। तो हमारे पास में मैसेज किया है कुसुम ने। कुसुम लिखती है कि आई हैव टू फेस दिस एवरी टाइम आई गो टू माई हेयर ड्रेसर। डिस्पाइट मेकिंग एन अपॉइंटमेंट आई हैव टू स्टिल बी वेटिंग फॉर अ टाइम अप टिल 20 to 25 minutes। Oh, that's a quite long time. Lekin aap kehti hain ki I do understand that sometimes it's beyond our control, but how can this be every time? Point to be noted. Ji haan, Kusum, thank you so much. Aapne share kiya hai. Aur iske saath mein, Ravin ne message kiya hai. Ravin likhte hain, I do understand that medical appointments sometimes are out of our control and the doctor's control as well because there are some emergency cases. So in these circumstances, I do understand the wait times. But for other situations, I have to tell you that I have also experienced where I have made appointments at other places, but I had to be waiting in line. ओह थैंक यू फॉर शेयरिंग. तो ये काफ़ी लोगों के साथ में होता है मेरे ख्याल से कि जहाँ पर आप अपॉइंटमेंट बनाते हो लेकिन इसके बावजूद भी आपको वेट करना पड़ता है. तो कुसुम मैं आपसे यही कहूँगा कि मे बी यू कैन शेयर योर ओपिनियन विद योर हेयर ड्रेसर. कभी कभी क्या होता है कि पीपल डोंट रियलाइज अनटिल आप उनको बहुत ही अच्छी तरीके से आप बता सकते हो. हंसकर मुस्कुरा कर आप उनसे यही बताइए कि आपके साथ में ऐसा होता है. मे बी दे आर एबल टू कम अप विद अ सोल्यूशन.
4: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम पर आपके लिए एक और एक प्रमोशन चल रहा है जिसका नाम है हम बोर्डिंग कॉल एंड हम बोर्डिंग कॉल इज नाउ ओपन जहां पर आपका ड्रीम आइलैंड एस्केप इज जस्ट वन बोर्डिंग कॉल अवे आप जीत सकते हैं टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनवातु विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी आपको क्या करना होगा एंट्री के लिए आप सिर्फ हम सुनते रहें एवरी वीकडे और अपने कान खुले रखें फॉर द स्पेशल बोर्डिंग कॉल जो सुबह 8 पर आपके लिए उसी आवर पर उसके आसपास आपके लिए बच सकता है दिन में 11 पर आपके लिए बच सकता है अराउंड दैट आवर और साथ में अभी हमारे साथ में लंच बॉक्स में अराउंड 1 के आसपास या देयर आफ्टर आपके लिए बच सकता है तो आपको सिर्फ सुनना होगा एंड राइट इन द आफ्टरनून एट 5 आपके लिए ये बच सकता है तो एज सून एज यू हियर द बोर्डिंग कॉल जो क्यू बजेगा आपके लिए उसके बाद में आपके पास में 60 मिनट्स है टू हेड टू रोवा एंड डू योर एंट्री जहां पर आप सिर्फ टाइप करें बोर्ड नाउ और सबमिट क्लिक करें और इसके लिए अगर जो आपको कॉम्पिटिशन पेज लिंक चाहिए तो BC लिखकर 5599 पर जरूर भेजें बस आप एंट्री में शामिल हो जाएंगे एज यू गो अलोंग दैट्स इट यू विल बी इन द ड्रॉ टू विन एन अनफॉरगेटेबल वनवातु गेट अवे डोंट मिस योर फ्लाइट बिकॉज दिस वन कुड टेक यू टू पैराडाइज हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 टाइम्स ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ओकलैंड टू वनवातु और विजिट करें flysolomons.com T's and C's do apply.

0: लंच बॉक्स में हमने आपको हम बोर्डिंग कॉल के बारे में बता दिया, लगे हाथों आपको कम्युनिटी न्यूज के बारे में भी बता दे कि जहां पर न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रहा है टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो रहेगा 22nd और 23rd अगस्त को एट बेकनहेड स्काउट्स हॉल, और इस पर एंट्री इन्फॉर्मेशन के लिए आप जाकर विजिट कर सकते हैं न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फेसबुक पेज या फिर NZCA के प्रेसिडेंट पंकज को 02109085067 पर आप कॉल कर सकते हैं। आपकी स्किल लेवल या बिगना पर हो, बिगना लेवल पर हो या फिर आप एक बहुत ही स्किल्ड प्लेयर हो, आप जैसे भी लेवल पर हो आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप इसमें भाग ले। और इसके साथ में सैंडी और रुजबे ने बातें की हैं पंकज के साथ में टॉकिंग अबाउट द गेम। अगर जो अभी तक आपने इस गेम को एक शॉट नहीं दिया है, कैरम बोर्ड को आपने शॉट नहीं दिया है और आप इसको इस गेम को समझना चाहते हो तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा जैसे ही आप सी और बी यानी कि लेटेस्ट सी बी लिखकर 5599 पर भेजोगे, आपको इस गेम को लेकर काफ़ी इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल जाएंगी जिसके बाद शायद आपका भी इंटरेस्ट डेवलप हो टू प्ले कैरम बोर्ड। तो ये सभी कुछ आपके साथ में शेयर कर रहे थे।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: Driving you home.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुजबे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी वो.
3: अभी ब्रांड हो गया ना.
2: रुजबे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
6: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
5: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
7: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
0: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
8: Kiwi kids are active kids, creative kids, sporty kids. Are you a Weet-Bix kid?
9: Want to be rewarded five times faster? Boost your offers in the Everyday Rewards app, spend with our partners and scan your card to enjoy more points. Download the Everyday Rewards app today and boost away. TCs and exclusions apply.
10: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
11: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
12: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
13: इसके पीछे
14: लंच के मंच पे
15: हम पर लंच बॉक्स में लंच के मंच पे आपको एक स्पेशल अपडेट दे दूं बॉलीवुड की दुनिया से, जहां पर फोर्थ कमिंग मूवी है रामायणा पार्ट वन और इसका अभी इंग्लिश वर्जन का ट्रेलर रिलीज हुआ और लोगों ने क्या नोटिस किया है कि जबकि ट्रेडिशनली क्या होता है किसी और भाषा में जब फिल्म को रिलीज़ की जाती है या फिर ट्रेलर को रिलीज़ की जाती है तो एक नए डबिंग आर्टिस्ट को लेकर आया जाता है जो अपने भाषा में इसको डब करते हैं और ऐसा करने के बाद में कहीं ना कहीं जो माउथ मूवमेंट होती है एक्ट्रेस की ये डायलॉग्स को मैच नहीं करती है. लेकिन रामायणा पार्ट वन की जो इंग्लिश ट्रेलर है इसमें ऐसा केस नहीं है क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का और उस टेक्नोलॉजी का नाम है DNEG AI पावर टेक्नोलॉजी जो डिजिटली एडजस्ट करती है एक्ट्रेस के माउथ मूवमेंट को ताकि वो फॉरेन लैंग्वेज में जो भाषा कह रहे हैं उसको ये मैच कर सकें. तो इट विल लुक क्वाइट नेचुरल और इसी तरीके से इसको इंग्लिश में भी डब किया गया है बाय यूजिंग DNEG AI पावर टेक्नोलॉजी. Interesting. तो अब तो मुझे इसका इंग्लिश ट्रेलर भी देखना है टू सी हाउ गुड डज इट वर्क.
14: दिल से दिल तक. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: हम पर लंच बॉक्स में अब समय हुआ कि आपको यादों की दुनिया में ले चले विद द काइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 0800 रचना। तो अगला ये तराना आप बिल्कुल एंजॉय कीजिएगा अपने लंच के साथ में।

0: You're listening to Avineet.
1: Humper Lunchbox mein, this is the final hour of the show. Jabki it's just after 2 aur main hoon aapka saathi abhi 3 tak hamara aur aapka saath rahega. Aur 3 baje ke baad mein ho jayengi aapke saath mein Sandy lekar aayengi coffee break. Kyun? क्योंकि लंच के बाद में कॉफ़ी होना ज़रूरी है, इसीलिए आपका साथ वो भी देंगी आफ्टर 3. लेकिन अभी के लिए इस हवा पर भी ढेर सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आपके साथ में शेयर करने को, और कुछ मेलोडियस नंबर्स भी है जो आपके लिए बजाते रहेंगे. बस सुनते रहिए, साथ देते रहिए हम पर 104.2 FM, साथ में रोवा पर
0: बचाओ क्या.

हम पर लंच बॉक्स में बस थोड़ी देर में आपके साथ में खेलेंगे स्किप या रिप्ले, जहां पर आज के लिए आपके पास में ऑप्शन है चुनरी चुनरी लेट्स गो, या फिर आपको सुनना है द वखरा सॉन्ग। तो 5599 पर जल्दी से मैसेज करो ताकि जो अगला गाना आपके लिए बजा सके, स्किप या रिप्ले पर आप ही की चॉइस हो, आप ही की पसंद हो।

0: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
1: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
2: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
1: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
2: पर डेवलपमेंट के पैसे
1: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
3: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
4: The all-new Mazda CX-5 is big. Big on room for growing families. Big on smart features for busy lives. Big on five-star peace of mind. It's big on everything that makes it New Zealand's favorite Mazda. Mazda.
5: I know my sales team really well, but not how to give them the tools to manage every lead.
6: When you're a Spark Business customer, you get a hub full of local tech experts to advise you on the best solutions. Spark, the best bench in business.
7: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Beautiful German Grohe Basin Mixers 149, American Standard Toilet Suite 349, Luxury Clashish Wall Vanities 399. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.

0: with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: skip your replay.
3: Alright, अब समय हुआ कि लंच बॉक्स में आपके लिए प्ले करें आपकी पसंद. और जबकि टेक्स्ट मैसेजेस की ओर देखते हैं तो नीरज ने ऑप्ट किया था फॉर द वक्रा सॉन्ग. इसके अलावा सीमा और साथ में है संकेत और सुनंदा, आपने चूज किया है जी हाँ चुनरी चुनरी को. इसके साथ में रुचिर, आपका भी मैसेज आया है. आपने लिखा है द चुनरी चुनरी सॉन्ग प्लीज, आई एम लिसनिंग इन फ्रॉम न्यू प्लिमथ, एंजॉयिंग माय लंच एंड लिसनिंग टू यू ऑन रोवा. थैंक यू सो मच रुचिर. इसी तरह से आप भी साथ देते रहे. तो कमिंग अप नेक्स्ट आप ही की पसंद पर चुनरी चुनरी.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

हम पर लंच बॉक्स में आपको बता दे रक्षाबंधन ओनेया के बारे में, जहां पर आपके पास में मौका है एक आप प्यारा सा सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू देखकर लाइव ओनेया अपने भाई या बहन के बारे में कुछ अच्छी बातें साथ में कुछ खामियों के बारे में बताकर अपने आप को ड्रॉ में शामिल कर सकेंगे, जहां पर ड्रॉ होगा 28 अगस्त को और दो लकी विनर्स को मिलेंगे $250 कैश इनाम। ये जो मौका है, हमारे जितने भी साथी है अपने शोज में आपको एक चेंज देंगे सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू देने के लिए, तो आपके पास में पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी है इसमें पार्टिसिपेट करके कुछ शानदार इनाम जीतने के लिए। सो रिमेंबर, जब हमारे आरजेस आपको मौका दे, आपको सिर्फ कॉल करना होगा 0800004866 पर।

0: हे, बाकी सब ठीक?
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: बस चल रहा है भाई।
0: What about you?
2: हाँ, चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक?
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: हाँ ठीक है।
0: और तेरा?
2: बस चल रहा है। कितना मनमोहक व्यू है, इतना सन्नाटा क्यों है, देखो ना ढलता सूरज धीरे धीरे धीरे धीरे ढल रहा है।
0: बाकी सब ठीक?

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िए लोगों का कीटो डाइट चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: तेरा भी बोलना।
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू
1: भाई? लिख के दू क्या?

0: हम पर लगे हाथ आपके साथ में शेयर कर लेते हैं कम्युनिटी न्यूज में, जबकि ओकलैंड भक्ति सत्संग लेकर आ रहे हैं ग्रैंड त्रिकोणा कीर्तन नाइट, जहां पर अच्युदन नायर सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, नितिन गाउंडर ओकलैंड से और साथ में अश्विन कुमार अप्पा लोटोका फिजी से परफॉर्म करने वाले हैं इसी फ्राइडे 21 अगस्त को। आपको सिर्फ जाना होगा वैदिक सेंटर पापटोए, जहाँ पर टिकट से सिर्फ $20। स्पॉन्सरशिप्स और इंक्वायरीज के लिए आप कॉल करें 0210667236 पर या फिर 0215588884 पर।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम। The breakfast show with Vijay and Pooja।
3: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with
4: क्या?
5: The cold weather।
4: कौन है?
5: Hunua और Waitakere।
4: अच्छा, Hunua west में?
5: किधर है Hunua?
1: The breakfast show with Vijay and Pooja,
6: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
7: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
8: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
7: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
9: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
10: At Bunnings, we've got Father's Day sorted. Jumbuck 3-piece barbecue tool set, only $10.20. Trojan 33-piece keyring compact tool kit, just $45.98. Make Dad's Day at Bunnings.
11: Bunnings Warehouse.
10: Lowest prices are just the beginning.
12: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy... And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
13: Contact supportive promo not applied. T's and C's and fees apply.
14: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
15: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
14: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
15: Available at selected branches. T's and C's apply.
1: Non-stop Bollywood.
16: Hum.
1: Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
17: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
18: इसके पीछे?
1: हम. Tech Talk.
0: हम पर टेक टॉक में अब समय हुआ आपके साथ में एक इन्फॉर्मेशन शेयर करें, जहां पर आजकल AI जनरेटेड वॉइस को लेकर गाने भी गाए जाते हैं, यानी कि रिकॉर्ड किया जाता है गाना विद एन AI जनरेटेड वॉइस। गाने की नहीं बात करेंगे एक ऑडियो की, जहां पर AI जनरेटेड वॉइस को यूज़ करके ऑडियो क्लिप्स तैयार किए जाते हैं। और अभी हाल ही में मैंने भी एक्सपीरियंस किया था, जहाँ पर कुछ एक ऑडियो रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन फाइनली इट गॉट डन बाय एन AI जनरेटेड वॉइस। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन AI जनरेटेड वॉइस को अब डोमिनेंटली यूज़ किया जा रहा है। और ऐसे में Spotify ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया फीचर, जहाँ पर सितंबर से अगर जो कोई भी गाना आप Spotify पर सुनोगे जो AI वॉइस को यूज़ किया गया है जिसमें, तो एक AI persona बेज उसके बाद में, यानी कि उसके बगल में रहेगा, ताकि आपको एज अ लिसनर आइडेंटिफाइबल रहे कि ये गाना एक AI जनरेटेड वॉइस में है एंड डज नॉट रिप्रेजेंट अ रियल वॉइस। So all of these things are happening with technology.
1: Dil se dil tak.
19: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

हम पर आपको थ्रोबैक सुनवाने से पहले बता दूं भजन जेम्स के बारे में, जहां पर रवितेश देव को प्रेजेंट कर रहे हैं साउथ ओकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड साथ में एनजेड कल्चरल ट्रस्ट, और ये आपके लिए एक ऐसी शाम को लेकर आएंगे जहां पर ये आपके साथ में प्रेजेंट करेंगे डिवोशनल म्यूजिक, फ्यूजन भजन्स और कीर्तन्स को। लेकिन इनके ग्रुप में होंगे लाइव बैंड, यानी कि इनको सपोर्ट करेगा एक लाइव बैंड विच विल बी ट्रूली यूनिक स्पेशल और एक वाइब्रंट लाइव कॉन्सर्ट सेटिंग जैसी आपको फील देगी। तो ये जो कॉन्सर्ट है आपके लिए रहेगा 22 अगस्त को। आपको सिर्फ जाना होगा 7 इन द इवनिंग एट वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एवेन्यू पापाटोए ओकलैंड, जहाँ पर टिकट्स है $30 और बच्चे अंडर द एज ऑफ 5 एंट्री बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा आपके लिए स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट्स भी बेचे जाएंगे। टिकट्स के लिए आप जा सकते हैं eventbrite.com, साथ में जेस फ्रेश, वैली फ्रेश पापाटोए, शिव प्रसाद केल्स्टन। और हाँ, याद रहे ये जो इवेंट है इससे जितने भी प्रोसीड्स इकट्ठे होंगे ये दिए जाएंगे इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी। तो एक ऐसा मौका जहां पर आपके लिए भक्ति रस प्रोग्राम भी है, लेकिन इसके अलावा आप ऐसे कार्य को भी सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको अब सुनवाने जा रहे हैं थ्रोबैक, लेकिन आप थ्रोबैक सुनते रहिए, मेरा यहाँ से जाने का समय हुआ। हमारी और आपकी मुलाकात एक बार फिर कल 12 पर होगी। इन द मीन टाइम डू टेक केयर, फिर मिलेंगे, बाय।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: Attention everyone. हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर.
3: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
2: क्या आपकी

0: सिबलिंग को ले आइए हम बोट रूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar Golden Diamonds, Botany Town Centre.
3: Farmers Red Dot sale is now on with 50% off Red Dot clothing, 60% off Red Dot Sleepyhead chiropractic beds, 40% off Red Dot beauty and lingerie, and 40% off Red Dot men's underwear. Farmers Red Dot sale is now on. Conditions and exclusions apply.
4: If you've got an injury like a sprain or strain, don't just think that rest is best. Staying active can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
5: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
6: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
7: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. A Christchurch couple has won their battle with Kmart over place and found to contain asbestos. The disputes tribunal has ordered they be paid just over $15,000 for their associated costs. Mum Al Crisp says they did not want to settle because it's not just about them.
8: We didn't want to sign our silence away. That was absolutely not on the table for us. We wanted a public decision on record.
7: Meanwhile, the Human Rights Commission wants a national inquiry into the long-term harms caused by chemical use in the timber industry. It's released a report outlining what it sees as failures to adequately recognise, support and provide redress to forestry workers exposed to PCP. As a new fund is set up to help poultry producers prepare for bird flu, the industry says their products would still be safe to eat if the worst happens. Fiona McMillan of the Poultry Industry Association says the science is clear.
9: The usual rules apply. Make sure your chicken's cooked properly, cook your eggs the right way. But this disease has been present around the world for many years. And so we know well and truly that food safety is not an issue.
7: New Zealand's population has grown slightly, with 36,000 more people than a year ago. To rugby league with Machinery House in a league of their own, Eden Park has been confirmed as the host venue for the second State of Origin clash next year. The rugby league showpiece event will be on June the 16th. Queensland great Cameron Smith has ruled himself out of the coaching contest for the Maroons, and Warriors playmaker Chanel Harris-Tavita has signed a contract extension to the end of the 2029 season.
6: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
10: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 13.5 डिग्रीज और आज ओवरनाइट 7 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. मौसम सनी ब्राइट, इट्स अ ब्यूटीफुल डे. पूरा हफ्ता ऐसा रहेगा टिल सैटरडे. सनसेट आज का 5:50 पर.
6: द बीट ऑफ बॉलीवुड
11: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
6: कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
10: 3:01 हो चुका है. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी और रवि से लेके 4 बजे तक मेरा और आपका साथ है कॉफी ब्रेक में. और फिर मेरा साथ यहाँ पे रुजबे के साथ हो जाएगा इन द ड्राइव शो. सो कैसे हैं आप? इट इज़ 18th of August. अगर आज आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. अगर आज आपकी एनिवर्सरी है, अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. कॉफ़ी ब्रेक में आज बातें करेंगे प्राइम मिनिस्टर लक्सन. वैसे इन्होंने अपोलोजाइज़ किया है. किस बात के लिए अपोलोजाइज़ किया है इसके बारे में भी जो न्यूज़ अगर आपने मिस आउट की है वो भी शेयर करूँगी. एंड और भी ढेर सारा कुछ आसपास हो रहा है. एंड आज एक बहुत ही बड़ा इवेंट भी यहाँ पे सुपर सिटी में होने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.

0: 3:11 हो चुके हैं फिलहाल, कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं। खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स ये आज इवेंट होने वाला है, जो कि हिस्टोरिकल इवेंट हम कह सकते हैं आज होने वाला है। ये शेड 10 में होने वाला है, जो कि क्लाउड में है, द क्लाउड में है, विनयर्ड क्वार्टर में। वहाँ पे ये इवेंट होगा आज 8:30। सो अगस्त के मंथ में यहाँ पे न्यूजीलैंड फैशन वीक होता है, बहुत सालों से होता आ रहा है एक्सेप्ट द कोविड ईयर। एंड न्यूजीलैंड फैशन वीक में बहुत सारी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है एंड यहाँ के फैशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इंडिया की फैब्रिक जो है खादी, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पर न्यूजीलैंड में। सो ये इट्सेल्फ एक्चुअली में बहुत बड़ी बात है। सो इंडिया के डिज़ाइनर्स यहाँ पर पहुँचे हैं एंड इस फैशन शो में, इस रनवे पे चलने के लिए। यू नो खादी जो था, जब इंडिया इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चली थी उस समय पर महात्मा गांधी ने प्रमोट किया था खादी एज पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, जहां पे इंडियंस को इनकरेज किया था कि जो लोकली मेड गुड्स है लोकल को सपोर्ट करना चाहिए एंड जो इम्पोर्टेड ब्रिटिश टेक्सटाइल्स थे उसे उस समय पर बॉयकॉट करना चाहिए। तो उस समय पर जो हैंडस्पन फैब्रिक था खादी, इट बिकेम अ पावरफुल सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड रेजिस्टेंस एज वेल। आज खादी को हम इंडियन डिज़ाइनर्स के थ्रू यहाँ पे इस ऑकलैंड की स्टेज पे एक्चुअली में देखने वाले हैं, ऑकलैंड के रनवे पे देखने वाले हैं, विच इज़ एक्चुअली अ प्राउड मोमेंट। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लास्ट ईयर जो ट्रेड मिशन था, यू नो प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सर इन्होंने साइन किया था, मेमोरेंडम इन्होंने साइन किया था, जब पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें की गई थी कि कैसे वहाँ की चीज़ यहाँ पर प्रमोट भी की जाएगी। तो ये एक्चुअली में वन ऑफ उसी का पार्ट है। सो व्हेन प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन और इंडिया के कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, इन्होंने विटनेस किया द साइनिंग ऑफ MOU विद FDCI, दे मेड अ प्रॉमिस कि बोथ नेशंस की जो पार्टनरशिप रहेगी उसमें कुछ ऐसा वो लेके आएंगे जहाँ पे वर्ल्ड वुड नोटिस। एंड खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स जो है इज़ द प्रॉमिस जो उस समय पर इन्होंने किया था। सो दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एक्टिविटी हम कह सकते हैं, एक्टिवेशन हम कह सकते हैं, जो कि आज आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करने वाले हैं। So it will be really interesting to go and witness it. So इसके लिए अगर आपको tickets खरीदनी है NZ Fashion Week वेबसाइट पर आप जा सकते हैं nzfashionweek.co.nz एंड वहाँ पर जो सर्च खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स का इवेंट जो कि आज 8:30 होने वाला है वो आप चेक कीजिए एंड बाय द टिकट्स। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली प्राउड मोमेंट कि पहली बार ये चीज़ आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू द विनर्स जिन्होंने यहाँ पे डबल पास जीता है, दो विनर्स ने यहाँ पे डबल पास जीता है, कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू देम। एंड या ये जो है इवेंट आज ही होने वाला है, रिमेंबर nzfashionweek.co.nz पे अगर आप जाते हैं तो और भी डिटेल्स आपको वहाँ पे जाके मिलने वाली है। वैसे फैशन के बारे में बात करते हैं, फैशन शोज़ के बारे में बातें करते हैं, तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी है इसको लेके। You know the most designers to present a single continuous fashion show is 357 और ये अचीव हुआ था इंडिया में ही, चेन्नई में अचीव हुआ था 2018 में। उस रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। तो ये एक्चुअली में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था वहाँ पे ड्रीम जोन स्कूल ने ऑफ क्रिएटिव स्टडीज़ चेन्नई इंडिया में 23 दिसंबर 2018 में। सो स्कूल ने ये जो रिकॉर्ड बनाया, इट शोकेस द स्टूडेंट्स टैलेंट इन अ वेरी इम्प्रेसिव वे। तो उन्होंने 1200 गारमेंट्स जो थी ये उन्होंने वहाँ पे रिप्रेजेंट की थी बाय 230 मॉडल्स। सो या इसका एक्चुअली में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। एंड ऑल्सो यंगेस्ट पर्सन टू डिज़ाइन दर ओन रनवे शो इज़ जस्ट 7 ईयर ओल्ड। सो मैक्स इनका नाम है, व्हेन ही बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू डिज़ाइन अ रनवे शो ही वाज ओनली 7 ईयर ओल्ड एंड 266 डेज ओल्ड। सो 7.5 ईयर के ये थे। ही सिलेक्टेड द डिज़ाइंस, मॉडल्स, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट हिमसेल्फ ओनली। सो ऑल्सो जो मैक्स है, ही वॉज ऑल्सो द यंगेस्ट रनवे शो डिज़ाइनर एट पेरिस फैशन वीक दिस ईयर। अभी 10 साल के वो हो चुके हैं। एंड मैक्स एलेक्जेंडर ने खुद का रनवे शो जो है ये चलाया है इसी साल में पेरिस फैशन वीक में। कॉफी ब्रेक विद सैंडी।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन।
2: मैं तो मनाऊं मात भवानी जब विश्वर संभू
1: प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन।
2: से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
3: We've all been there. 6 p.m, traffic sucks, and that chicken for dinner, still frozen.
4: Ditch dinner dread and come home to HelloFresh. Tender kiwi lamb, salmon, juicy beef, and local produce, ready in the fridge when you are.
3: Take back dinner time with HelloFresh. Hello.
5: Get dinner sorted with fresh deals at New World North Island, like whole chicken legs, $7.99 per kilo, or Pam's stir-fry kits, $4.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
6: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800-862-342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
7: Jackie didn't think she needed a DVS system.
8: Our home is brand new.
7: Does your new home have condensation? And can it get a bit stuffy sometimes?
8: Yeah, it does.
7: New homes are built tight. They don't breathe very well. DVS can help with that. We have innovative ventilation solutions for all types of homes, new or not so new. Say yes to DVS for a drier, more comfortable home.
9: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
6: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
9: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
6: Available at selected branches. T's and C's apply.

3:23 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. चार्ट बस्टर्स का गाना भी आप यहाँ पे सुनेंगे. एंड ऑल्सो साथ ही साथ आपको याद दिलाती हूँ कुछ इवेंट्स के बारे में, जैसे कि भजन जैम्स इसी वीकेंड पे होने वाला है. 22 अगस्त को ये इवेंट होगा वैदिक सेंटर में. रवितोष देओ जो है अपने लाइव बैंड के साथ इस इवनिंग में परफॉर्म करने वाले हैं, जो कि एक फ्यूजन रहने वाली है इवनिंग भजन्स एंड कीर्तन्स की. सो यू कैन एक्सपीरियंस ट्रेडिशनल डिवोशन, जहां पे बहुत ही ब्यूटीफुल सी अरेंजमेंट्स रहेंगी. एंड दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय साउथ ऑकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड एंड दिस इवेंट इज़ क्यूरेटेड बाय न्यूजीलैंड कल्चरल ट्रस्ट. सो स्पेशल इवेंट है विच इज़ बीइंग हेल्ड इन द एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फीजी, तो इसका हिस्सा आप भी ज़रूर बन सकते हैं. रिमेंबर इसी सैटरडे को ये जो इवेंट है ये 7 बजे होगा वैदिक सेंटर में, जो कि 32 ग्लासगो एव पापाटोए में लोकेटेड है. टिकट सिर्फ $30 की है, लेकिन बच्चे जो कि अंडर द एज ऑफ 5 इनकी एंट्री एकदम फ्री रहेगी. टिकट्स आप ले सकते हैं फ्रॉम eventbrite.co.nz, वहाँ पर जाके जो टिकट्स है ये आपको ज़रूर मिल जाएगी. अदरवाइज आप जा सकते हैं जैस फ्रेश मार्ट पापाटोए, वैली फ्रेश मार्ट पापाटोए या फिर शिव प्रसाद कल्स्टर में, वहाँ पर भी ये टिकट्स आपको मिल जाएंगी.

0: 328 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. एंड रिसेंटली क्या हुआ कि नियरली 14,900 जो सुपर एनुएन एंड सुपर एनु पे जो थे यहाँ पे सीनियर सिटीजन एंड वेटरन्स, दे वर अफेक्टेड बाय एन एरर जिसकी वजह से उनका विंटर एनर्जी पेमेंट जो था ये डिस्टर्ब्ड हो गया, ये एक्चुअली में रुक गया. सो दिस हैपन बिटवीन 1 मई एंड 7 अगस्त, जहाँ पे काफ़ी लोगों के जो पेमेंट्स थी ये अफेक्ट हुई. द इशू केम बिकॉज एक लॉ चेंज हुआ था विच वॉज पास्ड अंडर अ अर्जेंसी लास्ट ईयर. सो पीपल रिसीविंग द पेमेंट सच एज अकोमोडेशन सप्लीमेंट या फिर डिसेबिलिटी अलाउंस, दे हैड टू रिकनफर्म द सर्कमस्टांसिस एवरी 52 वीक्स. सो द विंटर एनर्जी पेमेंट शुड हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट प्रोसेस, लेकिन क्या हुआ कि उसको उस प्रोसेस से एक्सक्लूड नहीं किया. So around 4,000 to 600 people were identified as needing corrective action. So MSD ने बोला है कि payments have now been backdated. वो मतलब कर दी गई है, backdate कर दी गई है. और इसी बात पे Prime Minister Christopher Luxon ने apologize किया है कि ये जो situation आई है it is unacceptable because ये उन लोगों को affect की है जिनको ज़रूरत थी. And social development minister jo hai Louise Substan, she called it unacceptable as well. There is a disagreement over the cause though. Luxon, he described ki ye ek IT issue hai, while Louise Substan and MSD ka kehna hai ki it was maybe a policy omission, not a computer system error ya staff error nahi thi ye, lekin policy and legislative omission ke wajah se ye actually mein hua hai. सो या क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रॉमिस किया है आफ्टर एक्शन रिव्यू इस चीज़ को लेके कि ये जो एरर हुई है, चाहे ये पॉलिसी ओमिशन है या फिर एक कंप्यूटर सिस्टम या स्टाफ एरर है, क्या है इसके ऊपर एक आफ्टर एक्शन रिव्यू होगा. सो लेट्स सी आगे क्या होता है. बट लुईस अपस्टर विल नीड टू रिटर्न टू पार्लियामेंट टू फिक्स द लेजिस्लेशन एज वेल.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Streaming on Rover.
1: Rebel's 30th birthday continues with $30 deals on now. That's selected kids' clothing, hydro flasks and Nike equipment for only $30. Plus save $30 off selected casual running and kids' shoes. $30 deals and so much more on now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
2: And phir Mrs. Singh se maine pucha, enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho? Boli, bas, mera focus hai.
3: Achha,
2: batao, toada focus, saada kuch nahi.
3: Shh, Mrs. Singh.
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
5: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
6: A safe night can change everything. That's why Contact donates the energy to power women's refuge. This winter, when you donate a safe night for someone seeking safety, we'll match it up to 5,000 nights. Donate now at safenight.nz.
7: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi, $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
9: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
8: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
9: Available at selected branches. T's and C's apply.
10: Coffee Break with Sandy.
11: कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. वैसे अगर आप वेस्ट गेट की ओर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा वहाँ पे बहुत बड़ी एक स्टोर की कंस्ट्रक्शन हो रही है. रिसेंटली उन्होंने वहाँ पे वैसे बैनर भी लगा दिया है कि किसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है. इट्स अ के मार्ट. एंड के मार्ट जो वहाँ पे ओपन अप होने वाला है, न्यूज़ आई है कि ये न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा स्टोर रहने वाला है जो कि वेस्ट गेट में ओपन अप होगा. एंड इसका कुछ फ्रेश रिफ्रेश कर दिया गया है इन्होंने स्टोर का लेआउट. बिकॉज अभी के मार्ट का क्या स्ट्रक्चर है कि सेंटर में उसका पेमेंट सिस्टम रहता है. स्टोर के एकदम सेंटर में आप पेमेंट करने के लिए जाते हो, बट दिस विल बी लाइक बाकी स्टोर्स होते हैं, फ्रंट में जाके आपको पेमेंट्स करनी होगी. 10 सितंबर से वैसे ये जो स्टोर है ओपन अप हो जाएगा, विच विल ट्रेड 24/7, नॉट जस्ट हॉलीडे टाइम के लिए, बाकी टाइमिंग्स के लिए भी ये स्टोर 24/7 चलने वाला है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग बिकॉज इट्स गोना क्रिएट मोर जॉब्स एज वेल. सो इट्स गोना क्रिएट मोर देन 200 जॉब्स ये जो ओपन अप होने वाला है. केमार्ट का ये थर्ड 24 आवर स्टोर है न्यूजीलैंड में, अलॉन्ग साइड मैनकाओ एंड सिल्विया पार्क, विच आर बोथ इन ऑकलैंड एज वेल. सो या अगर आपने वहाँ पर ये नोटिस किया है तो ये ओपन अप होगा अभी 10 सितंबर को.
10: From the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

3:46 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. मीट ब्रदर्स की आवाज़ में ये गाना आप यहाँ पे सुन रहे थे. वैसे अगर आपने कभी यू नो फोटोज़ देखी है, अगर आप इंडिया से हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारे ट्रक्स के पीछे हॉर्न ओके प्लीज़ लिखा होता है. एक्चुअली मैंने रिसेंटली पढ़ा इसके बारे में. हॉर्न ओके प्लीज़ इसकी कहानी है. दिस इज़ लाइक ये कहानी एक्चुअली में हिस्ट्री की ये कहानी है. रीज़न है हॉर्न ओके प्लीज़ लिखने का. तो मतलब जस्ट एज अ मतलब वैसे ही नहीं लिखा होता है और सारे ट्रक्स के पीछे इसलिए लिखा होता है. आफ्टर इंडिपेंडेंस वहाँ पे इंडिया में जो डीजल था वो बहुत कम हो गया था. डीजल एक्चुअली में लग्जरी हो चुका था. सो मोस्ट ऑफ इट वाज एक्सपोर्टेड अब्रॉड. सो लोकल ट्रक्स जो थे उनको इनफ डीजल उस समय पर नहीं मिलता था. सो दे रैन ऑन कैरोसिन इंस्टेड. सो टू कीप द गुड्स मूविंग जो ट्रक इंजन्स थे दे वर अडेप्टेड टू रन ऑन अ चीपर मोर अवेलेबल कैरोसिन मिक्स्ड काइंड ऑफ फ्यूल. सो प्रॉब्लम क्या हुआ, जो कैरोसिन है वो लाइक वी नो कि वो हाईली फ्लेमेबल होती है. इट्स स्लोअर, स्मोकियर भी है एंड लेस स्टेबल है. सो जो ड्राइवर्स थे उनको एक्स्ट्रा वार्निंग देनी पड़नी थी बिफोर समवन ओवरटेक देम. सो इसी के कारण वहाँ पर लिखा होता था, जो ट्रक्स थे उनके पीछे लिखा होता था हॉर्न प्लीज ऑन कैरोसिन. बिकॉज हॉर्न कीजिए बिकॉज ये ट्रक कैरोसिन के ऊपर है. नाउ ट्रक ओनर स्टार्टेड पेंटिंग दिस वार्निंग ऑन द बैक ऑफ द ट्रक सो दैट जो बाकी व्हीकल्स हैं हॉन्क करे बिफोर ओवरटेकिंग अ कैरोसिन फ्यूल.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
0: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
0: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
2: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
3: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
4: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
1: The beat of Bollywood.
5: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल आज काफ़ी कमाल, फील्स ब्यूटिफुल, फील्स लाइक 12 डिग्रीज, 13 डिग्रीज एक्चुअल टेम्परेचर. ओवरनाइट टेम्परेचर इज गोइंग टू बी एज लो एज 7 डिग्रीज, कल का ओवरनाइट रहेगा एज लो एज 3 डिग्रीज, सो इट्स गोइंग टू गेट रियली फ्रीजिंग टुमारो नाइट अगेन. आज 5:50 को होगा सनसेट.
2: Drive show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: Masti karenge, mauj kaatenge, garda paad denge. Ow.
1: 4:03, गुड आफ्टरनून ऑन 18th of August, ड्राइव शो में स्वागत है आपका. हाय सैंडी, गुड आफ्टरनून.
4: गुड आफ्टरनून रुस्बे, स्वागत है आपका ड्राइव शो में. कैसे हैं?
1: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ सैंडी. आज ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत ही फास्ट जा रहा है. एटलीस्ट अब भी 4 बजे के बाद ऐसा रपसप गया है.
4: रपसप गया,
1: 3 मिनट बहुत ही फास्ट गए.
4: तुम थे नहीं यहाँ पे ना. 3 मिनट,
1: 3 मिनट्स हैव बीन इक्वल टू 30 सेकंड्स. मैं अब भी आया, मैं बोला सुसु करके आता हूँ और इतना रपा से just went too fast.
4: Yeah.
1: Or maybe I had a lot of susu.
4: Yeah, that's another thing. Yeah. मैं वही बोलना चाहती थी, but I thought कि अब उसके बाद.
1: मेरे को ये जानना है कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि अगर आपने ऐसा सुना तो प्रेशर बढ़ जाता है.
4: मेरे साथ नहीं होता है, बच्चों के साथ होता है ये.
1: नहीं, ये काफी लोगों के साथ होता है. 0800-004-866 पे आप कॉल करें और हमें बताइए.
4: आवाज नहीं निकालने, कोई ड्राइविंग कर रहा होगा,
1: वही ना, इसलिए
4: कोई ऐसी सिचुएशन में होगा अभी, दे कैन नॉट गो. सो आपके साथ मत करना.
1: क्या आपके साथ ऐसा होता है कभी, यू नो, आप गाड़ी चला रहे हो एंड देन यू आर लाइक ओ माय गॉड माय ब्लैडर इज बस्टिंग. और मे बी
4: ब्लैडर इज ऑलरेडी फुल, लेकिन आपको रियलाइज तब होता है.
1: Any such
4: when
1: experiences?
4: When someone talk about it as well.
1: Any such bottled experiences if you have?
4: मेरे को लगता है काफी क्यों हो गए ना ऐसे experience की होता है काफियों के साथ, meeting में या कहीं पे stuck होते हैं and you really need to go, या फिर कोई तुमसे बात कर रहा हो, उसकी बातें नहीं खत्म हो रही है और आपको जाना है.
1: मेरे साथ ये ना ये in person से ज़्यादा मुझे teams call पे ज़्यादा होता ही है. क्योंकि टीम्स कॉल पे ना घर पे हो तो बैक टू बैक काफी बार कॉल्स होते हैं तो आप भूल जाते हो कि आपको जाना है. और फिर एक ऐसे कॉल में आप अटक जाते हो जहाँ पे सामने वाला बहुत बात कर रहा है लेकिन आपका ध्यान अब बस जा रहा है कि भाई तू बंद कर, मेरे को अब हल्का होना है.
4: वो जो फीलिंग तुम्हें आई ना रुस्बे, वो एग्जैक्टली फीलिंग होती है जब तुम बात बंद नहीं करते हो.
1: अच्छा ऐसे, ओह माय गॉड, सीरियसली दैट्स एन इंसल्ट यार, सीरियसली. हाय,
5: हेलो,
1: बोलिए.
5: मुझे ना ऐसा बचपन से होता है, मे बी साइकोलॉजिकली ऐसा मेरे दिमाग में फेडेड है. जब मैं नहीं जाती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता कि मुझे जाना है, पर जैसे ही मैं किचन में काम स्टार्ट करूँ, पानी भरूँ या पानी से रिलेटेड कोई काम करती हूँ ना, मुझे याद हो जाता है कि मुझे बाथरूम जाना है और बहुत जोर से जाना है, मतलब अभी जाना है.
1: काफी लोगों के साथ होता है.
4: मेरे साथ तो ये होता है जब सोने लगती हूँ ना, देन आई एम लाइक एकदम जब कंफर्ट होगी सोने के लिए तब जाके आई एम लाइक ओह अभी निकलना पड़ेगा क्या.
1: ये बहुत दिक्कत
4: और दिमाग में अटके तो नींद भी नहीं आएगी.
1: और ये ठंड में तो बहुत प्रॉब्लम होता है.
5: और मेरी मम्मी बोलती थी कि तू ड्रामे करती है, और मुझे ये अभी तक है. अभी भी जैसे कभी मैं मेरे बेटे की पानी की बोतल भरती हूँ ना, मुझे ऐसे हो जाता है कि मुझे अभी जाना है जोर से.
1: मुझे लग रहा है
5: मेरी मम्मी, कैसे बताऊँ मेरी मम्मी को कि ये जब बचपन में आप मुझे बोलते थे कि ड्रामे करती है, ये अभी भी कंटिन्यू है मेरे साथ.
1: अभी आपके बच्चे बोलते हैं ड्रामे करती है.
5: अभी वो छोटा है तो अभी वो बोल नहीं
1: पाता.
5: अभी
1: बोल नहीं पाता,
5: मैं भी बड़े होकर बोलेगा.
1: लेकिन ये मेरे को मालूम है काफी
5: बहुत होता है,
1: काफी लोगों के साथ ये होता है जहाँ पे वो अगर पानी को बहता हुआ सुने ना तो उनको ट्रिगर हो जाता है कि अरे अभी ध्यान है.
4: आप भी अपने ट्रिगर बताइए यहाँ पे. बट या थैंक यू परविंदर.
1: थैंक्स परविंदर यार. आप भी बता सकते हो यहाँ पे कॉल करके 0800-004-866. एनी सच स्टोरीज जहाँ पे यू नो इट हैज बीन लाइक एन.
4: मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था ऐसे. हाँ. रोहित, वो जो ऑस्ट्रेलिया में है.
1: हाँ.
4: उसके साथ हुआ था. तो ही वो एयरपोर्ट पे गया किसी को पिक करने के लिए, एंड ये इंडिया की बात है, वो एयरपोर्ट पे गया किसी को पिक करने के लिए, एंड जब वो वापस आ रहा था एंड वो जो अंकल थे उन्होंने बोला कि कहीं अभी रास्ते में रुकना नहीं है उसको, उनको जल्दी है. इज़ लाइक कि मेरे को ना लग लगी है, तो मैं ऐसे कहीं पर रस्ते पे रुक जाता हूँ. कहते हैं नहीं छोड़ो छोड़ो, ऐसे रात को नहीं रुकते हैं, डेंजरस होता है, इट्स नॉट गुड. कोई गैस स्टेशन आएगा तो वहाँ पे रुक जाना. वो चलते गए दूर दूर तक गैस स्टेशन ही नहीं आ रहा है. एंड उसको कह रहे बेटे ये जूस पियोगे? कहते नहीं अंकल मैं ठीक हूँ. इसे नहीं शर्माते नहीं है.
1: Oh my God.
4: So, वो सिचुएशन मुझे पता है बहुत ही ट्रिकी थी. और एक तो कोई गैस स्टेशन आया, अंकल सेट की नहीं नहीं ये सेफ नहीं लग रहा है, कोई नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आगे चलो. फिर वो एक जगह रुक के गया, उसे कंट्रोल नहीं हो, कहते अंकल आप बैठिए मैं आया.
1: Wow, crazy man. Hi, आपका भी स्वागत है.
6: Hello, Rusbe, how are you?
1: Very good, very good. How are you?
6: मेरा नाम किरण है.
4: जी किरण.
1: क्या क्या?
6: मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कभी कभी मैं ऊबर चलाता हूँ, और ये सर्दी के मौसम में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रात के टाइम पे पेट्रोल स्टेशन काफी कम हो जाता है, जैसा वॉशरूम यूज करने के लिए.
1: वो तो बंद कर देते ना वो लोग 9-10 बजे के बाद.
6: मगर खे रोड के पास नहीं तो पॉन्जन बी के पास, वहाँ पर जहाँ पर खुलता है वहाँ पर अलाउ है वहाँ पर.
1: अच्छा, ओके.
6: मगर प्रॉब्लम यह है कि ड्रॉप करने के बाद सही सलामत अच्छा ठीक है अभी मैं पेट पूरा खाली कर दूंगा बोल के खे रोड तक आ जाएंगे, फिर एक दूसरा आ जाएगा अलबनी तक. अब सोचो कि आप वॉशरूम जाए नहीं तो राइड पिकअप करके अलबनी तक जाए.
4: No.
1: क्योंकि
4: so tricky,
1: क्योंकि राइड भी पिकअप करने का टाइमिंग है ना, मतलब वो टाइम.
6: हाँ, तो उसको पिकअप करना, फिर आलबनी में छोड़ना, फिर वापस आना, तब तक कंट्रोल करना, फिर रोड पे कहाँ आके वो करना, फिर वो टाइम पे तो बहुत ही बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है बंदों का. मेरे को पता नहीं है कि दूसरे क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं. दिस इज द मोस्ट एक्सपीरियंस.
1: इंडिया में काफी बार ऐसे होता है कि हम लोग जब बैठते थे ऐसे तो वो ना ऐसे रुका देते थे बीच में, मतलब बीच ट्रिप में. बस वो टाइम पे इट वाज नॉट वो इतना टेक्नोलॉजी वाला जमाना नहीं था, बट वो रुक जाते थे और बोलते थे कि भाई 2 मिनट, और फिर हम भी अंडरस्टैंड करते कि यार यू नो कि ऑब्वियसली
6: यहाँ पर आजकल इतने सारे रील्स चल चुके हैं कि गाड़ी रोक के कहीं बाहर भी कर दिया था तो देखते रील्स.
1: नहीं बाहर नहीं करने बोल रहा हूँ यार, वो तो
4: गैस स्टेशन पे या
1: डेजिग्नेटेड वॉशरूम्स होने चाहिए, पब्लिक वॉशरूम्स या कुछ.
6: उन लोगों को वहाँ पर उन लोगों को वेट हो जाता है कि अगर मान लो कि अगर कस्टमर को थोड़ा भी देर हो गया ना वहाँ पर, वो ऊपर पूछेगा कि are you going or not or will be canceling the ride.
1: अच्छा ऐसा होता है. उसमें एक ऐप में ऑप्शन होना चाहिए कि सुसु ब्रेक.
4: बढ़िया. एक्चुअली मैं ना मेरे को लगता है कि द रियल स्ट्रगल इज देयर विद एवरीवन हु जिनके ड्राइविंग जॉब है, चाहे वो यू नो राइड शेयरिंग है, चाहे वो कुरियर है, चाहे वो ट्रक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट.
1: तो आप दिन में कितना पानी पीते हो यार किरण?
6: रात के टाइम पे पेट्रोल स्टेशन और वॉशरूम मिलना बहुत मुश्किल है. दूसरे तरफ क्या है बोले तो जैसा ये वॉशरूम होता है रोड के ऊपर, मगर वो पूरा सुनसान हो जाता है कि पता नहीं है कि कौन कहाँ से आके मार पीट जाए.
1: वो भी एक डर है ना, और गाड़ी वाड़ी चोरी कर ले वो भी एक डर है.
6: पूरा सुनसान हो जाता है अगर आपको जाए सडनली वो डोर नॉक करके सडनली वो अंदर आ गया थोड़ा भी, वो भी एक रियल स्ट्रगल एट द मोमेंट इन विंटर टाइम.
1: विंटर टाइम
4: तो अगर कोई और राइड शेयरिंग वाले यहाँ पे सुन रहे हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या टिप देना चाहेंगे?
1: किरण आप पानी कितना पीते हो फिर दिन में यार, मतलब क्योंकि मेरे को तो भी डॉक्टर बोल रहे 3-4 लीटर पानी पी मैं, मतलब
6: वो तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक पे ही हम लोग पानी पीते हैं, बीच में पानी पिया फिर सुसु आ जाएगा, फिर सुसु आ जाएगा गाड़ी रोकना है, फिर वापस तो वही दिक्कत.
4: ये तो सर्कल है.
1: बेस्ट है, बेस्ट है साथ में बॉटल रखने का पानी का, खाली बॉटल
6: देख लो कर लो
1: खाली बॉटल. थैंक्स यार किरण, थैंक्स मैन.
4: थैंक यू किरण, बाय.
1: आप भी यहाँ पे मैसेज करके हमें बता सकते हो. या वी आर टॉकिंग अबाउट हाई प्रेशर सिचुएशंस टुडे
4: इन वियर्ड सिचुएशन इन एनी सिचुएशन.
1: या मेरे पास एक बहुत ही वियर्ड नहीं मतलब बहुत ही क्रेजी स्टोरी है, लेकिन वो मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ क्योंकि आई एम बाउंडेड अंडर वो एक एक्ट है कि मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ, वो बहुत ही ऐसी पर्सनल स्टोरी
4: है वो.
1: मैरिड एक्ट नहीं. एनीवे अभी के लिए एक गाना आपको सुनाने वाला है. ये गाना मुझे लग रहा है एक रिक्रिएटेड गाना है. सुनिए आप फिर बताइए कैसा लगा.

0: inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines, plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Auckland's growing with more people on our roads every day, so we need to make better use of the spaces around your hood. AT is proposing to connect bus and transit lanes along Mount Eden Road, Sandringham and Remuera Roads to ease congestion and create smoother journeys for all road users. And we want to hear from you. To have your say, search Keeping Central Auckland Moving on the AT website. AT, your city moving.
4: Want to save $500 on your booking at Flight Centre? Bundle your international flights with travel insurance plus an international cruise or tour of 7 nights and save. Terms and conditions apply. Book in store now.
5: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewellery making charges. साथ ही $2,000 की हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेज पर पाइए फ्री गोल्ड कॉइन प्लस हैव ओल्ड गोल्ड ऑफ 18 कैरेट और मोर तो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कीजिए हरी विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट बॉटनी टाउन सेंटर ऑकलैंड
6: राइट नाउ योर टीम कुड बी विनिंग स्प्रिंटिंग पिचिंग किकिंग सिंबिनिंग एंड यू नीड टू नो अबाउट इट
7: Join
6: the Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
7: join the Tribe!
8: डिब्बा खुल गया
9: भरत भाई टिफिन खुल गए छे
10: संजना का डिब्बा खुल गया
11: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा फिर यही तो होगा
10: डिब्बा खुल गया
11: हल्दी मिर्ची गरम मसाला कशिश मसाले अच्छे वाले बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
0: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
12: Are you ready to go home?
13: The Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Kukekwe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
14: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
15: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स की ओर से आपके लिए लेकर आते हैं सुपर से ऊपर चार से पांच के बीच और फिर पांच बजे के बाद पावर ड्राइव एट फाइव
2: और आज हम गेम खेलने वाले हैं
15: ओह नो आज हम खेलने वाले कैरेक्टर गेस इट इज ट्यूजडे
2: कैरेक्टर गेस की गेम रहेगी एंड आज 6 बजे के बाद एक ऐसे लिरिसिस्ट का बर्थडे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं ये जो लिरिसिस्ट है या कैरेक्टर गेस्ट तो 5 बजे के बाद है ना मैं अभी हिंट देने वाली थी ऑफ दिस लिरिसिस्ट
15: नहीं अभी
2: उनके ये दिस इज नॉट माय कैरेक्टर गेस्ट दो या एक ऐसे लिरिसिस्ट के गाने हम प्ले करने वाले हैं जिन्होंने कुछ मूवीज को डायरेक्ट भी किया है जिन्होंने शायरीज भी बहुत लिखी है मतलब वो लिखा हुआ कुछ पढ़ दे तो वो शायरी बन जाता है
15: अच्छा
2: उनका नाम मुझे लगता है कि शायरी के साथ बहुत कनेक्टेड है
15: गुलजार
2: या वी आर सेलिब्रेटिंग गुलजार्स बर्थडे टुडे
15: ओह इट्स गोना बी एपिक है मतलब क्या गाने हैं उनके तो
2: उनके लिखे हुए गाने थोड़े गाने आज सुनने वाले
15: मेरे को नहीं पता था उन्होंने मूवी भी डायरेक्ट की है
2: उन्होंने लाइक काफी मूवीज एक्चुअली उन्होंने डायरेक्ट की है सो उसके बारे में भी बात करेंगे आफ्टर 6 पीएम
16: 6 बजे के बाद गुलजार हिट्स आपके लिए ओनली ऑन हम अभी बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करना चाह रहे हैं आपके साथ एंड दिस इज अबाउट रिसेंटली सैंडी ने अभी कुछ पढ़ा इसके बारे में इट इज अबाउट बैच कुकिंग एंड बैच कुकिंग होता क्या है पहले ये बताइए
2: बैच कुकिंग कैन सेव टाइम बैच कुकिंग बेसिकली होता है कि काफी दिनों का खाना एक साथ बना के रख लेना
16: बल्क में आप उसको बनाते हो और फिर उसको फ्रीजर में डाके फ्रीज कर देते हो
2: या बेसिकली इफ यू वांट टू स्किप द क्वेश्चन एवरी डे व्हाट्स फॉर डिनर
16: सो माय वाइफ आल्सो डज बैच कुकिंग बट वो क्या करती है वो डब्बे में पैक करके रखती है हमारे लंच बॉक्सेस में और फिर मेरे लिए वो लंच होता है तो अभी आज मैंने जो लंच लाया हूँ मैं अब ये सेम लंच मेरा कल भी होगा
2: ओके सो दैट्स अ बैच कुकिंग जो मतलब तीन दिन की ऐसे होती है या यहाँ पे भी इस आर्टिकल में भी तीन दिन का ही लिखा हुआ है कि
16: बट काफी लोग नहीं इनको नहीं पसंद आता लोगों को ये क्योंकि वो रोज उनको फ्रेश खाना चाहिए होता है
2: डिपेंड करता है मेरे को लगता है और मेरे को लगता है कि घर पे जॉब्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन किस टाइम समय तक जॉब कर रहा है आई थिंक वो भी होता है बट बैच कुकिंग का इन्होंने ये बोला है कि इट कैन सेव योर टाइम एंड मनी एज वेल
16: 100% ना क्योंकि
2: एक साथ खाना बना रहे हो ना
16: एक साथ आप खाना बना रहे हो प्लस फिर बर्तन भी आप एक ही टाइम पे कर रहे हो तो वाटर बिल भी आपका उसमें बच सकता है काफी बार
2: एंड इसमें ये बोला है कि इट वुड बी अच्छा सॉरी टाइम बचाने के लिए राइस कुकर सही होता है और जो एयर फ्रायर है इट सेव पावर एंड टाइम बोथ
16: एयर फ्रायर पावर हाँ क्योंकि अवन तो बहुत पावर लेता है
2: एज कम्पेयर टू अवन
16: राइट
2: एयर फ्रायर जो है ये सेव करता है पावर को एंड टाइम को सो ऑल्सो बिजी हाउस होल्ड जो है उसमें क्रॉक पॉट होना बहुत जरूरी है डू यू नो व्हाट इज क्रॉक पॉट एंड हमारे लिसनर में से कोई क्रॉक पॉट यूज करता है क्या
16: क्या है क्रॉक पॉट मतलब स्लो कुकर टाइप है क्या ये कुछ
2: या सो ये क्रॉक पॉट होता है स्लो कुकर टाइप ऑफ होता है ये जहाँ पे इट्स इलेक्ट्रिक स्लो कुकर सो लो स्टेडी वे से जो खाना है आपका इट टेक्स मेनी आवर्स टू कुक द फूड बेसिकली वहाँ आप उसमें सारी इंग्रेडिएंट्स डाल के बेसिकली रख देते हो देन यू डू योर स्टफ
16: मेरे को ना ये लगता है ये दिस इज मोर लाइक अ क्वेश्चन ऑन बैच कुकिंग इज इट अ देसी और अ नॉट सो देसी थिंग
2: बैच कुकिंग
16: हाँ.
2: मुझे नहीं लगता है कि इट्स अ देसी थिंग
16: इट्स
2: नॉट अ देसी थिंग आप भी कॉल करके शेयर कीजिए अगर आप करते हैं और इस आर्टिकल में रुजबे बैच कुकिंग के टिप्स दिए गए हैं लाइक थिंक अबाउट द गियर यू विल नीड सम अप्लायंस कैन सेव पावर एंड क्रॉक पॉट इज अ गुड ऑप्शन फॉर सूप करीज एज वेल सो स्टार्ट स्मॉल बाय कुकिंग वन मील दैट यू कैन ईट थ्री टाइम्स देन डू द बिगर बैचेस
16: क्रॉक पॉट सुन के आपने पूछा ना क्रॉक पॉट है क्या होता है तुम्हारे घर पे है क्या मेरी बीवी को पूछेंगे तो बोलेगी क्रॉक पॉट तो नहीं क्रैक पॉट है हमारे घर में
2: या क्रैक पॉट तो डेफिनेटली है
16: हाय वेलकम बैक
17: हेलो
16: जी बताइए
17: मेरे पास तो एक वियर्ड बात है मैं वैसे पंजाबी हूँ पर मैं राइस वगैरह खा लेती हूँ तो मैं जैसे आज कुछ कुक करती
16: तो पंजाबी राइस नहीं खाते मतलब हाँ पंजाबी राइस नहीं खाते वो रोटी पराठे खाते
17: हैं मेरा हस्बैंड वो अगर मैं आज राइस बना दूं मुझे क्या बोलेगा कि पिछले हफ्ते भी राइस खाए थे पिछले हफ्ते
16: That's right. तो
2: मैं कहानी घर घर की
16: मतलब आपके यहाँ पे भी होता है
17: वो ऐसा है कि वो ये नहीं बोलेगा कि तू बना के दे वो कहता मैं खुद बना लूंगा मुझे जो बनाना है पर जो सुबह खाया था और जो कल खाया था वो मैं दोबारा नहीं खाऊंगा
16: वो तो ओके वो देखो एक ही टाइम पे खाते तो बैच कुकिंग तो नहीं होता मतलब आपके यहाँ पे
17: मैं अपने लिए कर लेती हूँ
2: एक फॉर्म ये भी होता है ना बैच कुकिंग का अपने अगर इंडियन हाउसहोल्ड्स को देखा जाए तो काफी लोग ये भी करते हैं कि जो तड़का होता है उसको एक ही साथ लगा के रख लेते हैं कि तड़का तो हर किसी में एक जैसे ही डलना है
16: मसाला को रेडी कर देते हैं
2: वही मतलब हम तड़का कह देते हैं उसको एक साथ रेडी करके रख
17: लेती हूँ और वो एक बार खा लेता है पर जो नेक्स्ट के दो बारी होते हैं फिर वो अपना खुद बना लेते हैं और खा लेता है फिर मुझे दिखाता है खाएगी क्या
16: क्या बात है बहन है बट ये अच्छा है ये आत्मनिर्भर है ना वो
17: हाँ पर फिर वो जंक खाता है ना जैसे बर्गर बना लेंगे घर पे वो भी एक मतलब
16: राइट
17: पंजाबी कैन रिलेट पूरा सैलेड का बॉल खा के भी वो बोलता है कि
16: आपका भी स्वागत है
2: बढ़िया जी
18: मैं राहुल बोल रहा हूँ
2: जी राहुल
18: और बैच कुकिंग में बिलीव करता हूँ उसमें टाइम काफी बच जाता है कई लोग नहीं पसंद होता तो उसमें क्या है कि आपका टाइम काफी बच जाता है
16: जी। तो आप करते हो बैच कुकिंग?
18: बैच कुकिंग हाँ, डिपेंड ऑन हाँ, डेफिनेटली वीकेंड पे तो खैर फ्रेश ही बन जाता है क्योंकि टाइम होता है, जैसे अभी वीकडेज होते हैं फैमिली के साथ तो मैं बैच कुकिंग प्रेफर करता हूँ। लाइक एटलीस्ट दो दिन तो चलना ही चाहिए खाना, एवरी डे तुम प्याज काटो गैस चलाओ यू नो। और हमारी इंडियन कुकिंग तो पता ही आपको कि हमें हर चीज चाहिए होती है, सूखी सब्जी भी चाहिए, दाल सैलड रोटी चावल यू नो। तो ये मतलब हमारा एक कंप्लीट पैकेज होता है, लाइक ऐसे नहीं होता है कि भाई दाल रोटी से सेटिस्फेक्शन हो जाए, दाल चल थोड़ा अचार भी होना चाहिए उसमें, थोड़ा अगर पापड़ हो जाता तो अकॉम्पलीमेंट वो तो सारे रखे ही होते हैं कबर्ड के अंदर, आपको पता ही है।
16: सही कह रहे हो आप।
18: तो बैच कुकिंग उसमें क्या, जिनके बच्चे उनको वैसे मेरे ख्याल से प्रेफर करना चाहिए
16: बैच को, लेकिन जो बच्चे वाले हैं उनको अक्सर वो लोग बोलते कि नहीं हम फ्रेश खिलाएंगे ना हमारे बच्चों को। आपके घर पे बच्चे तो क्या वो फ्रेश खाते हैं हमेशा रोज की?
18: उसके अंदर आप एक काम कर सकते हैं, देखो दाल आज आपने बनाई तो किसी के घर में 90% जो होते हैं लोग वो होते हैं कि जो दाल फेंकते नहीं है। ये कोई भी ऐसा बंदा नहीं, मैंने कभी नहीं सुना कि सब्जी थोड़ी बच गई और मैंने वो फेंक दी,
16: दाल के परोठे बना देते हैं ना।
2: या वो मेरे घर में बनते
18: और रोस्ट खा लो साथ में, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं तो जैसे हम क्या करते हैं, चलो यार आज सब्जी अच्छी बने काम करते हैं, ड्रम स्टिक थोड़े से रोस्ट कर लेते हैं या कुछ पनीर साथ में या कुछ भी रोस्ट,
16: क्या बात है,
18: वो एक मील सा बन जाता है। और ये कुछ हेल्दी जैसे मूंग की दाल होती है ना, उसकी जो सैलड होता है बड़ा प्यारा बनता है, इंडिया में बनता था जो अंकुरित दाल जो होती है वो।
16: बस अभी ज्यादा खाने की बात मत करो यार।
18: नींबू और नींबू धनिया थोड़ा चाट मसाला ना,
16: हाँ हाँ हाँ,
18: प्याज और टमाटर डाल के समझ रहे, मैं मुँह में पानी दिलवा
16: और कोरिएंडर ऊपर से आ हाँ, मजा ही आ जाता है।
18: और अगर भेल आपको बनानी है तो इमली की चटनी और वो भी डाल सकते हैं आप, भेल लाओ
16: बहुत ही बढ़िया
2: नाइस
18: रेडीमेड मिलती है, और उसे नींबू थोड़ा निचोड़ के और इमली की चटनी और हरी चटनी करके वो भी खा सकते हो।
16: थैंक यू राहुल, थैंक्स सो मच फॉर योर कॉल। वेल आपके लिए और भी यहाँ पे बातें लेकर आएंगे और गाने भी लेकर आएंगे। अभी के लिए बॉलीवुड मोस्ट वांटेड की बारी आ गई है एंड दिस इज फ्रॉम कॉकटेल 2 फॉर यू माशुका।
19: बॉलीवुड मोस्ट वांटेड,
20: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
21: मैं लाऊं अपना ए गेम।
19: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: You're listening to Humbling Bollywood's Biggest Hits. आपके लिए यहाँ पे सुपर से ऊपर ये शो जारी है. एंड यहाँ पे हम बता दें आपको कि अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है तो यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एशियन फैमिली सर्विसेज है. एक नया उनका प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं. यहाँ पे नेशनल कैंपेन है रीच एंड रीच आउट. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज़ को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. और इनकी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सपोर्ट मिल सके. तो रीच एंड रीच आउट ये जो नेशनल कैंपेन है, इसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना. अगर आपको या आपके किसी को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें asianfamilieservices.nz पर.
2: एंड हम बोरिंग कॉल, ये इसका जो क्यू टू कॉल है आपके लिए 5 बजे के बाद यहाँ पे प्ले होने वाला है, बिटवीन 5 to 6 PM, एनी टाइम हो सकता है. सो रिमेंबर, आप यहाँ पे 2 रिटर्न एयर टिकट जी सकते हैं 1 or 2 के लिए विद सोलोमन एयरलाइंस, प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी भी आप जी सकते हैं. आपको करना क्या है, सुनते रहेगा सुबह 8 बजे के बाद, देन 11 के बाद, 1 बजे के बाद एंड बिटवीन 5 to 6 PM आपके लिए बोर्डिंग कॉल यहाँ पे प्ले होता है. और उसके बाद आपके लिए 60 मिनट्स का समय होता है हमारे रोवा ऐप पे जाके, वहाँ पे ये कंपटीशन पेज है हम बोर्डिंग कॉल, वहाँ पे टाइप करना है आपको 5 बजे के साइड पे बोर्ड नाउ एंड क्लिक सबमिट. सो अगर आपको कंपटीशन पेज ढूंढना नहीं है, डायरेक्टली चाहिए तो BC लिख के अभी भेज डालिए 5599 पर, सो दैट आपके पास ऑलरेडी कंपटीशन पेज का लिंक है. हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनाटू. एंड विजिट flysolomons.com. टर्म्स एंड कंडीशन इस कॉम्पिटिशन की वैसे आपको हमारे वेबसाइट पर ही मिलने वाली है, hum.trova.nz पे, जहाँ पे और भी जानकारी आपको मिलेगी. और भी कॉम्पिटिशन्स है. नेक्स्ट आवर में रक्षाबंधन के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका भी आपको मिलने वाला है. हमारे फेसबुक पेज पर जाके भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. वहाँ पर पिंट पोस्ट में रक्षाबंधन की एक पोस्ट हमने की है फेसबुक पर, आप विजिट कीजिए एंड अपलोड कीजिए एक ऐसी फ़ोटो, एक ऐसी मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट की फ़ोटो इन द कमेंट सेक्शन जो आपको अपने भाई या बहन की याद दिलाती है, जिसके साथ आपकी कोई मेमोरी अटैच है, और उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है और सिबलिंग्स को टैग करना है. दैट्स इट. और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा जहाँ पे $300 कैश आपके नाम हो सकता है.
1: जी, $300 तो सोशल मीडिया के थ्रू जीतने का मौका मिल रहा है आपको, लेकिन उसके साथ साथ $250 भी आपके नाम हो सकते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट पार्टिसिपेट. यहाँ पे आपको 5 बजे के बाद मौका देंगे कॉल करने का. एंड यहाँ पे यू नो इट्स ऑल्सो वेरी होलसम ना, यहाँ पे आपको आपके सिबलिंग के बारे में कुछ शेयर करने का मौका मिल रहा है. आई थिंक इट्स वेरी स्वीट. यू कैन रिकॉर्ड इट ऑल्सो, क्योंकि अगर आपके सिबलिंग यहाँ पे नहीं है, जैसे कहीं और है,
2: ओवरसीज है,
1: क्या उनके वहाँ पे वो रेडियो पे कॉल करके आपके बारे में बात कर सकते हैं? शायद उनके पास वो अपॉर्चुनिटी ना हो, बट आपके पास है, देन मेक द मोस्ट ऑफ इट.
2: सो 5 बजे के बाद ये मौका आपको मिलने वाला है.
3: Let's go.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI. Your

0: से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: Hum, accurate traffic.
2: Tech deals at the warehouse.
3: Fine overnight for Auckland with a low of 7 on the northern from town to Silverdale, 53 minutes, just a bit heavy. Oniwa to Northcote Road, the northwestern to Massey, 34 minutes. On the southern to Manukau, 40. Dreary in hour 3. Heavy in both directions between Mount Wellington and Green Lane. Southwestern's heavy northbound Massey Road to Mangere Bridge and heading south from Puhinui to the southern.
2: Giant tech sale starts tomorrow. Great deals on TVs, audio and more at the warehouse.
4: Looking for a flash getaway? Fiji Airways flash sale is on now. Fly direct from New Zealand one way to Nandi from just $295. Or enjoy a stopover in sunny Fiji direct from New Zealand on your way to epic destinations like Tokyo from $675, Singapore from $699, and Hong Kong from $695. Flash destinations for not much cash. Fiji Airways flash sale on now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
5: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
6: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर लेने।
5: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
6: पर डेवलपमेंट के पैसे
5: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
7: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
8: Indelible Homes, your building expert.
9: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
3: Weeknights, you're flat out. And it's leftovers again?
10: Don't settle for meh dinners. Spice things up with HelloFresh.
3: Zesty laksa, viral tacos, or a juicy steak. Ready in minutes.
11: Mm.
3: Take back dinner time with HelloFresh.
12: Hello. 2 p.m. call out, we're on your way. Heading back to the office? We're on your way there too. Commute to site? Yep, you guessed it. We're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
0: Home. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. It's hoped new clinical guidelines will mean faster treatment for women and girls with endometriosis. GPs will be able to diagnose the condition based on symptoms, family history and examination. Minister for Women Nicola Gregg says it currently needs to be confirmed through laparoscopic surgery.
14: Rather than women having to be pushed around from pillar to post, going to all sorts of different clinicians and all sorts of different experts, they will be able to get a diagnosis up front and early.
13: The Human Rights Commission is calling for action to address the long-term harms of historic PCP use in the timber industry. Senior advisor Oliver Christella says exposure was not confined to the workplace.
15: Contaminated clothing went home into the washing with the family clothing. Sawdust was used in gardens. Wood offcuts were burned in fires.
13: Nearly 15,000 pensioners missed out on the winter energy payment due to an apparent error with MSD's systems. The payments have since been made. MSD has apologised, as has the Prime Minister and Minister Louise Upston. A US Air Force flight from Christchurch to Antarctica had to turn around mid-air due to space activity. The Civil Aviation Authority notes it was potentially hazardous and says it was reported by the Russian Air Traffic Management Corporation. To sport the fitness of injured All Blacks, Cam Roygaard and Will Jordan is improving in the countdown to Sunday morning's opening test against the Boks in Joburg. To rugby league with Machinery House in a league of their own, Eden Park has been confirmed for Game 2 of next year's State of Origin series. Thousands of Aussies are expected across the Tasman, and Warriors playmaker Chanel Harris-DeVita has signed a contract extension to the end of the 2029 season.
11: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
16: World's best, hamari good brands bhi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
17: Weather ka hal kafi kamal, mast din hai aaj hamare super city mein, and fine southwesterlies ka saath rahega. 5:50 ko hoga sunset, feels like 12 degrees aaj, overnight 7 degrees ho raha hai, lekin kal it's going to be even more colder, like it's going to be 4 degrees cooler, 3 degrees ka kal hoga overnight.
11: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
18: Power Drive at 5.
0: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rusby.
19: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
17: 5:02, you are listening to The Drive Show with Sandy and Rusbe.
20: A very, very good evening to you. इस सावन में करैक्टर गेस गेम भी रहेगी, लेकिन फिलहाल मैंने अभी एक न्यूज पढ़ी है रुसबे. टिंसल टाउन की न्यूज है वैसे ये.
17: टिंसल टाउन की न्यूज.
20: या बॉलीवुड की.
17: क्या हो रहा है?
20: सो जेनेलिया देशमुख, अपार शक्ति खुराना एंड इमरान हाशमी, दे कमिंग टुगेदर फॉर अ मूवी जिसका नाम है गन मास्टर G9.
17: गन मास्टर G9.
20: या इट्स अ एक्शन रोमांस मूवी.
17: मैं अभी भी ट्रॉमा में हूँ. इमरान हाशमी आप बोलो तो मेरा सडनली अभी ये ऐसा हो गया.
20: ऐसा ना बोलो यार, इंडिया में तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं मूवी को.
17: हाँ, इंडिया में बहुत पसंद कर रहे हैं.
20: फुल सीटी मार के मूवी को पसंद कर रहे हैं तो या स्पेशली जहाँ पे कुछ सीन्स को वो पुराना आवारापन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. एक मॉन्क.
17: देखो म्यूजिक म्यूजिक अच्छा है मूवी का, लाइक तेरा
20: ये आवारापन इज आई थिंक द ओरिजिनल एंड द ओरिजिनल सॉन्ग आउट ऑफ होल एल्बम.
17: हाँ, समझ गया भाई. अमल ने जो गाना बनाया है, गाया है,
20: अच्छा भी है गाना.
17: 35 साल का दुख दर्द डाला है उसने उस गाने में, पता है.
20: साउंड भी अच्छा है उसका.
17: बहुत बहुत बढ़िया काम किया है.
20: बाकी गाने तो हमने सुने थे
17: बट ये आवारापन तो बहुत ही अलग है. बेस्ट ही गाना
20: 100%.
17: और कुछ anyway, कहना चाहोगे आप अमल की तारीफ में?
20: बस ये कहना चाहूंगी कि ये अभी जो मूवी आने वाली है गन मास्टर जी,
17: उसमें भी अमल है क्या?
20: नहीं रे.
17: नहीं, अच्छा.
20: ये जो मूवी आने वाली है, इट मार्क्स अ रीयूनियन अगेन. इट्स अ रीयूनियन ऑफ नियरली 2 decades आफ्टर द अर्लियर कोलैबोरेशन, ऐसा बोला जाता है, बिकॉज इसमें हिमेश रेशमिया होंगे.
17: ओहो,
20: इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया का कॉम्बिनेशन गोना कम बैक.
17: ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? मेरे को मेरा दोस्त ने भेजा आज या कल में इंस्टाग्राम पे कि जन्नत 3 भी आने वाली है. अभी जन्नत 3 के भी ऊपर काम चालू हो रहा है. मैंने बोला बस कर भाई, मैं नहीं सहन कर पाऊंगा.
20: 100 crore से ऊपर चले गई है मूवी, तुम्हें पता है? 12
17: क्या बात कर रही
20: है? 129 crore लास्ट जो मैंने देखा था.
17: Seriously?
20: Yeah.
17: हमको कुछ अलग कॉपी दिखाई क्या वो लोग ने? हमको पहले दिन पे कोई टेस्ट कॉपी भेजी थी क्या? कि ये तुम ये सहन करो, हम बाकी अच्छी वाली मूवी किसी और को दिखाएंगे. मतलब मेरे को तो सच में लग रहा है कि सेकंड हाफ में वो लोग ने चेंज कर दी मूवी.
20: हो सकता है.
17: पहली हाफ
20: न्यूजीलैंड में एनीवे सबसे पहले रिलीज हो जाती है मूवी. तो हो सकता है कि हमने ट्रायल कॉपी देखी हो,
17: क्योंकि यहाँ पे वैसे भी मेटा वेटा सब यहाँ पे टेस्ट पहले ही करते हैं ना, यहाँ पे टेस्ट करते हैं ना न्यूजीलैंड में.
20: गिनीपिग. तो या
17: एनीवे इट वाज व्हाट अ मूवी. Yeah, what a movie. Anyway, यार.
20: इतना भी नहीं यार, जिनको अच्छी लगी है उनको अच्छी लगी है ना.
17: किसको अच्छी लगी? एक को यहाँ पे कॉल करके 0800-004-866 इस नंबर पे कॉल करो.
20: जो 10 में से 6 के अबव रेटिंग देना चाहता है इस मूवी को वो कॉल करे. That's a good movie. उनके लिए it's a good movie.
17: मैं उसको I will consider that great feedback. अगर 10 में से 6 के ऊपर भी आपको देना है रेटिंग आवारापन 2 को,
20: 5 से नीचे होती है तो मतलब आपको पसंद नहीं आई है. 6 से ऊपर है तो मतलब आपको पसंद आई है.
17: 0800-004-866 मतलब जिसको एवरेज भी लगी है ना, मैं वो भी सहन कर लूंगा. मतलब 6 के ऊपर मैं एवरेज मानता हूँ. अगर एवरेज भी लगी आपको मूवी, किसी को एवरेज भी यहाँ पे लगी है तो आप कॉल कीजिए.
20: एवरेज तो काफी को लगी है. हाँ, मैंने ही सुना है. बाद में आफ्टर फैक्ट में जिन लोगों के साथ गए थे उन्होंने बाद में बोला ठीक थी उसमें से. या
17: अच्छा, तो वो उनको बोलो कि दिशा पटानी को साइड में रखो और फिर तुम्हारा फीडबैक दो. एनीवे आज हम आपके साथ खेलने वाले हैं कैरेक्टर गेस. तो थोड़े टाइम में आपका यहाँ पे साथ बहुत जरूरी रहेगा मेरे लिए. देखो मेरा ऑनेस्टली इस सेगमेंट में मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया है. आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. तो 0800-004-866 इस नंबर पे आपको कॉल करना है और आज सैंडी सोचने वाली है कैरेक्टर के बारे में. हिंट देगी हमें पांच सवाल. हम पूछ सकते हैं उसे येस नो क्वेश्चंस एंड उसमें हमें फिगर आउट करना है कि सैंडी किसके बारे में सोच रही है. तो आप तैयार रहिएगा. नंबर याद रखिएगा 0800-004-866.

0: फिर से कर दे धूम धूम है क्या इसमें? ओहो क्या बात है, ओए होए क्या सीन है। ये गाना आपने लेटेंट पे सुना होगा, जिसने लेटेंट देखा है या फिर काफी रील्स पे भी काफी चल रहा है ये गाना। वेल अभी टाइम आ गया है फॉर द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेगमेंट फॉर अ लॉट ऑफ देम, कैरेक्टर गेस। कैरेक्टर गेस में होता यह है कि सैंडी, आज सैंडी का टर्न है, सैंडी सोचेगी एक कैरेक्टर के बारे में, उसके बारे में हमको वो कंफ्यूजिंग पांच हिंट्स देगी और हमारे पास पांच सवाल ऐसे पूछने को जो यस नो क्वेश्चंस है, एंड उसमें हमें गेस करना है कि सैंडी किसके बारे में सोच रही है। तो सैंडी
1: मेरा पहला हिंट, एंड रिमेम्बर जैसे रुजबे ने बोला मैं थोड़े कंफ्यूजिंग हिंट्स भी आपको दे सकती हूँ। ओके, सो पहला हिंट मेरा ये है कि ये जो पर्सन है फेमस पर्सन
0: है, मतलब ये पता चल गया है
1: पर्सन या
0: कैरेक्टर, पर्सन इंसान, ओके जो भी,
1: या
0: ठीक है।
1: ये जो फेमस पर्सन है, इस पर्सन का जो नाम बचपन में रखा गया वो ऐसे मिसप्रोनाउंस हुआ कि जो मिसप्रोनाउंस नाम था उसी से इनको जाना गया।
0: ओह वाओ नाइस,
1: मैंने बहुत अच्छा हिंट दिया है,
0: बहुत अच्छा हिंट दिया है आपने, ये तो मेरे को लग रहा है। और मैं एक एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, आई नो इट्स गोना गेट डिफिकल्ट फॉर मी एंड आई माइट टेक माय वर्ड्स बैक, लेकिन गूगल मत करो।
1: हाँ गाइस, गूगल मत करो, गूगल करोगे तो फिर मतलब मजा नहीं आएगा गेम का।
0: अभी गूगल या चैट जीपीटी और या जो भी है वो सब मत करो अभी, क्योंकि फिर वो मतलब नहीं मजा आएगा ना,
1: क्योंकि रुजबे यहाँ पे गूगल नहीं कर पाएगा।
0: मैं नहीं, मेरे को तो अलाउड नहीं है गूगल करना, बट आप भी मत करो बिकॉज तो फन रहेगा वो।
1: एग्जैक्टली, ऐसे ही गेस करो।
0: हाँ
1: बिकॉज फेमस पर्सन है,
0: फेमस पर्सन है, सबको पता होना चाहिए इसके बारे में।
1: या नाम तो पता ही होना चाहिए ना।
0: हाँ
1: ये तो मुझे लगता ही है,
0: तो नाम का गड़बड़ हुआ था, नाम गलत
1: इमेजिन, फिर भी नाम सबको पता ही होना चाहिए।
0: किसने मिसप्रोनाउंस किया था नाम,
1: मतलब ऐसा मिसप्रोनाउंस हुआ नाम उनका बचपन में ही, ऐसा नाम लेते हुए किसी ने मिसप्रोनाउंस किया, वो मिसप्रोनाउंस होता गया होता गया, इवेंचुअली दैट पर्सन बिकेम फेमस फॉर द नेम मिसप्रोनाउंस्ड। मतलब मेरे को लगता है हो सकता है काफी लोगों को ना पता हो कि उनका जो नाम है वो मिसप्रोनाउंस्ड है,
0: राइट?
1: बिकॉज इट्स अ वर्ड, कई बार बीच में ऐसा ट्रिकी होता है ना, जैसे एक वर्ड लिखा होता है उसके बीच में जो लेटर्स होते हैं इधर उधर आप कई बार प्रोनाउंस कर दे हो,
0: डिस्लेक्सिया होता है जिनको,
1: नहीं वैसे भी कई बार हम इधर उधर प्रोनाउंस कर देते हैं कई बार कुछ वर्ड्स को पढ़ते समय, तो वैसे हुआ एंड देन वो इवेंचुअली वैसे ही होता गया एंड देन गिव अप कि चलो यही से यही नाम से,
0: राइट? ओके,
1: दिस इज माय फर्स्ट हिंट,
0: फर्स्ट हिंट है ये।
1: तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, रुजबे के साथ डिस्कस करना चाहते हैं,
0: लेट्स गिव अस अ कॉल, या 0800 004866।
1: और पहले ही आ गया सेकंड हिंट प्लीज।
0: वही मुझे भी वही लग रहा है कि थोड़ा सेकंड हिंट होता तो मजा आ जाता।
1: उपेंद्रपाल ने बोला है संजय दत्त,
0: संजय दत्त
1: कॉल करो ना, कॉल करके डिस्कस करोगे तो थोड़ा समझ में आएगा, मैसेज भी कर सकते हो, बट देन अगर आपको और डिटेल में थोड़ा डिस्कशंस करनी है तो आप कॉल करो रुजबे को यहाँ पे।
0: ऑलराइट, हाय,
2: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
2: जी मेरा नाम रोशन है।
1: जी रोशन,
2: मैं कि आंसर बोल सकता हूँ क्या ये मैं?
0: अरे आप मतलब अपन डिस्कस कर सकते हैं
1: रुजबे के साथ, आप डिस्कस करो।
0: हम डिस्कस करते हैं ना, आप किसके बारे में सोच रहे हो?
2: सो इट्स लाइक एन अमेरिकन होस्ट और प्रोड्यूसर है, शी यूज्ड टू कम इन अ वेरी गुड चैट शो।
0: हाँ,
2: और बेसिकली इसका नाम कुछ दिन पहले विजय और पूजा ने बताया था कि मतलब बचपन से ही नाम गलत था एंड शी वेंट ऑन विद द रॉन्ग नेम इटसेल्फ।
0: अच्छा, क्या क्या नाम है इनका?
1: उनका
0: ओपरा विनफ्रे। इनका नाम क्या है एक्चुअली में?
2: इनका एक्चुअल नाम था ओरपा।
0: यार ये तुम बढ़िया यार, ये बहुत सही,
1: वेरी गुड वन, या वेरी गुड वन,
0: बहुत ही सही रोशन,
1: रोशन
0: देखो ब्रेकफास्ट शो सुनने का फायदा लाइव शो में।
1: अगर यही आंसर है तो, अगर यही आंसर है तो।
2: और एक्चुअली कुछ दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था, उस बुक में भी वो जो ऑथर है वो इसके शो पे गया था, ओपरा विनफ्रे का। मुझे याद था।
0: अच्छा, तो अभी हम इनको क्या सवाल पूछे ताकि हम इसको क्लोज डाउन, मतलब बॉटम डाउन कर सकते हैं।
1: So rather than asking कि क्या ये है, maybe ask a question जो आपको वहाँ तक क्लोजर पहुँचाए।
0: क्लोज थोड़ा लेकर जाएगा ना अपने को।
2: So maybe we can ask that मेल या फीमेल, सो शी इज फीमेल, सो मे बी वो एक क्वेश्चन हो सकता है,
1: है भी अलाइव है कि नहीं है, डेड है, अलाइव है, मेल है, फीमेल है.
0: यार इसकी मत बात सुनो यार, वो डिस्ट्रैक्ट करेगी. या फिर हम ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया से है कि नहीं है. अमेरिकन सीधा नहीं पूछेंगे ना, पहले इंडिया पूछते ना, ब्रॉडर पूछते हैं, इंडिया से है कि नहीं.
1: तो फिर ये ना हो कि आपकी उंगली हो जाए.
0: हाँ, और कोई ऑप्शन है क्या, और कोई है ऐसे? बहुत लोग होंगे यार जिनका नाम ऐसा गलत हुआ रहेगा ना. आपको सवाल
1: मर्जी है, क्या चाहती हो? सेकंड हिंट दूं मैं?
0: मुझे लगता है सेकंड हिंट भी दे दो आप यार.
1: ओके, तो होल्ड ऑन, सेकंड हिंट, या सेकंड हिंट मेरा ये है कि दिस पर्सन फेस्ड एक्सट्रीम पॉवर्टी. इस पर्सन अपनी लाइफ में एक्सट्रीम पॉवर्टी देखी, लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी से जर्नी ट्रेवल की टू बीइंग वेरी रिच. या टू बीइंग वेरी रिच, वेरी वेरी रिच. मतलब ऐसी पॉवर्टी कि फैमिली जो थी वो घर पे क्लोथ्स भी प्रॉपरली अफोर्ड नहीं कर पाते थे. या सो कई बार या ऐसे पॉवर्टी देखी है कि प्रॉपर क्लोथ्स की भी कई बार नहीं पहन पाते थे इंसान, एंड वहां से देन बीइंग एक्सट्रीम रिच.
0: तो ये ओपरा विनफ्री भी इसमें अभी भी फिट होती है ना, ऐसा लगता है कि क्योंकि वो भी ऐसा ही, उनका भी ऐसा ही कुछ रहा है ना, या वो गरीब बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है ना, बट शायद वो भी गरीब थी क्या, पता नहीं यार मेरे को भी है.
1: पहले
0: का क्या था, फेमस सॉकर प्लेयर रोनाल्ड बोल रहा है, पहले पहले का मेरे को नहीं मालूम क्या था, गलती मेरे को नहीं आइडिया भाई, मैं नहीं हूँ इतना सॉकर में यार. मैं सवाल पूछता हूँ आपको सैंडी, पहला सवाल, क्या ये इंसान, ये व्यक्ति, एक्चुअली में चलो कॉल आ गया इसी टाइम पे, हाय आपका स्वागत है.
3: हाय रुस्तम सैंडी.
0: हाय, क्या नाम है आपका?
3: पार्थ.
0: पार्थ, क्या लगता है पार्थ कौन है यार, और कोई वैसे कोई आ रहा है मन में?
3: अरे मैंने मैसेज किया बिग बी अमिताभ बच्चन.
0: अमिताभ बच्चन का गलत क्या था, मतलब ऐसा कुछ अलग प्रोनाउंस किया था क्या नाम?
3: कुछ तो था, पता नहीं मुझे, अमिताभ ऐसा कुछ.
0: हाँ, लेकिन वो एक्सट्रीम गरीबी में नहीं थे मेरे को लग रहा है यार. हर्षवर्धन नहीं क्या, हर्षवर्धन क्या है उनके पापा का?
3: हरिवंश राय.
0: वो तो बहुत ही बढ़िया लेखक वेखक थे ना, तो वो मेरे को नहीं लगता इतने गरीब भी थे.
3: हाँ वो सही है, सही है, वो गलत क्लू हो जाता है.
0: हाँ वो थोड़ा सा है, बट गुड ऑप्शन या थैंक यू पार्थ, थैंक्स मैन. तो सैंडी मेरा सवाल है आपके लिए, तो क्या ये व्यक्ति इंडिया से है?
1: ये व्यक्ति इंडिया से नहीं है.
0: या अच्छा,
1: नाउ यू नो थ्री थिंग्स अबाउट दिस पर्सन.
0: वी नो थ्री थिंग्स अबाउट दिस पर्सन. वी नो दैट ये इन्होंने बहुत गरीबी देखी है, जहाँ पे इतनी गरीबी, जहाँ पे कपड़े भी नहीं खरीद पाए, वहां से लेकर वो अमीर बने हैं.
1: ये इनका नाम शुरू से ही मिस प्रोनाउंस हुआ, तो वही नाम फेमस हो गया.
0: हाँ, मिस प्रोनाउंस नाम ही फेमस हो गया. और तीसरा ये है कि वो
1: इंडिया से नहीं है.
0: ऑलराइट, सो गाइज यहाँ पे आप भी मैसेज भेजिए. अभी मेघा बोल रही है एक और सवाल पूछ ले. एक काम करते हैं, कुछ मैसेजेस सुनते हैं, तब तक आप यहाँ पे आपके सवाल पूछो, मतलब सवाल यहाँ पे भेजो मेरे को. लेट्स ब्रेनस्टॉर्म.
4: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी.
5: The Drive Show with Sandy and Rusbe.
6: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं.
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
8: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
9: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप. वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये. have lots of fun basically with the cold weather.
8: कौन है?
9: हुनुआ और वेटाकरे.
8: अच्छा हुनुआ वेस्ट में.
9: किधर है हुनुआ?
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: Accurate traffic.
3: Switch to AMI car insurance.
4: Fine overnight for Auckland, a low of 7. On the northern, it's heavy from the Harbour Bridge to Northcote Road. The northwestern, slow from St Luke's to Te Atatū. Southern, heavy southbound Market Road to Penrose Road and heading north from Mount Wellington to Green Lane. The southwestern, slow both directions between Massey Road and Mangere Bridge and heading south from Lambie Drive to the southern.
3: AMI Roadside Rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
5: Okay. Let's run through this. You've set up a coffee group, a mum's group, a connect group, and you've adopted group fitness like a religion. Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and your donations could save lots of lives. Friends, whānau, workmates, get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.
6: Put a smile on Dad's face with a gift from Bunnings.
7: When dads come in here, it's like a kid in a toy shop.
8: Dad loves to shop at Bunnings. You know, there really is something for every dad. The new water blaster, new drill, new barbecue.
6: At Bunnings, you'll find gifts built for Dad.
9: A Zito 18-volt drill driver and speaker kit, $99.98. Stanley 16-inch open mouth tool bag, $41.98. Tradie fitted trunks pack of six, $40. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
10: Bunnings Warehouse.
9: Lowest prices are just the beginning.
11: Knock knock, it's me Dash, helping rugby fans get ready early for game day. Get your official Adidas All Blacks supporters gear on DoorDash, and you could win an epic All Blacks watch party delivered by rugby legends. Adidas on DoorDash. Now that's a good call. T's and C's apply.
12: Boat plus ute equals beaut. Get Dad a $5 The Real Deal instant Kiwi ticket for a chance to win a Toyota Hilux and Stabycraft 1450 Frontier combo. Get your Father's Day gift sorted at your local Lotto NZ store. R18 T's and C's apply.
13: Don't miss the Volkswagen 5-day sale on now at your local dealership. Get exclusive offers across the range and go in the draw to win one of 40 Samsung OLED TVs worth $7,699. Offer ends August 22nd. T's and C's apply. Volkswagen.
14: Are you ready to go home?
15: The Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Bukit. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
16: Power Drive at 5.
17: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernised, customised designs for your dream kitchen.
18: आप सुन रहे हैं ड्राइव शो पावर ड्राइव एट फाइव आपके लिए जारी है एंड कैरेक्टर गेस सेगमेंट इज ऑन फॉर यू राइट नाउ जहां पे इट इज गेटिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग. हमने अब तक रिवील किया है इस कैरेक्टर के बारे में कुछ चीजें. एक कि इनका नाम मिसस्पेल्ड था
19: बचपन में
18: बचपन से और वो फिर वो मिसस्पेल्ड नाम ही उनका नाम बन गया जिनसे वो बहुत ही फेमस हुए. ये बहुत गरीब इंसान थे. ये अभी तक पता नहीं ना फीमेल है कि मेल है.
19: ये तुमने नहीं पूछा
18: अभी तक नहीं पूछा हमने. बट ये इंडियन नहीं है तो मतलब ये इंडिया के बाहर से है. और क्या था उनका. और हाँ कि ये बहुत गरीबी देखी है. इन्होंने इतनी गरीबी देखी है कि कपड़े भी नहीं अफोर्ड कर पाते थे इनके घर वाले और वहां से जाके ये बहुत ही अमीर बने. अच्छा और अभी हमारे पास सवाल है और हिंट भी है. तो हिंट बता दो. हिंट बताए ना आपने अब तक.
19: मैंने अभी तक दो बोले
18: तो बता दो यार एक और हिंट बता दो.
19: ओके सो इनको जिस कंट्री से ये है वहां पे नेशन का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का अवार्ड मिल चुका है.
18: हाईएस्ट सिविलियन
19: ऑनर अवार्ड मिल चुका है.
18: अच्छा अभी हमारे पास रोशन ने यहाँ पे कॉल किया था और उन्होंने नाम दिया था ओपरा विनफ्री. ठीक है तो क्या ये सारी चीजें ओपरा विनफ्री में मैच होते हैं
19: क्या वहाँ पे सूटेबल होते हैं.
18: सूटेबल होते हैं. प्लीज कॉल करके मेरे को बताएं. मेरे को नहीं आइडिया यार ज्यादा. 0800-004-866.
19: चलो ये जो मैंने लास्ट हिंट दिया है ना इसके साथ ही मैं कोलैबोरेट करके एक और हिंट देती हूँ.
18: ठीक है बट कंसीडर एज अ थर्ड हिंट ओनली.
19: थर्ड हिंट ओनली. ओके उसमें ये है कि अपने कंट्री में तो इनको हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड मिला ही है. रिसेंटली दिस पर्सन वाज इन न्यूजीलैंड.
18: क्या बात कर रहे हो. रिसेंटली दिस पर्सन वाज इन न्यूजीलैंड.
19: यस
18: ओइला हाय
20: हाय विशाल जी.
18: हाँ विशाल बोलो.
20: आई गेस आई नो हु वी आर टॉकिंग अबाउट.
18: यस हु वी नहीं भाई मेरे को नहीं आईडिया कि ये ओनली सैंडी नोज.
20: I know. नाम बता दो.
18: हाँ बताओ ना बिंदास,
20: ओपरा विनफ्री।
18: आपको भी लग रहा है ओपरा विनफ्री है?
19: ऐसा क्यों लग रहा है आपको?
20: हाँ जी, क्योंकि मैंने ना पिछले महीने ही ना मॉर्निंग शो में या कशिका जी के शो में ये सुना था।
18: हाँ, ब्रेकफास्ट शो में ये बोल रहे थे, ब्रेकफास्ट शो में
19: रोशन के, रोशन ने भी वही बोला कि,
18: ने भी बोला कि नाम के बारे में ओपरा विनफ्री के बारे में उन्होंने सुना ब्रेकफास्ट शो में। और आप भी दूसरे इंसानों जो ये कह रहे हैं
19: कि उसका नाम के बारे में आपने
18: लेकिन
19: सुना।
18: विशाल, और बाकी सारी चीजें भी मैच हो रही है क्या?
20: मैं सच्ची बताऊं, मैंने ना
18: नो
20: क्लू ही सुने और मैंने तुरंत फोन लगा दिया।
18: मैं बताऊं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको सारे क्लू। यार ये बहुत गलत मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे यार। एनीवे, तो पहला हिंट, सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया विशाल, हमारा टेक्स्ट प्लेटफॉर्म हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। एनीवे, हमें पहला हिंट यहाँ पे मिला है कि इनका नाम मिसस्पेल हुआ था जो आपने ब्रेकफास्ट शो में सुना था, राइट। सेकेंड हिंट हमें मिला है कि ये बहुत गरीब थे, इतने गरीब थे कि इनके पास कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं थे, और वहां से ये बाद में अमीर बने,
19: बहुत अमीर,
18: बहुत अमीर,
19: बिलियनर।
18: बिलियनर बोल रहे हो आप? बिलियनर बहुत कम लोग हैं सैंडी, ये वो कम में से है बिलियनर।
19: या बिलियनर, आई विल से
18: बिलियनर है ये
19: ऑफिशियली। या या मतलब या बीन बिलियनर, एक बार मैं फिर भी चेक कर लेती हूं।
18: चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट।
20: ओके, तो फिर ये क्वेश्चन पूछो फिर कि ये कोई फेमस टीवी शो होस्ट
18: बता। टीवी शो होस्ट,
19: बिलियनर, ऑफिशियली बिलियनर,
18: बिलियनर ऑफिशियली बिलियनर है ये। कीवी न्यूजीलैंड में है क्या कोई बिलियनर?
19: दैट पर्सन
20: नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कोई
19: बीन टू न्यूजीलैंड,
18: और अभी रिसेंटली ये न्यूजीलैंड भी आके गए।
19: रिसेंटली कहने का मतलब है कि या
18: एक साल में,
19: एक साल के अंदर, या
18: एक साल के अंदर,
19: या
18: एक दो महीने में, एक दो
19: एक साल के अंदर,
18: एक साल के अंदर ये न्यूजीलैंड आके गए हैं।
19: या
18: अच्छा,
20: ओके,
18: और ये इंडियन नहीं है, ये भी एक हमें पता चला है हिंट। तो यहाँ पे मैसेज आया मोदी जी, मोदी जी इंडियन है यार, प्लीज वो कैसे हो सकते हैं, और बिलियनर कुछ भी। एनीवे, तो विशाल यार क्या लग रहा है यार, कौन हो सकता है?
20: मुझे तो वही आ रहा है दिमाग में,
18: वही आ रहा है ना,
20: वही आ रहा है। क्वेश्चन पूछो ना कि,
18: हाँ बोलो बोलो क्वेश्चन बोलो,
20: कि ये कोई टीवी शो होस्ट करता है क्या?
19: ग्रेट क्वेश्चन,
18: ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसने ग्रेट बोल दिया, अभी मेरे को डाउट आ रहा है।
19: मैं सपोर्टिव भी तो हो सकती हूँ,
20: इट कुड बी द ट्रैप।
19: या वही ना,
18: कितने क्वेश्चन हुए मेरे? दो क्वेश्चन हुए ना?
19: हाँ
18: दो ही हुए ना,
19: दो ही क्वेश्चन हुए तुम्हारे,
18: तो एक और क्वेश्चन तो पूछ ही सकता हूँ।
19: एग्जैक्टली, क्यों डर रहे हो, पांच क्वेश्चन ही खत्म हुए।
18: तो चलो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि ये फीमेल है क्या, ये क्वेश्चन पहले पूछते ना कि नहीं यार।
19: ओके,
18: नहीं नहीं, अपन टीवी शो होस्ट ही पूछ लेते, टीवी शो होस्ट है क्या ये?
19: या सो दिस पर्सन इज टीवी हो, इज ऑल्सो अ टीवी शो होस्ट,
18: ऑल्सो अ टीवी शो होस्ट, ऑल्सो अ टीवी शो होस्ट। मेरे को मालूम ही नहीं ओपरा विनफ्री एक्चुअली में करती क्या है, तुमको मालूम है क्या?
20: नहीं, वो ही बताएगी कि वो टीवी शो होस्ट करती
18: है। वही वही ऑल्सो बोला इसने, टीवी शो होस्ट, तो मतलब कुछ और भी करती होगी ये ना। सोशल सर्विस, सोशल वर्क हो सकता है। एनीवे, विशाल थैंक्स सो मच फॉर योर कॉल मैन, थैंक यू,
19: थैंक यू विशाल,
18: थैंक यू, थैंक यू। अच्छा अभी
19: मुझे ऐसा लगता है ना,
18: हाँ
19: रुजबे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस,
18: कॉन्फिडेंस के वाट लग गई है मेरे।
19: तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं लूज हुआ है,
18: तो
19: तुम अपने बातों में खोना शुरू हो चुके हो।
18: वही मैं सैंडी हो रहा हूँ ना यार, थोड़ा थोड़ा संगत का असर हो गया है मेरे साथ यार, ये क्या हो रहा है सैंडी, यू आर बिकमिंग रुजबे, आई एम बिकमिंग सैंडी, व्हाट इज हैपनिंग मैन यार, आई डोंट, मेरे को यार
19: ये खुद भी कंफ्यूज होता है, बाकियों को भी कंफ्यूज करता है ये। ऐसा लगता है कि कंफ्यूजिंग हिंट्स मैं नहीं दे रही हूँ, कंफ्यूजिंग आंसर्स ये दे रहा
18: है। अच्छा, 0800-004-866 आप भी कॉल करके अगर आपको समझ में आ रहा है कौन है ये, एक गाना सुन लेते हैं सैंडी का,
19: गाना ओके,
18: सैंडी का फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद हमारे पास अभी दो हिंट बाकी है।
19: या दो हिंट बाकी है, अगर तुम्हें हिंट चाहिए एक और तो मैं दे सकती हूं।
18: चलो एक और हिंट दे दो यार, चलो हाँ
19: ओके। सो मेरा ये हिंट है, इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी फेमस इंटरव्यूज़ की है कि एक तो ऐसी इंटरव्यू है जिसके ऊपर 36 मिलियन व्यूज है, वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड इंटरव्यू है वो, फेमस कॉन्ट्रीब्यूशन इंसान की, वो सेलिब्रिटी की. एंड देन रिसेंटली भी एक और इंटरव्यू थी जो कि कनेक्टेड टू यूके थी, विच बिकेम वेरी वेरी वायरल इंटरव्यू.
18: अच्छा, थोड़ा देखना पड़ेगा वर्ल्ड के बारे में भी. देखना पड़ेगा थोड़ा.
19: हाई टाइम
0: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
10: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
21: मैं लाऊं अपना ए गेम.
0: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: बड़ा डीप सॉन्ग यार, अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना। वैसे अभी अमाल मलिक की आवाज में भी ये गाना आने वाला है।
1: या मूवी में था ऑलरेडी
0: वो टाइम पे, तो भाई सैंडी रोएगी।
1: ऐसा भी कुछ नहीं भाई। एनीवे अभी तो रोने की जब बात कर रहे हैं तो याद आया कैरेक्टर गेस्ट,
0: कैरेक्टर गेस्ट चल रहा है। और अभी मैं कंफर्म हो गया हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ पे मैसेज कर लिया है। सैंडी आप फाइनल हिंट भी दे दो अभी, एंड सारे हिंट का एक राउंड अप दे दो, एंड आई विल आई एम रेडी टू गेस।
1: तो मैंने पहला हिंट दिया था कि इस पर्सन का नाम बर्थ में जो रखा गया वो ऐसा मिस प्रोनाउंस हुआ कि जो मिस प्रोनाउंस नाम था उसी से ये पर्सन फेमस हुए।
0: राइट।
1: सेकेंड हिंट मैंने ये बोला था कि एक्सट्रीम पॉवर्टी इन्होंने देखी, एक्सट्रीम पॉवर्टी से रिचनेस, एंड द पर्सन इज बिलियनर ऑफिशियली।
0: अच्छा, क्या बात है।
1: या एंड नेक्स्ट हिंट वाज कि इन्होंने, इनको अपनी कंट्री का यू नो अवार्ड भी मिल चुका है, उनको सिविलियन अवार्ड जो है ऑनर वो उनको मिल चुका है। एंड साथ ही साथ मैंने ये हिंट दिया था कि इन्होंने कुछ ऐसी फेमस इंटरव्यूज की हुई है अपने शो में,
0: रिकॉर्ड तोड़ दिए,
1: जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़े। एक तो इंटरव्यू इन्होंने की ऐसी फेमस सेलिब्रिटी की जो कि वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड इंटरव्यू है इन द हिस्ट्री, एंड सेकंड इंटरव्यू इन्होंने एक ऐसी की है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, कनेक्टेड टू यूके,
0: राइट,
1: व्हिच वेंट वायरल अगेन।
0: वायरल, यस यस।
1: या
0: एंड फाइनल हिंट क्या है?
1: अच्छा, एक और हिंट ना। दिस पर्सन फाउंडेड अ ट्यूशन फ्री लीडरशिप अकेडमी फॉर गर्ल्स इन साउथ अफ्रीका।
0: हाँ, क्या बात है।
1: इन्वेस्टिंग टेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ हर ओन मनी।
0: क्या बात है यार, वेरी नाइस। फिलैंथ्रोपिस्ट, फुल टाइम फिलैंथ्रोपिस्ट, पार्ट टाइम टीवी एंकर। एंड द आंसर इज ओपरा विनफ्री।
1: या
0: Well done, yes, well done to
1: रोशन ने तो सबसे पहले गेस कर लिया।
0: रोशन ने सबसे पहले गेस कर लिया भाई, रोशन एक नंबर, वेरी नाइस, थैंक यू।
1: सो नाम था ओरपा, जैसे उन्होंने बोला कि ओरपा, लेकिन कोई प्रोनाउंस नहीं कर सका। इंटरव्यूज की जो मैं बात कर रही थी, यस, प्रिंस हैरी, मेगन मार्कल की इंटरव्यू, लेकिन उससे पहले माइकल जैक्सन की इंटरव्यू। इन 90s शी डिड माइकल जैक्सन इंटरव्यू, व्हिच वाज लाइक क्रेजी इंटरव्यू, वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड इंटरव्यू ऑफ माइकल जैक्सन एज वेल।
0: राइट। वेल, आज के कैरेक्टर गेस का जो नाम है वो है ओपरा विनफ्री। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग।
1: शी वाज हियर इन न्यूजीलैंड इन दिसंबर 25।
0: अच्छा, ये नहीं पता था। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस यार। एंड यहां पे किन-किन ने मैसेज किया? नंदिनी, आपका भी मैसेज आया। सोनल, थैंक यू सो मच, आपने भी मैसेज किया। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे मैसेज किया, थैंक्स फॉर योर लवली मैसेजेस। थोड़ी देर में रक्षाबंधन का कॉल आपको यहाँ पे करना है, क्योंकि रक्षाबंधन में आपको मौका मिल रहा है जीतने को $250।

0: from only $7.99 on sale now.
1: Attention everyone, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
2: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
1: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
2: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
1: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई समझ सकते हैं।
2: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
1: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
0: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: Accurate traffic.
4: Refreshingly juicy, yummy lemonade apples. Fine overnight for Auckland, a low of 7. On the northern, just a little slow heading north around Oniwa Road and Esmond. On the northwestern, it's heavy from St Luke's to Te Atatū. The southern, slow heading south from Newmarket to Mount Wellington and heading north from Mount Wellington to Green Lane. And on the southwestern, heavy heading north from Massey Road to Mangere Bridge and south from Lambie Drive to the southern.
5: Hello Yellow, yummy lemonade apples. The yellow apple that's sweet and refreshingly juicy. Yummy lemonade.
6: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
7: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
8: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
7: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
8: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
9: Jen didn't think she needed a DVS system.
10: Oh, I've got insulation in that.
9: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
10: Ah, yeah.
9: So Jen got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
11: Make layovers something to look forward to with the American Express Gold Rewards business card. You can earn 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex travel. Plus, enjoy 2 priority pass visits each year in over 1,300 airport lounges worldwide. Search Amex Business and turn payments into points. Offer ends 14th of December 26, 1.5k minimum spend in the first 3 months. New Amex card members only. T's and C's for membership rewards and lounge exclusions apply. Priority pass enrollment required.
12: You filled the piñata before I sealed it, right?
13: No, you did.
12: I thought you did.
14: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
15: Kia ora. If you're enrolled to vote, you'll soon receive an enrolment pack in the mail. Keep an eye out for yours.
16: Your enrolment pack should arrive by 22 August. Open yours and check your details to make sure they're correct. Learn more at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Bukit. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
17: Power Drive at 5, aap sun rahe hai, aur yahan pe hum aapko abhi, क्या दे रहे हैं? हाँ,
18: रक्षाबंधन रक्षा नहीं आपको हम दे सकते, लेकिन रक्षा
17: तो हमारे पास भी नहीं आ रही है
18: ना। वो रक्षा भी नहीं आ रही, वो रक्षा भी नहीं आ रही। एक तो होती है सिक्योरिटी,
17: अच्छा।
18: वो रक्षा भी नहीं दे सकते हम। बढ़िया, रक्षाबंधन स्पेशल आपके लिए हम लेके आए हैं, जहाँ पे सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू आपको देना है और हम आपको दे सकते हैं $250 कैश।
17: तो इसके लिए आपको यहाँ पे अभी कॉल करना है 0800-004-866 और आपके भाई या बहन के साथ के आपके जो वंडरफुल किस्से हैं ये आपको हमको यहाँ पे सुनाने हैं ऑन एयर. उसके लिए $250 के ड्रॉ में आपका नाम हम शामिल कर देंगे.
18: तो कॉल नाउ 0800-004-866 हम आपके पास एक मिनट का समय है यहाँ पे कॉल करने के लिए 0800-004-866. वैसे बता दूं कि इसी वीकेंड पे रुजबे शो होने वाला है भजन जैम्स, जहां पे फ्यूजन होगा भजन्स एंड कीर्तन्स का. रवितिश देओ अपने बैंड के साथ परफॉर्म करने वाले हैं. इट इज़ प्रेजेंटेड बाय साउथ ऑकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड एंड क्यूरेटेड बाय न्यूजीलैंड कल्चर ट्रस्ट. 22 अगस्त को 7 PM ऑनवर्ड्स वैदिक सेंटर में ये इवेंट रहेगा. टिकट सिर्फ $30 की है, सिर्फ $30 की है, तो मेक श्योर कि अपनी टिकट्स आप ज़रूर बुक कर रहे हैं. एंड टिकट्स के बारे में बातें करते तो बाली एंड बैंकॉक गेटअवे आप हमारे साथ कर सकते हैं. यू नो फैमिली के लिए बहुत सारी विजिट्स आप करते हैं, बट दैट्स नॉट अ हॉलीडे. हॉलीडे इज समथिंग जहाँ पे आप चिल कर सके, इंजॉय कर सके, तो इसलिए बाली एंड बैंकॉक हमारे साथ आप जा सकते हैं. ये हम कर रहे हैं March 2027 में ईस्टर वीकेंड के अराउंड, जहाँ पे 11 डेज का तकरीबन ये ट्रिप जो है ये रहने वाला है. एंड अगर आपको आइटेनरी जाननी है, बुकिंग करनी है, तो आपको ड्राइव लेके भेजना है 5599 पर. ऑटो रिप्लाई में आपको एक फॉर्म मिलेगा, फिल द फॉर्म एंड यू विल गेट द आइटेनरी, प्राइस आपको पता चलेगा. देन कॉल सन टूर्स.
17: अनिल भाटिया को आप कॉल कीजिए सन टूर्स के, और वो आपको और भी डिटेल्स वहाँ पे बता देंगे. लेकिन अभी टाइम था कि आप यहाँ पे कॉल करें और हमें आपकी रक्षाबंधन की स्टोरी बताएं. लेकिन हम आज सैंडी से जानेंगे. सैंडी, आपकी ऐसी कोई मेमोरी है कि आपके सिबलिंग्स के साथ आप कहीं पर ट्रिप विप मारने गए ऐसे?
18: ट्रिप के लिए या बहुत सारी मेमोरीज है ऐसे.
17: तो व्हाट वाज द मोस्ट वंडरफुल पार्ट अबाउट दैट होल ट्रिप सिबलिंग्स के साथ?
18: सिबलिंग्स के साथ मतलब छोटे होते भी गए हैं, बड़े होके भी गए हैं. छोटे होते मेरे को याद है कि वी यूज्ड टू गो टू लाइक हिल स्टेशन, मतलब इधर जैसे शिमला हो गया, शिमला मसूरी ये वो, तो गर्मी की छुट्टियों में दैट वाज वन थिंग वहाँ पे जाते थे. एंड उस समय पर छोटे होते का इतना कोई ट्रिप के ऊपर कोई इतना हमारा फस नहीं होता था.
17: झगड़ा होता था कि गाड़ी में आगे कौन बैठेगा, पीछे कौन बैठेगा, ये सीट पे कौन बैठेगा,
18: विंडो सीट को लेके हमेशा
17: विंडो सीट
18: को लेके ही होता था.
17: हो गया ना हमेशा.
18: हाँ.
17: यार आप भूल ही रहे हैं ना बचपन.
18: अरे यार भूल ही नहीं होता, इसका मतलब होता है अपना हक लेना.
17: वो आपका हक हो गया मतलब.
18: वही तो, विंडो सीट को लेके हमेशा झगड़ा होता था, बट दैट वाज सॉर्टेड बिकॉज देन माय सिस्टर यूज्ड टू सिट इन मिडल एंड मेरा भाई एक साइड और मैं एक साइड.
17: अरे रे कैसे हो यार.
18: सॉर्टेड या झगड़ा.
17: दैट्स रियली यार, मतलब आपकी बहन ने बहुत सहन किया है, अभी भी कर रही है.
18: ऐसा नहीं है.
17: ऐसा ही है. Let's go. Straight from the heart. और वो अकेली नहीं है.
2: Your property's true sale value with NZPMI, your

ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Let's go! 3, 2, 1.
2: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
3: Masti karenge, mauj kaatenge, garda paar denge.
4: ट्रेंड मेकर्स आप लेकर आपके लिए लेकर आते हैं हम ऑन द ड्राइव शो 6 से 7 के बीच. गुड इवनिंग,
5: अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू. और आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल शो ऑफ गुलजार.
4: आज गुलजार जी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इंडिया इज मोस्ट सेलिब्रेटेड उर्दू पोएट, लिरिसिस्ट, स्क्रीन राइटर्स, फिल्म डायरेक्टर्स ये रहे हैं. एंड इनको जाना जाता है फॉर हिज एवोकेटिव इमेजरी एंड कॉन्वर्जेशनल येट डीपली पोएटिक हिंदुस्तानी स्टाइल.
5: क्या आपको उनका पूरा नाम पता है? अगर पता है तो लिख के भेजिए. 5599 इज अ नंबर. गुलजार का नाम क्या है? मतलब दिस इज अ पेन नेम गुलजार,
4: बट पूरा नाम क्या है?
5: पूरा नाम क्या है?
4: और ये क्वेश्चन में ही नाम का हिंट भी है.
5: गुड वन.
4: यस,
5: तुम्हें पता है इनका बर्थ 1934 में जहाँ पे हुआ था, दैट प्लेस इज इन पाकिस्तान नाउ.
4: Oh right.
5: Yeah. So his family migrated to India during the partition.
4: Dina में उनकी पैदाइश हुई थी और फिर वो मुंबई migrate हो गए थे partition के बाद. And उन्होंने actually मैं car mechanic की तरह भी काम किया है. He worked as a car mechanic while writing poetry on the side under his pen name Gulzar.
5: वैसे उनकी बेटी मेघना गुलजार, she is also a very good prominent director. राजी movie जिन्होंने बनाई है.
4: That's right. Yes.
5: सैम बहादुर बनाई है. तो उनकी बेटी जो है देखा जाए तो उन्हीं के नक्शे कदम पे ही चल रही है.
4: या वेल, आज आपको गुलजार साहब के गाने हम सुनाएंगे जो उन्होंने लिखे भी है कुछ, और कुछ उन्होंने मूवीज भी काम किए. तो इनके सारे डिटेल्स इनके बारे में हम आपको बताएंगे.
5: शुरुआत करते हैं इस मूवी के साथ जिसको उन्होंने डायरेक्ट किया है.
4: ये मूवी डायरेक्ट किए उन्होंने,
5: या माचिस मूवी.
4: ओह माय गॉड, माचिस इज क्लास मूवी. हां,
5: क्लास मूवी. ये गुलजार ने डायरेक्ट की थी एंड इसके गाने भी इन्होंने खुद ही लिखे थे.
4: तो एंजॉय कीजिए इस बार ये बहुत ही क्लासिक सॉन्ग हरिहरन और सुरेश वाडकर की आवाज में.

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. Trendmakers में आज आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं गुलजार स्पेशल. क्या मस्त मस्त गाने लिखे यार इन्होंने.
1: मस्त गाने इन्होंने लिखे यार. इनका जो काम है रेडियो के लिए भी काफी जाना गया है रूस में. He is also best known for the radio and audio work. मिर्जा गालिब एंड तेरा बयान गालिब. ये he wrote originally for दूरदर्शन उस समय पर. इन्होंने बायोग्राफिकल ऑडियो ड्रामाज एंड पोएट्री जो है ये लिखी थी इन्होंने उस समय पर, जो कि रेडियो पे ऑल इंडिया रेडियो पे भी प्ले होती थी.
0: ओह वाओ. इनको एक्चुअली काफ़ी अवार्ड्स भी मिले. इनको हाईएस्ट इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा मिला है, विच इज़ दादा साहब फाल्के अवार्ड 2013 में. पद्म भूषण उनको मिला है जो इंडियाज थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है. फिर उनको इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड भी मिला है जिसको है ज्ञानपीठ अवार्ड. ज्ञानपीठ अवार्ड, सॉरी ज्ञानपीठ अवार्ड शायद है उसको बोलते हैं. एंड एकेडमी अवार्ड्स एंड ग्रैमी भी इनको मिला है फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो.
1: या
0: स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए.
1: तो बहुत ही सुपर्ब गाने इन्होंने अपनी लाइफ में लिखे और गानों की ना गहराई समझ में आती है. बिकॉज समझ में आता है कि या गुलजार साहब ने इनको लिखा है, वो गहराई है उसमें, शायराना अंदाज है उसमें.
0: काफी बार उनका वो भी होता है ना, गुलजार और जावेद अख्तर के बीच में वो एक होता था ना कि गुलजार के वर्ड्स बहुत ही ज्यादा ये होते थे, एक कुछ जोक होता था कि जावेद साहब फिर ट्रांसलेट करके देते थे. आई थिंक
1: इनके कहने का मतलब ये है,
0: इनके कहने का मतलब ये है.
1: एंड बहुत सारी इन्होंने चीजों को रिसाइट भी किया है. आई रिमेम्बर तो अमृता प्रीतम, पता है अमृता प्रीतम वॉज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया जिनको लिटरेचर के लिए अवार्ड भी दिया था, उनको पोइम्स के लिए भी अवार्ड दिया गया था. एंड उनकी लिखी हुई बहुत सारी पोइम्स इन्होंने रिसाइट की हुई है.
0: राइट.
1: वेल उनका और इमरोज के जो रिलेशनशिप के ऊपर जो उनकी पोइम्स थी, सो उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारी पोइम्स को रिसाइट किया हुआ है. एंड बहुत सारी और चीज़ें भी, जैसे कि कबीर एंड रविंद्रनाथ टैगोर की जो पोइम्स है उनको भी इन्होंने रिसाइट किया हुआ है. वो भी ऑडियोज इन्होंने प्रोड्यूस किए थे.
0: राइट. रिसेंटली गुलजार को हमने ऐसे वापस से वो रिलीव हुए थे बिकॉज जो सुनील ग्रोवर है उन्होंने गुलजार का रोल प्ले किया था. कैरेक्टर प्ले किया था,
1: बिल्कुल ही वैसे लगे थे.
0: वैसे काफी वैसे लगे थे. वेल अभी के लिए गुलजार का ये एक और बढ़िया सा गाना आपके लिए, एंजॉय कीजिए ऑन हम.

0: Trend Makers.
1: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए.
3: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
5: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम. There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.
7: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे. नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
8: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
7: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
8: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL. T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई.
9: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
10: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quickstep. Visit your local Flooring Extra showroom today.
11: Flooring Extra. Adore your floor.
12: This winter, with all the dreaded lurgies about, NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So, if you're able to, get your blood buddies together and book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
13: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin-binning. And you need to know about it.
14: Join our tribe!
13: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
14: join our tribe.
0: The beat of Bollywood.
15: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं
16: है. Are you ready to go home?
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now.
17: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. गाने आपके लिए आज हम गुलजार के बजा रहे हैं. और मुझे मतलब हर एक टाइप के गाने यार गुलजार ने लिखे हुए.
18: देयर
17: इज लाइक नाइस रोमांटिक सॉन्ग्स आल्सो, देयर इज लाइक गुड फीलिंग वाले गाने, लाइक यू नो फील गुड सॉन्ग्स.
18: बहुत सारी चीज़ों में वो ऐसे न्यूज़ भी बन के रहे हैं. यू नो ही प्रोड्यूस्ड अ मूवी एक्चुअली में. उन्होंने मूवी बनाई थी जिसका नाम था द बैन ऑन आंधी 1975 में.
17: अच्छा.
18: जिसमें सुचित्रा सेन थी. और इस मूवी के बारे में मैंने बहुत बार सुना भी है अपने डैड से. This movie was banned during the Indian emergency because
17: Andhi
18: ke bare mein baat kar rahi hu. Yeah, because jo lead character ki look thi, it was very closely resembled to India's then Prime Minister Indira Gandhi. So ban was lifted after the emergency ended. Then another movie was kafi inki controversial, The Shelved Libas. So jisme unhone extramarital relationship dikhaya tha. एंड इस मूवी को सेंसरशिप बैकलैश मिला था.
17: राइट, क्योंकि वो जमाने में तो ये सारी चीजें नहीं दिखा सकते थे.
18: इमेजिन दिस इज 1988.
17: तभी भी होता था.
18: मतलब अलविदा कहना मतलब कितनी देर बाद आई है उसके बाद जब जाके एक्सेप्टेंस थोड़ी बहुत मूवीज को दिखाने में हुई.
17: That's right. क्योंकि तभी सेंसर ने अलाउ किया था वो मूवी को ना. या मतलब ये सारी चीजें मुझे लग रहा है यही तो चीजें होती है ना कि टू टॉक अबाउट अनकंफर्टेबल टॉपिक्स एंड टू यू नो मेक आर्ट ऑन दैट. बट इन्होंने काफी पोएटिक इनोवेशन भी किया है. उन्होंने पॉपुलराइज किया त्रिवेणी को, एक पोएटिक फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ थ्री लाइन्स वेयर द थर्ड लाइन रीफ्रेम्स और डीपन्स द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट टू लाइन्स. तो ये भी उन्होंने एक्चुअली इनोवेशन किया था इस चीज का. त्रिवेणी
18: इसमें वो लाइन है ना, मैंने अभी पढ़ी है, बहुत अंदर तक जला देती है वो बातें जो बातों में नहीं होती. दो मतलब तीन लाइन तो नहीं उन्होंने की यहाँ पे, लेकिन दो लाइन है ये. बट इमेजिन द थिंग्स लेफ्ट अनसेड,
17: बहुत अंदर तक
18: में
17: जला देती है वो बातें
18: जो बातों में नहीं होती.
17: जो बातों में नहीं होती, क्या बात है यार. वेरी नाइस. वेल और भी बातें आपके लिए लेकर आएंगे हम ऐसे ही जो बहुत अंदर तक जला देगी. नहीं, आपको बहुत अंदर तक हंसा देगी शायद.
18: इसीलिए गुलजार गुलजार है
17: और हम फुलजार.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply. Hum, accurate traffic.
3: Get up and Gold Coast. Fine overnight and a low of 7 from the centre of town to Silverdale, taking a half an hour at the moment. On the northwestern to Massey, just 20 minutes. On the southern to Monaco, 22, and Drury, 33. It's heavy heading south from Tacoma Street to Penrose Road and north from Penrose Road to just past Green Lane. Southwestern's heavy heading north through Mangere Bridge and south from Lambie Drive to the southern.
4: Trade the winter chill for Gold Coast sunshine with great low fares at jetstar.com.
5: Kya baat hai us khane mein jo pure ghar ko dining table par le. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी supermarket से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए.
6: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Beautiful German Grohe Basin Mixers $149. American Standard Toilet Suite $349. Luxury Clashish Wall Vanities $399. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
8: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
7: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
8: Available at selected branches. T's and C's apply.
7: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
9: Kia ora. If you're enrolled to vote, you'll soon receive an enrolment pack in the mail. Keep an eye out for yours.
10: Your enrolment pack should arrive by 22 August. Open yours and check your details to make sure they're correct. Learn more at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
11: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
12: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
13: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz
14: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
15: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. Trendmakers mein hum Gulzar ke gaane aapke liye yahan pe lekar aa rahe the ye pure ghante.
16: उनके गानों में आप नोटिस करेंगे बहुत सारे जो है कई बार यू नो ब्यूटी के ऊपर बहुत सारा गाना होता है एंड उनके गानों में मेटाफोर्स को बहुत अच्छे वे से यूज़ किया होता है उन्होंने अपनी जैसे शायरी होती है वैसे उनके गाने लिखे हुए होते हैं
15: या उन्होंने एक्चुअली में काफ़ी बॉलीवुड में बहुत उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उनके आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट कंपोजर्स कोलैबोरेशन के लिए रहे आर डी बर्मन एंड उसके बाद अभी के ज़माने में देखे तो ए आर रहमान and then actually he's worked with a lot of them yaar Vishal Bhardwaj Shankar Ehsaan Loy phir Madan Mohan aur Salil Chaudhary inke sath bhi inhone kafi kaam kiya hai
16: बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया इन्होंने. एंड या तो इनके गाने आज, इनके लिखे हुए गाने एक्चुअली में आज आपने यहाँ पे सुने. सारे गाने तो इनके लिखे हुए हम नहीं प्ले कर पाए आपके लिए, बट फ्यू सॉन्ग्स हमने

0: बस हम गिनती उन्हीं चीज की करती है जो हासिल ना हो पाए.
1: बिकॉज एट टाइम्स वी डू ग्रेटिट्यूड नहीं करते ना हम बेसिकली, इसका मतलब वही है ना, हम चीजों को फॉर ग्रांटेड बहुत लेते हैं.
0: एंड ऑनेस्टली मैंने ये खुद भी ये पर्सनली नोटिस किया है कि अक्सर ना हम वो चीज जो हमने हासिल कर ली है उसको हम डिस्काउंट ही कर देते हैं. हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है ना, ये तो ऑब्वियस था, ये तो मिलना ही था,
1: ये है मेरा अभी, मुझे
0: ये
1: चाहिए,
0: नहीं मिला मुझे.
1: या
0: हम अक्सर वही करते बातें. सो या थैंक यू सो मच फॉर यू नो ट्यूनिंग इन, लिसनिंग अराउंड. ट्रेंड मेकर्स आप चेकआउट कीजिए, हमारा एक चैनल है रोवा ऐप पे.
1: सो रोवा ऐप पे जाके आप ट्रेंड मेकर्स भी चेक कर सकते हैं. कुछ सेगमेंट्स हमने ऐसे स्पेशल शोज आपके लिए वहाँ पे भी रखे हैं, तो यू कैन गो एंड लिसन आउट ओवर देयर एज वेल.
0: जी, और इसी के साथ अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द, कल मिलेंगे. लेकिन थैंक यू सो मच फॉर बींग विद अस. जाते जाते जो गाना आपको सुनाने जा रहे हैं, ये गाने ने एक्चुअली में लिखा है गुलजार साहब ने. इस गाने ने हमें एक ग्लोबल रिकग्निशन दिया बिकॉज दिस वाज इन द ऑस्कर्स. ऑस्कर में भी जीता ना ये गाना,
1: और आज भी ग्लोबली इस गाने को हर कोई पहचानता है.
0: या एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द विक्ट्री सॉन्ग. जब भी हम जीतते हैं, कुछ होता है, तो ये गाना ज़रूर बजता है. सुखविंदर सिंह और तन्वी शाह की आवाज़ में आपके लिए जाते जाते दिस सुपर हिट ट्रैक जय हो.

0: Andrews B.
1: अरे राम माशाल्लाह इंशाल्लाह क्या बात है, आप तशरीफ ले गए, मुलाकात हो गई आपसे।
0: हम
2: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
3: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना।
2: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: शादी कर सकते हैं
3: क्वीन विक्टोरिया की तरह
2: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप तो वैसे ही लगेंगी मलिका तिलफरिया

मैं खत्म तो खेल खत्म। Playing Bollywood's biggest hit.

0: driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
5: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry. Now they are. Someone's just eaten and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
6: सुनो, bills बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
7: हाँ, mortgage भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर लें.
6: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
7: पर development के पैसे
6: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, your local development expert. Free site assessment के लिए visit nzpmi.go.nz या call 0800-4-NZ-PMI.
8: Get dinner sorted with fresh deals at New World North Island, like whole chicken legs, $7.99 per kilo, or Pam's stir fry kits, $4.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
9: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें. पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए. oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे. तमाकी तुरुकी, ऑलटुगेदर ओकलैंड.
10: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
11: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
10: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
11: Available at selected branches. T's and C's apply.
12: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Ryan. More than $106 million has been spent to date on a second Auckland Harbour crossing. There is still no plan for what should be built and how. The government yesterday commissioning another report due next year. In North Canterbury, State Highway 1 at Hunderley remains closed following a two-vehicle crash. Two people have been seriously injured. And Disney has dropped a teaser trailer for The Bluey Movie, a big-screen adaptation of the children's TV series. The characters are had a bit of a makeover with a new 3D look. In sport, Luke Hansen is the next man up in the halves for the Warriors. He'll play standoff against the Rabbitohs on Saturday night, with Chanel Harris-Tavita playing halfback. Rugby league with Machinery House in a league of their own. At the Men's Hockey World Cup in the Netherlands, New Zealand's playing Japan, a second group game. Near the 15-minute mark, there's no score. And former Australian Test batter David Warner has been fined just over $1,800 for drink driving, despite pleas from his lawyer to spare him over media coverage.
1: Sports News,
12: brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
14: World's best, hamari koi branch nahi hai.
12: Hum. Night Cafe on Hum. Aapka moment, Krish ka magic. Only on Hum.
15: A very good evening, everyone. Welcome to the show. मैं क्रिश आ गया हूँ. ट्यूजडे नाइट नाइट कैफे लेकर 18th August है आज, और आपका खास स्वागत है. इस्तकबाल है, रात 12 तक हमारा साथ रहेगा. और जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स, आज अगर आपका स्पेशल डे है, आई एम वेरी हैप्पी बर्थडे. आपको अभी से विश कर रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं. आज ट्यूजडे नाइट का ये शो में मैं क्रिश आपके साथ दूंगा. अभी जबकि आज ट्यूजडे है, शुरू करते हैं आपके लिए द मोस्ट अवेटेड सेगमेंट जो लाते हैं 8 to 9 के बीच. कोक स्टूडियो रीलोडेड.
12: कोक studio reloaded.
15: Welcome to the show, everyone. You're listening to your number one humping Bollywood's biggest hits, Coke Studio Reloaded. में आपका खास स्वागत है. जितने भी हमारे प्यारे listeners अभी साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं. Thank you so much. आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं. जितने भी हमारे lovely listeners online से हमारा साथ देने के लिए तैयार हो चुके हैं, out of Auckland Rover के जरिए आपका भी स्वागत है. Coke Studio में कुछ गाने पहले मैं आपको सुनाता हूँ और आज इंटरेस्टिंग खबरें Coke Studio पर मैं लाया हूँ, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा बहुत ही जल्दी. सुनते रहो यू नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स नाइट कैफे में. कोक स्टूडियो सेगमेंट ही आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं.

टॉक स्टूडियो रिलोडेड आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ने टर्न किया अ बेवरेज कैंपेन इनटू अ कल्चरल एक्सपोर्ट? कोका कोला पाकिस्तान ने डिस्क्राइब किया है कोक स्टूडियो एज पाकिस्तान्स लार्जेस्ट कल्चरल एक्सपोर्ट। सीजन 15 तक कंपनी ने कहा कि प्लेटफॉर्म हैड 24+ मिलियन सब्सक्राइबर्स, 5+ बिलियन डिजिटल व्यूज और ऑडियंसेस 180+ कंट्रीज में। इतना बड़ा रीच इस कॉन्सेप्ट का रहा है क्योंकि लोग रिसीव कर रहे थे। रिमार्केबल ये रहा है बिकॉज प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जा रहा था एज सेकेंडरी और एक्चुअली द म्यूजिक बिकेम द एक्चुअल एक्सपोर्ट। जो बेवरेज कैंपेन अब एक बड़ा एक कल्चरल एक्सपोर्ट बन गया। अब ज़रा सोचिए कि कोक स्टूडियो की शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ तक पहुँची। तो ऐसे कुछ भी शुरू हो सकता है अचानक से और बहुत ऊंचा उड़ान भर सकता है। ऐसा ही कोक स्टूडियो कॉन्सेप्ट के साथ में हुआ। कुछ ही देर में इंडिया केम 3 इयर्स लेटर बट टुक अ डिफरेंट राउट, इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा।

0: Studio Reloaded.
1: Coke Studio Reloaded आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. बहुत इंटरेस्टिंग ये सेगमेंट होता है और आई एम वेरी एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड टू बी शेयरिंग ऑल दीज वंडरफुल फैक्ट्स अबाउट Coke Studio. इतने सारे जानकारी अलग अलग तरीके से जो हमें मिलता है, कुछ रेयर, कुछ फैसिनेटिंग, कुछ हिडन, कुछ अनटोल्ड, ये लेकर आते हैं आपके लिए. इंडिया Coke Studio पाकिस्तान के 3 साल बाद आए ये कॉन्सेप्ट, लेकिन डिफरेंट राउट इन्होंने लिया. इंडिया ने लॉन्च किया Coke Studio एट MTV जून 2011 में, 3 ईयर्स आफ्टर पाकिस्तान. इनका फर्स्ट सीजन में 51 क्रॉस सॉन्ग्स थे अक्रॉस 9 रेगुलर एपिसोड्स, जिसमें हिंदुस्तानी और कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक को रखा गया था. फोक, रॉक, पॉप और बॉलीवुड भी शामिल था. फर्स्ट सीजन ने बहुत धुरंधर और बड़े बड़े कलाकारों को साथ लाया, जैसे शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान, कैलाश खेर, शान, वदाली ब्रदर्स और शफकात अमानत अली को भी लाया. तो ये बड़े बड़े नामों ने आकर गाना गाया. और अभी बहुत ही जल्दी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर कि एक फैसिनेटिंग इंडिया पाकिस्तान क्रॉस ओवर क्या रहा है. इसके अलावा पाकिस्तान सीक्रेट वेपन क्या रहा है, इंडियाज़ फर्स्ट सीजन क्या मल्टीलिंगुअल था और क्या लोग रिमेंबर करते हैं, इस पर भी जानकारी आज मैं Coke Studio Reloaded प्रोग्राम में आपके लिए शेयर करूंगा.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: Coke Studio Reloaded में एक बार फिर आपके स्वागत है. We are very near to the end of the program. तो कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें मैं आपको जल्दी से बता दूं. पाकिस्तान formula was almost the reverse, जहां पर ये version became an artist discovery plus collaboration और product ecosystem को लेकर ये concept बहुत ही मशहूर हुआ. और instead of simply recording established stars, Coke Studio repeatedly अलग-अलग musicians का इस्तेमाल करते थे. Classical singers with rock musicians, folk performers with pop singers. और ये collaborative DNA इस show का biggest innovation रहा है. और सबसे बड़ा अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ कोक स्टूडियो इज प्रिजर्वेशन ऑफ डिसअपीयरिंग ट्रेडिशंस. इट वाजंट अबाउट कंटेम्पररी हिट्स, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर फोक और क्लासिकल ट्रेडिशंस को भी बहुत ही बड़ा स्टेज दिया गया था और रीजनल ऑडियंसेस को भी काफ़ी कंटेंट मिला था बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल फ्यूजन. इट बिकेम बिगर देन द ब्रांड, मतलब ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया जितना सोचा नहीं किया था. और बिकॉज कल्चरल क्रेडिबिलिटी ऑफ म्यूज़िक और रीच और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोका कोला सभी कुछ ध्यान में रख के ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बन गया था. कोक स्टूडियो रिलोडेड में आज के लिए बस इतना ही. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. अगले घंटे पर मिलते हैं विद मोर इन्फॉर्मेशन. बहुत कुछ और भी आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे पास है.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स Breakfast show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
3: क्या? कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
6: Andy didn't think he needed a DVS system.
7: Nah, we're all right, aren't we?
6: But Andy forgot about his daughter who suffered from asthma and allergies.
8: Yeah, Dad.
6: So Andy got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work making their rooms drier, healthier and more comfortable. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
9: Owning a rental shouldn't feel stressful. Nesto makes property management simple with proactive support, better communication, and evening and weekend viewings. Visit nesto.co.nz. Nesto Property Management. Comfortably nested.
10: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.nz.

0: Night Cafe on Hum.
1: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ रक्षाबंधन स्पेशल सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू. आपने जो एक्चुअल वर्क होता है उनका रिव्यू के बारे में सुना होगा, लेकिन अपने सिबलिंग को रिव्यू करना ये भी एक टास्क है आपके लिए जो हम लेकर आए हैं. थिंक योर ब्रदर और सिस्टर डिजर्व्स अ ग्लोइंग रिव्यू और नीड्स अ सीरियस अप्रेजल. आप कॉल करें जब हमारे साथ ही आपको इन्वाइट करते हैं टू गो लाइव ऑन एयर और ऑफिशियल परफॉर्मेंस रिव्यू आप उनको दे पाएंगे. रिव्यू में आप उनको मतलब इन चीज़ों पर इंक्लूड कर सकते हैं, बेस्ट और वर्स्ट सिबलिंग एवर, बोरोइंग योर स्टफ विदाउट आस्किंग, या हमेशा ट्रबल में होना, या आपका बिगेस्ट सपोर्टर बनना, या आपको अनॉय करना 24/7. आप अपने रिव्यूज़ को शेयर करें और ड्रो में शामिल होकर कैश जीतने का मौका है. 2 लकी विनर्स को $250 ईच दिया जाएगा. 28 अगस्त को ड्रॉ होगा और दो विनर्स को चुना जाएगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Hum boarding call is now open. Dream Island Escape jeetne ka mauka hai. It could be just one boarding call away. Do return air tickets to Vanuatu with Solomon Airlines plus $1,000 spending money jeetne ka mauka hai. Is tarah se aap enter kar payenge. Aap hum ko sune every weekday aur apne kaan ko khule rakhe for the special boarding call. 8 AM, 11 AM, 1 PM और 5 PM होगा. जैसे आप ये बोर्डिंग कॉल सुनते हैं, आपके पास 30 मिनट्स है टू हेड टू रोवा एंड एंटर बोर्ड नाउ. दैट्स इट. आपको बस बोर्ड नाउ लिखना है और आप ड्रॉ में शामिल होकर अनफॉरगेटेबल वनुआतु गेट अवे जीत पाएंगे विद सोलोमन एयरलाइंस. और अपना फ्लाइट ना मिस करें, बिकॉज दिस कुड टेक यू टू पैराडाइज थैंक्स टू सोलोमन आइलैंड्स फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ओकलैंड टू वनुआतु. आप विजिट कर सकते हैं flysolomons.com पर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम.

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आप

0: Night Cafe. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: Welcome back, everyone. You're listening to number one Hum, playing Bollywood's biggest hits. Krish ka saath hai, Night Cafe jari hai. It is Tuesday, 18th August, aur main aapka saath de raha hoon. Aur it's past 10 news and sports update ke baad mein. As usual, lekar aa jaate hain aapke liye 30 minutes of non-stop music. Bahut hi pyare pyare gaane main lekar aaya hoon. Kuch peppy, to kuch rocking, to kuch sensuous, kuch romantic. Ye sabhi kuch aaj hamare saath hoga. Gaane ka naam main nahi bata raha hoon, lekin artists ka naam main aapke saath share karunga. Mika Singh, Mamta Sharma, पहला गाना. दूसरा योयोहनी सिंह, एसपी बाला सुब्रमण्यम, सुनिधि चौहान, बी प्राक के भी गाने हैं, आदित्य रॉय कपूर और निकिता गांधी, सोनू निगम, श्रेया घोषाल. इन सिंगर्स को आप सुने और गाने बहुत ही मजेदार होंगे, तो इसके लिए बस आप हमारा साथ देते रहे. एंजॉय एवरीवन.

0: Murphy on Hum.
1: टिंडर एंड आयल दोनों पे मैच हुआ प्रोफाइल. बायो भी थोड़ा हटके था एंड रेडियस विद इन अ माइल.
2: 52 राइट स्वाइप्स के बाद ये करिश्मा हुआ.
3: आई वाज टोटली वर्थ इट.
2: जिंदगी बदलने आई मेरी जिंदगी में मुस्कान दुआ.

0: कहाँ चुकी रेस्टोरेंट कौन कर कर कर कर टेल अस
1: या या सिंह सिंह
2: हाँ हाँ प्लीज बताओ मुझे भी जानना है ये राज ताकि मैं चैन से मर सकूं
3: आगे आगे आगे आगे

0: मिलना किसी से था मुझे, दूजा ही कोई मिल गया। नियत जरा बदल गई, मैं भी जरा बदल गया।
1: वाओ,

0: present harag.
1: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन इनवाइट कर रहे हैं कम्युनिटी को टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो 22nd और 23rd अगस्त को होगा बकनहेड स्काउट्स हॉल में. प्लेयर्स ऑफ ऑल स्किल लेवल्स को इन्वाइट किया जा रहा है टू पार्टिसिपेट. रजिस्ट्रेशन के लिए आप कॉल करें ऑन 021-090-85067 पर. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम.

0: please. We are now inviting all passengers booked on flight HUB 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win to return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
2: It's the truth. You know it. Your girl group do everything together. There's even a name for it. Do-getherness. Oh, cute. So why don't you do something new? Something that really matters. Something like giving blood or plasma together. This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and one donation could save lots of lives. Get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Oh, and coffee is included. Give blood, give plasma, save lives.
3: The beat of Bollywood.
4: World's best, hamari good brands nahi hai.
3: Night Cafe. You're listening to Krish.
5: Let's go!
6: You're listening to number one hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Imagine kijiye two countries, one epic adventure, zero stress. Sirf 12 spaces rahe gaye. Bali aur Bangkok getaway with Sandy and Rusbe March 2027 mein hone ja raha hai. Bali ka visit karna, Bangkok mein tuk tuk mein safar karna, majestic temples dekhna, bargains inke colorful market se lena. माउथ वाटरिंग स्ट्रीट फूड का भी मज़ा लेना और वहीं बाली में वाटरफॉल्स वॉकिंग थ्रू ब्रेथ टेकिंग राइस टेरेसेस स्विंगिंग अबव लश जंगल्स ये सभी कुछ हो सकता है तो ट्रेवल विद सैंडी और रुस्बे ये आपको लेकर जाएंगे ऐसे हॉटस्पॉट्स पर जिसका आपने जिक्र सुना होगा लेकिन कभी आप गए नहीं हैं इट्स ऑल प्लान्ड इट्स ऑल इंक्लूसिव ऑल यू हैव टू डू इज़ पैक योर बैग्स अर्ली बर्ड बोनस भी यहाँ पर दिया जा रहा है अगर आप ट्रिप अगस्त के दौरान बुक करते हैं तो वन फ्री नाइट्स अकोमोडेशन कहीं पर भी न्यूजीलैंड में आपको मिलेगा इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट फॉर टू सीट्स लिमिटेड है बहुत ही जल्दी सीट्स भर जाएंगे ड्राइव टेक्स करें 5599 पर फॉर दी ऑल एक्सक्लूसिव टूर प्राइस या सन टूअर्स को कॉल करें ऑन 0800-4SUN-TOURS यानी 0800-4786-8668 पर और बिफोर द स्पॉट इज गॉन आपको सिक्योर कर लेना है मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ सुनते रहो हम

0: Cafe on Hum. March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
1: Rusbe, tickets book ho gaye.
2: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
1: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
2: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
1: Fatiha.
2: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
1: Tuk tuk street food aur raaton ki rangin duniya bhi.
3: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
4: Hello everybody.
0: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
5: Thoda ghume aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
0: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe only on Hum.
6: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
7: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया. मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया.
6: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
8: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
9: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.
10: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
11: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
10: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
11: पर डेवलपमेंट के पैसे
10: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
12: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. The Human Rights Commission is calling for action to address the long-term

0: Coffee on Hum. आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
1: Welcome back everyone. You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और ये हमारा फाइनल आवा है नाइट कैफे में. 18th अगस्त है. अगर आपका जन्मदिन है, a very happy birthday to everyone celebrating. ये 18th तारीख खत्म होने से पहले मैं आपको विश करना चाहूँगा, जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, रोवर पर सुन रहे हैं या फिर आप नाइट शिफ्ट वर्कर है, ड्यूटी पर है, हमारी तरह आप भी काम कर रहे हैं, तो स्वागत है आपका. बैक टू बैक सॉन्ग्स आपको सुनाते हैं ये तमाम लिसनर्स के लिए जो अभी फिलहाल काम कर रहे हैं. आपको डेडिकेट करते हैं ये जो सॉन्ग्स है, बैक टू बैक सॉन्ग्स फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर आपके लिए. एंजॉय एवरीवन, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं एंड वेलकम टू द शो.

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You're with Krish on Hum, playing Bollywood's biggest hits. Raksha Bandhan ke dauran aap $300 cash jeet payenge. Hamare Facebook page par jaye. Sibling bonds ko expensive gifts se nahi dekha jata hai ya tola jata hai. In fact, ordinary objects aur extraordinary memories hi hamare liye kaafi hota hai. Jaise old cassette tape ho ya ek shared key ho, stolen t-shirt ho shayad. रक्षाबंधन पोस्ट हमने फेसबुक पेज पर डाला है. हम फेसबुक पेज पर, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाए, एक फोटो अपलोड करें ऑफ वन मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट इन द कमेंट सेक्शन. दो तीन सेंटेंसेस आप जरूर लिखें अबाउट द मेमोरी जो इससे जुड़ी है, और टैग योर सिबलिंग. ड्रॉ में शामिल होकर $300 जीतने का मौका है. विनिंग स्टोरी को लाइव रेडियो पर पढ़ा जाएगा ऑन एयर ऑन फ्राइडे 28 अगस्त, और $300 कैश गिव अवे अनाउंसमेंट भी विनर को दिया जाएगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: Cafe on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Crispy on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
2: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
1: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
3: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
4: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए

0: कैफे ऑन हम।
1: ऑल योर फेवरेट हिट्स हमारे साथ होगा एक के बाद एक, आपको बस हमारा साथ देते रहना है। क्या कुछ हो रहा है बॉलीवुड में, इस पर भी जानकारी हम लेकर आते रहेंगे। बंटवारा 1947 वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस डे 3 कलेक्शंस की बात किया जाए तो कहा गया है फिल्म क्रैशेज इन द ओपनिंग वीकेंड। प्रीटी ज़िंटा और सनी देओल इस फिल्म में नजर आएंगे, लेकिन फिल्म का उतना अच्छा रिव्यू नहीं रहा है। वहीं पर आवारापन 2 बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दिखा रही है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस डे 3। इट ऑलरेडी हैड हिट 110 करोड़ माइलस्टोन। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम।

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे यहीं पर ख़त्म हो रहा है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा. हमारी मुलाकात होती है अब कल एक बार फिर नाइट कैफे लेकर आ जाएंगे आपके लिए वेंसडे नाइट नाइट कैफे, जिसमें मिडवीक मसाला भी रहेगा, बॉलीवुड खबरें भी आपके लिए हम शामिल करेंगे.

0: जेट बीच को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
3: Hum. Night Flight on Hum.
4: Yeah! Satisfied. We're winners. Give one reason to come alive.

What is up? क्या बोल रहे सब लोग? MV बंटा है मालूम है ना? मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे. Let's do it. Hey.

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: डॉक्टर ने क्या बोला?
4: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
3: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
5: That conversation is happening in more TV homes than you think. Hi, I'm Nitesh Hira from Assured One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
6: Book your free insurance review today. Call Assured One on 0800-77-HIRA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. North Indian Advisory Limited trading as Assured One is a licensed financial advice provider.
7: Indelible Homes wali kahani sunao na.
8: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
9: And award goes to Indelible Homes.
8: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
10: Kahani of Indelible Homes.
11: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz. Night Flight.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजवे, ओनली ऑन हम। There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: कोई शिकवा ना करेंगे ना आजमाएंगे तुम जहां पाव रखोगे ये दिल बिछाएंगे हम तुम्हारी वफा की दुनिया में

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special Hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
2: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया.
3: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
4: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
5: डॉक्टर ने क्या बोला?
6: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए.
5: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता.
7: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक. हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अशोर वन. माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड.
8: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे. कॉल अशोर वन ऑन 0800-77-HEERA. दैट्स HIRA. और विजिट ashore1.co.nz. नॉर्थ इंडियन एडवाइजरी लिमिटेड, ट्रेडिंग एज अशोर वन, इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर.
9: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने हम.
10: तेरी बेस है फाड़ू मेरी हाइज के लिए हम.
11: तेरे किट धूम, तेरे किट धूम, तेरे किट.

0: driving you home? Drive show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
4: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी
5: हाँ मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें
4: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉलिसी बात कीजिए मेरे दोस्त ने भी की थी अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए अब रेंट भी आ रहा है
5: पर डेवलपमेंट के पैसे
4: आपको नहीं लगाने NZPMI सब संभाल लेगा
6: NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े

0: कूलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar Golden Diamonds, Botany Town Center.
3: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
4: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
3: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
5: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
6: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800 862 342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
7: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.

मीराबाई से लोगों ने प्रश्न किया कि चलो हमने माना कि तुमने गोविंद मोल लिया है, तो जब भी कुछ मोल लिया जाता है तो उसका कुछ मूल्य होता है, तभी तो खरीदा जाता है। तो तुम्हारे गोविंद का मूल्य क्या है हमें भी बता दो, हम भी खरीद लाए। अब मीराबाई का भक्तिपूर्ण उत्तर सुनिए।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा, Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: 6 to 10 a.m.
1: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
2: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
3: अब हमारा क्या होगा?
4: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
2: तो क्या करें?
5: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
6: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
7: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला, रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
8: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercenter, Cavendish Drive, Manukau.
9: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
10: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
9: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
10: Available at selected branches. T's and C's apply.
11: Time check.
12: Good morning. इस समय एक मिनट बाकी है 6 बजने में.
11: हम News brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Morning. I'm Grace Cox.

0: patting itself on the back. More than 83% of its July flights arrived within 15 minutes of schedule, up 6.4% on the same time last year. Meta is on trial in the US over claims it deliberately designed its platforms like Facebook to be addictive to young people. 29 states have joined together in an unprecedented lawsuit seeking billions of dollars in damages. To rugby with Shift 4, encouraging news for Damien McKenzie ahead of Sunday's test against the Springboks at Ellis Park. All Blacks assistant coach Tana Umaga says the fullback's ankle injury is looking good at training.
1: Oh, he was sharp today. He got through what he needed to get through, so you know he's trending well for being available for this weekend.
0: And Luke Hansen will start at standoff for the Warriors in just his second NRL match against the Rabbitohs in Sydney on Saturday.
2: Sports News.
3: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
4: Super City Auckland mein filhal temperature hai 13.7 degrees ya maaf kijiyega 8.7 degrees high of 13 expected hai baad mein chalkar overnight temperature rahega aaj 3 degrees tak mausam finally fine beautiful weather sunrise hoga isi ghante 6:59 am par aur sunset 5:51 pm par
3: the breakfast show with Weejay and Pooja
2: brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins Fortune fuels every win big or small bring home the fortune and Harrington Living at Bedzara Monaco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
3: Breakfast catch up.
4: Hello, Kiora. Good morning. Namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Good morning, Aapko.
5: Good morning. Good morning. Welcome to the breakfast show with Vijay and Pooja. बुधवार है आज 19 तारीख अगस्त ये सुबह मुबारक हो आपको
4: बिल्कुल आज की इस ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग में आप सभी का स्पेशल वेलकम हम कर रहे हैं फिलहाल समय की ओर देखिए तो 2 मिनट हो रहे हैं समय हमारे स्टूडियोज में 6 बजकर और आज की ये सुबह आप सभी के नाम इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम के साथ तो चाहे 104.2 FM या रोवा ऐप के जरिए अगर आज आप हमें सुन रहे हैं आप सभी के साथ और समय के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए आज सुबह सुबह और उम्मीद है कि बाकी का जो सफर है बाकी का जो प्रोग्राम है इसमें भी आप हमारे साथ बने रहेंगे जुड़े रहेंगे
5: हर सफर में एक हम सफर की जरूरत जो है ये हर किसी को पड़ती है और चाहे वो जिंदगी का सफर हो या फिर घर से दफ्तर तक का सफर हो जो भी सफर हो
4: कुछ लोगों को घर से दफ्तर तक का सफर अकेले तय करना ज्यादा अच्छा लगता है ना शांति होती है कुछ लोगों के लिए कुछ लोग अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करते हैं बट इन दैट मैनर लाइक We are with you here.
5: अगर
4: फिजिकली नहीं है हम
5: अगर आप अकेले भी सफर करते हैं तो आप अपने खुद के हम सफर होते हैं
4: ओ हाँ वो भी बात है वेरी ट्रू
5: हर सफर में एक हम सफर की जरूरत होती है और हर सफर में हम आपके साथ शामिल रहते हैं
4: तो आज भी जरूर हम आपके साथ बने रहेंगे अभी से लेकर ठीक 10 बजे तक वैसे आपको पता है ना कि शुरुआत हर सुबह प्रोग्राम की हम करते हैं ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ कैचअप हमारा एक ऐसा घंटा होता है जहाँ पर वी ट्राई एंड गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन फॉर यू जो जरूरी हो जो पर्टिकुलरली न्यूजीलैंड में हुआ हो दुनिया भर में कुछ बड़ी चीज़ें अगर हुई हो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कुछ नया हमारे हाथ लगे तो ये भी आपके साथ हम शेयर करते हैं एंड दैट्स व्हाट वी गोना डू दिस आवर सो होपफुली यू आर रेडी फॉर इट वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM ईयर ओवर एप पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा

0: सनी साइड अप।
1: तो चलिए आज की सनी साइड अप स्टोरी जो है ये अब आपके लिए हम लेकर आते हैं, जहाँ के भी आप साथ हमारा दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हर सुबह आपके लिए जो सनी साइड अप स्टोरी होती है, दिस इज़ बेसिकली टू मेक यू फील ऑल द लव, ऑल द पॉजिटिविटी इन दिस वर्ल्ड जो हमारे हाथ लगता है, और ये सुबह सुबह आप तक हम ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज की ये जो स्टोरी है, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये कि ऑफ कोर्स दिस इज़ समथिंग दैट्स बीइंग डन, और इसे यू नो कहीं ना कहीं इस मोटिव के साथ करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों की हेल्प हो। बट ऑन दी अदर साइड इसका जो दी अदर पहलू है वो है ये कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है, बट इट रेजेस कंसर्न्स कि हमारी कम्युनिटी में या पर्टिकुलरली हमारी कंट्री में क्या हो रहा है। सो ये स्टोरी इज ऑल द वे फ्रॉम हैमिल्टन टुडे इन न्यूजीलैंड, और हमारे खुद के देश में हैमिल्टन में जो पहला सोशल सुपरमार्केट ये खुल चुका है।
2: सोशल सुपरमार्केट?
1: यस। सो दिस सोशल सुपरमार्केट इज नॉट जस्ट समथिंग टू हेल्प द पीपल इन नीड, लेकिन एक स्टार्क रिमाइंडर भी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं हमारी कंट्री में जो बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि फूड ये एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल फूड बैंक्स जो कि तमरी की तू तमरी की ओरा के न्यू सोशल सुपरमार्केट के सेटअप के लिए ये कहा जा रहा है कि ये एक रेगुलर सुपरमार्केट जैसा ही है। सो बेसिकली एक सोशल सुपरमार्केट जो है ये जबकि यहाँ पर पहली बार खुला है न्यूजीलैंड में, तो फूड बैंक्स में जो नॉर्मली फैमिलीज को फूड बैंक्स में पार्सल्स या फिर फूड बॉक्सेस जो है ये प्रोवाइड किया जाता है, वो ये सुपरमार्केट नहीं करता। यहाँ पर लोग इस सुपरमार्केट में जाते हैं जो कि एक्चुअल सुपरमार्केट जैसा सेटअप है। आपको फ्रेश प्रोड्यूस का एक अलग सेटअप मिलेगा, यू नो आप फ्रूट्स का एक अलग सेक्शन जाकर देख सकते हैं, ऑयल्स एंड राइस एंड लेंटिल्स एंड मीट, ये सारी चीज़ों का अलग अलग एक सेटअप होगा लाइक अ एक्चुअल सुपरमार्केट। एंड यू कैन वॉक अराउंड दिस सुपरमार्केट एंड चूज व्हाट यू एक्चुअली नीड।
2: ओके।
1: और ये कैसे वर्क करेगा, क्योंकि जो फैमिलीज रजिस्टर्ड है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिन्होंने ये शुरू किया है, वो फैमिली को असेस करते हैं बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। फिर उनको एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए जाते हैं, एंड एवरी आइटम इन दैट सुपरमार्केट हैज़ अ पॉइंट वैल्यू इंस्टेड ऑफ अ प्राइस वैल्यू। फिर वो अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं टू चूज द फूड एंड हाउस होल्ड एसेंशियल्स जिसकी ज़रूरत उन्हें है। दिस गिव्स पीपल मोर चॉइस बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिग्निटी, कि उन्हें वो नहीं दिया जा रहा है एक पैक में जिसकी शायद आधे से ज़्यादा चीज़ की उसको ज़रूरत भी नहीं है, पर पैसे नहीं है कैसे बोले कि ये नहीं ये चाहिए। तो इस पॉइंट सिस्टम के हिसाब से एक तो वो खुद जाकर अपना जो ज़रूरत का सामान ये ले सकते हैं, पर पैसे नहीं भरने पड़ते हैं, जो उनके सिचुएशन के हिसाब से पॉइंट्स दिए जाते हैं उन पॉइंट्स को वो खर्च करते हैं। ऑफ कोर्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इज समथिंग जिसकी वजह से एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सिचुएशंस लोगों के लिए पैदा हो रहे हैं, चाहे रेंट हो, मॉर्गेज हो, पावर हो, पेट्रोल हो, डेट्स हो या बाकी बिल हो। और ऐसे सिचुएशन में कहा जाता है जो सबसे पहली चीज जिस पर लोग बजट करना शुरू करते हैं वो है
2: ग्रोसरीज।
1: यस। सो दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम इज समथिंग दैट इज ग्रोइंग। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन कहा गया है कि द प्रॉब्लम इज क्वाइट सीरियस। 40% ऑफ फानाओ इन वाइकाटो जो है ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं सम फॉर्म ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, और इसके चलते ये पहला जो सोशल सुपरमार्केट ये ओपन किया गया है। कमाल की बात ये है कि इस सुपरमार्केट में आपको सिर्फ बेसिक एसेंशियल्स, फूड आइटम्स ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। सपोर्ट एज टू फाइनेंशियल एंड बजटिंग एडवाइस यहाँ पर आपको दिया जाएगा, सोशल वर्क सपोर्ट मिलेगा, मेंटर किया जाता है यंग लोगों को यहाँ पर विद डिफिकल्टीज दैट दे फेस इन लाइफ, और फ्यूचर में आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं, और हेल्थी फूड चॉइसेस के बारे में भी आपको डिटेल्स जो है ये यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। सो डेफिनेटली इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, लेकिन ये एक ऐसा सोल्यूशन है विच इज़ हियर टू हेल्प पीपल विद फूड प्रॉब्लम्स टूडे, कनेक्ट देम विद द राइट सपोर्ट एंड हेल्प देम बिकम मोर फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर के लिए।
2: चलो कहीं शायद कुछ तो ऐसा कदम उठाया जा रहा है। एक तो जरूरत है, डेफिनेटली जरूरत है,
1: बिल्कुल,
2: तो ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ करने की कोशिश जो है ये की जा रही है।
1: बिल्कुल। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी इफ यू कम टू थिंक अबाउट इट एंड इफ यू सी इट। जैसे कि मैंने कहा था शुरू करने से पहले कि इसके दो पहलू हैं, एक विच रेजेस अ कंसर्न, बट ऑन द अदर हैंड अनदर सोल्यूशन जो परमानेंट ना सही लेकिन एक सोल्यूशन है जिससे लोगों की हेल्प की जा सकती है बट उनकी डिग्निटी जो है ये कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा रही है. सो आज की सनी साइड अप स्टोरी आपके लिए ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. फिलहाल 16 मिनट हो रहे हैं 6:00. कमिंग अप नेक्स्ट ग्लोबल हेडलाइंस.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: हे देखो हम आ गए.
0: Ladies and gentlemen,
4: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
5: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
4: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
6: Blood and plasma donors are always precious, but in wintertime, with sickness about, NZ Blood needs even more donors to fill the gaps others leave. So, if you're well right now, we'd love you to step up and help us out. When you become a donor, you're giving a priceless gift to someone in need. You could help them get better and make yourself feel good. Just head to nzblood.co.nz and book in a time to donate today. Give blood, give plasma, save lives.
7: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin-binning. And you need to know about it.
8: Join our tribe!
7: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe. Your destination for sport. Download the app now and
8: join our tribe!
9: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoi. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, gift of life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jays Fresh and Valley Fresh, Papatoi or Shiv Prasad, Kelston.
10: Radio pe gaano ki farmaish ki ja sakti hai. Apno ke naam sandeshe bheje ja sakte hain. मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.
4: द बीट ऑफ बॉलीवुड.
11: वर्ल्ड्स बेस्ट. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Global Headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी बातचीत से इनकार किया है, जबकि ऑयल प्राइसेस जुलाई के बाद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं. और ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को न्यू यूएस टेरिटरी बताते हुए एक फोटो पोस्ट की है. सिट्राट के पास एक वेसल पर हमले और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ ईरान से दो बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे जाने के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया है. इसी बीच यूएस ने सीरियन एयरबेस पर इसराइल के हमलों को अननेसेसरी एस्केलेशन बताया है, जबकि यमन के हौतीज़ ने एक बार फिर सऊदी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा किया है. भारत में बेंगलुरु के पास फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एक बड़ा रेड मारकर 5 करोड़ से ज्यादा रुपए की नकली दवाइयों का रैकेट का पर्दाफाश किया है. ये अनलाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिना किसी वैलिड लाइसेंस के चल रही थी, जहां इलीगल दवाइयों को रीपैक करके रिप्यूटेड मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज के लेबल्स लगाए जा रहे थे. कर्नाटक हेल्थ मिनिस्टर ने इसे एक बड़ा ड्रग माफिया बताया है, जो इन काउंटरफिट मेडिसिन को मार्केट रेट से लगभग 50% कम दाम पर हॉस्पिटल्स को बेच रहा था. फिजी के इलेक्ट्रल कमीशन और फिजी इलेक्शंस ऑफिस ने साफ किया है कि वो अगले जनरल इलेक्शंस के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इलेक्ट्रल रूल्स में प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स से उनकी ऑपरेशनल रेडीनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. फिजी इलेक्शंस ऑफिस ने एक्सेसिबिलिटी और इलेक्टोरल प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए सरकार को कुछ कानूनी बदलावों के सुझाव दिए हैं, जिनका मकसद वोटर्स के लिए चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाना है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस का आउटकम चाहे जो भी हो, दोनों संस्थाओं ने आश्वासन दिया है कि वोटर्स को हर बदलाव की पूरी जानकारी दी जाएगी और एक ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट इलेक्शन करवाया जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच प्रथम टेस्ट मैच के चौथे दिन के खत्म होने पर श्रीलंका को यह मैच जीतने के लिए 288 रन की जरूरत है। इंडिया 462 और 193 पर रहा, जबकि श्रीलंका 284 और दूसरे इनिंग्स में चार खिलाड़ी खोकर अभी तक 84 रन बनाने में कामयाब हुआ है। OFC चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। आज 3 बजे पहला सेमीफाइनल ऑकलैंड सिटी और फिजी के रेवा एफसी के बीच खेला जाएगा, जिसके बाद गैलेक्सी एफसी और सेंट्रल कोस्ट रात 7 बजे एक दूसरे का सामना करेंगे। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम जरूर लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
4: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
13: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
14: मैं लाऊं अपना ए गेम।
4: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: रईस 3 का ये गाना आज आपके लिए सुबह सुबह हम शामिल कर रहे थे। 2018 में ये फिल्म आई, अमित मिश्रा, जुनीता गांधी एंड सिड श्रीराम, इनको आप सुन रहे थे। आपने देखी रईस 3?
1: नहीं
0: देखी
1: ना।
0: अच्छा, मैंने देखी है एंड आई थिंक इट वुड बी फेयर टू से कि जो पहली रईस आई थी, विच वॉज रईस, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, कटरीना कैफ एंड बिपाशा बासु, दैट वाज द बेस्ट वन।
1: जॉन अब्राहम किस वाले में थे?
0: रईस 2 में थे वो।
1: ओके।
0: बट आई थिंक आई स्टिल इट्स सेफ एंड फेयर टू से कि रईस वाज द बेस्ट वन, बिकॉज रईस 3 वाज हॉरिबल। और रईस 3 में एक डायलॉग था, आ बिजनेस इज आ बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, भूल गए आप ये डायलॉग। इतना ज्यादा वायरल हुआ था उस टाइम पर और बहुत सारे मीम्स भी बने थे इस डायलॉग में।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो एनीवेज कुछ फिल्में होती है जो चलती नहीं है, पिट जाती है भले, लेकिन कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज होती है जो उसको यादगार बनाई देती है।
1: या ऑब्वियसली अब जैसे मुकेश खन्ना को ले ले, कितना टाइम हो गया उनको पॉपुलर हुए, लेकिन आज भी उनका नाम चल रहा है। किसी से भी आप पूछो वो मुकेश खन्ना को जानता है, क्योंकि वो बार बार किसी न किसी यू नो कंट्रोवर्शियल इश्यू पर कोई ना कोई कमेंट कर ही देते हैं।
0: हाँ, वो खबरों में बने रहते हैं बिकॉज ही नोज हाउ टू डू दैट, आई गेस।
1: अभी आपको तो पता होगा ना कि जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट है महाराष्ट्र का, उसने शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ इन सभी को नोटिसेस भेजे हैं।
0: किस मामले में?
1: वो एक एडवर्टाइजमेंट को लेकर जो उन्होंने किया था, आई थिंक कोई इलायची समथिंग प्रोडक्ट है, और जो यूनिट है उनका ये दावा है कि वो क्या पान मसाला ना,
0: पान मसाला,
1: हाँ, उसको प्रमोट कर रहे हैं वो सारी चीजें जो है। और बाकी लोगों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुकेश खन्ना ने जाकर एक वीडियो बना दिया,
0: है समथिंग टू से उन
1: कि भाई मैं सपोर्ट करता हूँ।
0: किस चीज को?
1: कि उनको ये नोटिस वगैरह जो है ये भेजा गया है।
0: ओके।
1: अब जिसको सपोर्ट करना, आप बगैर बताए भी सपोर्ट कर सकते हो। वो सोच रहा था उनकी वीडियो चाहिए ये देखने के बाद। दूसरी तरफ एल्विश यादव और तेजस्विनी प्रकाश,
0: इनके बीच में काफी लड़ाइयां हो रही है ना।
1: हाँ,
0: विच इज वियर्ड बिकॉज जब इससे पहले, आई मीन आई डोंट नो द नेम ऑफ द शो वो अभी जो कर रहे हैं, बट इससे पहले जो शो वो कर रहे थे लाफ्टर शेफ, दे हैड क्वाइट अ गुड रेपो। एंड आई थिंक यार यही एक चीज ना मुझे रियलिटी शोज के बारे में पसंद नहीं आती, बिकॉज इट्स नॉट रियल, दैट इज द प्रॉब्लम विद इट। अभी एक शो पहले सच अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, फन रिलेशनशिप दैट दे वर शेयरिंग, कुछ हंसी मजाक कर भी रहे तो बुरा नहीं माना जा रहा है, लाइक देर नो आर्ग्यूमेंट्स एंड इशूज, यू नो जो बिल्डअप हो रहा है जो शो में दिखे, द वो भी एक रियलिटी शो ही था लाफ्टर शेफ्स, बट इट वॉज अ कॉमेडी कुकिंग रियलिटी शो।
1: हाँ, बट द थिंग इज कि उस शो का कॉन्सेप्ट ही टोटली अलग था।
0: Exactly.
1: और ये जो प्रोग्राम है प्लेग्राउंड, ये पांचवा सीजन है इसका। मैंने आज तक एक भी नहीं देखा, मैंने तो नाम भी नहीं सुना था इसका।
0: Likewise.
1: But apparently it's very popular. And Elvish Yadav जो है ये एक टीम के मेंटो है।
0: Right.
1: और his comeback as a mentor once again इस पांचवें सीजन में, जबकि तेजस्विनी प्रकाश और एक और शख्स है जिन्होंने डेब्यू किया है एज मेंटोर्स।
0: ओके।
1: और इनके बीच, एल्विश यादव और तेजस्विनी प्रकाश के बीच काफ़ी गर्मा गर्मी जो है एक एपिसोड के दौरान हुई। एंड क्या हुआ कि एल्विश ने अपने अपने या फिर अपनी टीम की ओर से बातें जो है ये कही कि वो नहीं चाहेगा कि उनके किसी मेंबर को चेंज किया जाए। तेजस्विनी ने जाकर कहा कि उस पर कि कौन चाहेगा अपनी टीम में से कोई जाए। और इस हीटेड एक्सचेंज के दौरान तेजस्वी ने एल्विश को बताया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो तुम्हें सिखाऊंगी।
0: अच्छा।
1: एल्विश ने अपने टीम मेट्स को बताया, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब तेजस्विनी प्रकाश जो है, तेजस्वी प्रकाश है,
0: तेजस्वी प्रकाश,
1: हाँ, तो वो
0: तेजस्विनी है, पता नहीं, आई थिंक इट्स तेजस्वी,
1: तो वो बहुत नाराज हो गई। उसने कहा कि हाँ सिखाओ है, हाँ सिखाओ कि दूसरों का घर जाके उजाड़ो। हाँ, कि अपने टीम, अपने जो टीम वालों हैं उनको
0: उनको बताओ कि दूसरों का घर जाके उजाड़ो।
1: हाँ।
0: ओके।
1: और इसको सुनते ही एल्विश का यू नो दिमाग एकदम खिसक गया, और उन्होंने एक सीरियस एलिगेशन लगा दिया तेजस्वी पर। अपने टीममेट से बातें करते हुए ने कहा कि डरना नहीं, ये शुरू से ही बायस्ड है।
0: अच्छा।
1: तेजस्वी ने कहा कि इसके ना व्हाट द टू टू टू
0: अच्छा मैं समझ गई। हाँ
1: मैं बायस्ड हूँ।
0: हाँ
1: अरे भाई सुन लो स्टोरी पूरी ना।
0: नहीं मुझे अब पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं है सुनने में।
1: उसके बाद क्या इसका जो क्या बोलते हैं पंच लाइन जब आप सुनोगे हाँ तब आपको मजा आएगा।
0: हाँ ओके लेट्स सी।
1: तो फिर दोनों के बीच काफी गर्मा गर्मी हुई है। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ये है वो है एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और आरुष भोला जो तीसरे मेंटो है उनके बारे में कुछ खबर नहीं है। ये बात पता चली करण कुंद्रा को,
0: हु इज क्वाइट क्लोज टू बोथ ऑफ देम। हाँ। एक के बॉयफ्रेंड है और एक के बहुत अच्छे फ्रेंड है।
1: तो उन्होंने एक्स पर जाकर एक वीडियो शेयर किया।
0: अच्छा
1: एक वीडियो शेयर किया और उस वीडियो में उन्होंने जो कहा है कहा नहीं गा के सुनाया है।
0: अच्छा
1: अब मैं तो गा के सुना नहीं सकता। तो उसने उन्होंने गाया है आई डोंट नो यहाँ का
0: वहाँ से नहीं प्ले होगा।
1: वहाँ डेस्क वन नहीं दिख रहा है कहीं पर
0: नहीं वो है। अच्छा बोलिए। हाँ अच्छा,
1: आप कोशिश करें शायद आ जाए। हाँ। ये
2: काला डोरिया कुंडे नाले अड़ी आई हुए छोटा देवरा पाबी नाले लड़े आई हुए।
0: अच्छा that explains।
1: हूँ क्या हो गया स्टोरी खत्म
0: बस इतना ही था। हाँ। ये आज आपने मेरा वाला काम किया।
1: क्या
0: बिल्डअप किया ऐसा और स्टोरी उतना कुछ खास नहीं निकला।
1: नहीं मुझे
0: करण कुंद्रा पार्ट वाज नाइस
1: रिएक्शन
0: बट द अदर बिट्स वाज लाइक ये वो ऐसा सा ये हुआ।
1: अब भाई you know
0: सीधे आप इंस्टेड ऑफ मेकिंग अस हियर द डायलॉग्स दे हैड एक्सचेंज एंड एवरीथिंग लड़ाई हुई बहुत गर्मा गर्मी हुई एंड दिस इज द रिएक्शन करण कुंद्रा गेव। बट यू नो अभी आई गेस संगत का सर है ना साथ रह रहकर आपको भी रह रहकर बिल्डअप करने का दिल करता हो। नेवर नो 24 मिनट्स अवे फ्रॉम 7:04 नाउ आज है वेंसडे 19th ऑफ अगस्त। थोड़ी देर बाद आपके लिए हम लेकर आएंगे आज का हमारा पहला सवाल। होपफुली यू आर रेडी फॉर इट।
3: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
4: डोंट माइंड लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
5: Accurate traffic.
6: Honda 0% finance.
7: Lots of sunshine today. Staying mainly fine. Just a bit cool. High of 14. Into the city at the moment. Southern motorway. Slow Papakura to Manurewa. Edit Papatoetoe. But drive time's not too bad. 23 minutes. Manukau to town. Northwestern 18 in from Massey. Bit of traffic at Te Aratu at the moment. Northern 18. Constellation to the city. Constellation to Sunnynook. A bit slow. And at Esmond. Southwestern fine. But a little traffic heading to the airport terminal.
6: 0% finance. No deposit. 36 months on Honda select grades. TC's fees and credit criteria apply.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
9: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
8: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
9: Available at selected branches. T's and C's apply.
10: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88-600.
11: Doctor ne kya bola?
12: BP aur cholesterol dono badh gaye.
11: Good thing hum checkup ke liye gaye, warna pata bhi nahi chalta.
13: That conversation is happening in more TV homes than you think. Hi, I'm Nitesh Hira from Assured One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
14: Book your free insurance review today. Call Assured One on 0800-77-HIRA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. North Endville Advisory Limited trading as Assured One is a licensed financial advice provider.
15: 3, 2, 1, rush! The rush is on at BP. Today only, save 20 cents per litre and get double points on fuel and shop. There's more to score at BP. Scan everyday rewards today and instantly save 20 cents per litre, max 50 litres. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewards.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: 20 minute baki hai samay hamare studios mein 7 bajne mein. Good morning. Welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. A very good morning aap sabhi ko bhi. Jo messages aapne subah subah hamare paas bheje hain. And aaj to Bobby Maan ji ne kamaal hi kar diya.
3: Kya kar diya?
2: Inhone subah subah hamare paas message bheja. And the time he sent the message is around 7 minutes past 4 in the morning. Inhone kaha Ganesha bless you with an awesome day. Good morning Pooja and Vijay. Aur uske baad inhone ek photo bheji hai aur wo hai ye. Main aapko pehle dikhana chahti hu.
3: Achha.
2: Powerball 15 million this Wednesday. Sale closes Wednesday 7:30 PM. Iska pura photo unhone bheja hai. Because he knows like we try wala ke nol na hum baate karte rehte hai hum aur Bobby Maan ji basically. So aaj Bobby Maan ji ne sabko yaad dilaya hai. $15 million ho chuke hain. Agar aap bhi apni kismat aazmana chahte hain, go for it. Dusri aur kuch aur bhi good morning messages aaye na.
3: Thank you so much. Subah subah hume yaad karne ke liye, it means a lot to us. सबसे पहले राम राम जय श्री कृष्णा है वो वंडरफुल डे टीम मिस्टर मटा मटा इस सुबह आपको मुबारक हो मैंडी गुड मॉर्निंग कैसी हैं आप और विनीता ने मैसेज किया है गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी वेंसडे आपको भी ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो
2: 19th of August है आज रिमाइंड कर रहे हैं आपको कि अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है या फिर समवन स्पेशल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो डू लेट अस नो
3: 5599 पर अपने मैसेजेस जो है ये आप हमें भेज सकते हैं आज सत्या नडेला ये नाम सुना है आपने
2: सत्या नडेला
3: हाँ
2: मैंने नेल्सन मंडेला सुना है
3: You haven't heard?
2: नहीं
3: आप गूगल करके देख लो तब तक
2: जी,
3: कि ये कौन है
2: जी.
3: साथ में आज सुधा मूर्ति जी
2: okay.
3: इनका जन्म आज ही के दिन 1950 में हुआ था दिस दे यू नो सुधा मूर्ति जी और इनके जो
2: हस्बैंड है नारायण मूर्ति
3: हाँ दे आर रियली इंस्पायरिंग वेरी वेरी इंस्पायरिंग कपल
2: आई पर्सनली लव द पर्सनालिटी ऑफ सुधा मूर्ति मू I would say.
3: तो आज सुधा जी का जन्मदिन है साथ में मधुरिमा तुली वो भी अपना बर्थडे जो है ये सेलिब्रेट कर रही हैं
2: राइट
3: और
2: टुडे इज द 231st डे ऑफ 2025 सॉरी 2026 मतलब इस साल के 231 डेज आर गॉन
3: हां वैसे पता चल गया आपको
2: क्या
3: सत्या नडेला जी कौन
2: हाँ, है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ
3: हाँ आज ये भी अपना बर्थडे मना रहे हैं तो इन सभी के साथ अगर यू नो सम वेरी वेरी इन क्या बोलते हैं
2: इन्फ्लुएंशियल
3: हाँ इन्फ्लुएंशियल और साथ में इंस्पायरिंग पीपल के साथ अगर आज आप अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं प्लीज डू लेट अस नो तो इतने सारे दिन खत्म हो चुके हैं आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है
2: ओह नाइस
3: और इंटरनेशनल क्या बोलते हैं इसको ओरंगुटन
2: Orangutan
3: Day ये भी आज मार्क किया जा रहा है और इसके साथ इंटरनेशनल बाउ डे ये भी आज मार्क किया जा रहा है
2: नाइस
3: आप बाउ बनाती हैं
2: कैसा बाउ लाइक जो बाउ लाइक
3: बाल को ऐसे ऐसे बाउ की तरह बनाना
2: नहीं नहीं मेरे को नहीं आता I'm not very talented, you see.
3: और आज World Humanitarian Day है.
2: Okay, there's so many days that are being celebrated. तो जो भी आपको पसंद हो या जो आप celebrate कर सकते हैं, वो जरूर कीजिए. पर फिलहाल आज का हमारा पहला सवाल. आज हम आपको मूवी गेस करने का एक अलग तरीका जो है ये दे रहे हैं नॉर्मली हम मूवीज में जो एक्टर्स होते हैं उनके नाम रिवील करते हैं एंड देन यू हैव टू गेस व्हिच मूवी वी आर टॉकिंग अबाउट बट टुडे वी गोना गिव यू अ डिस्क्रिप्शन बेसिकली ऑफ द प्लॉट बट बहुत छोटा सा और उस हिसाब से आपको अनुमान लगाना है कि कौन सी फिल्म है
3: okay.
2: So, आज की मूवी हमारी अ फेयरलेस कॉप जिनका एक बहुत ही स्वैग भरा एटीट्यूड है वो फाइट्स क्राइम व्हाइल बेंडिंग रूल्स अपने खुद के यूनिक स्टाइल में ही फाइंड्स हिमसेल्फ कॉट बिटवीन फैमिली ट्रबल्स अ पावरफुल एनिमी एंड अ लव स्टोरी जो उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल दे नाउन फॉर हिज आइकॉनिक स्टाइल पंची डायलॉग्स एंड अनफॉरगेटेबल डांस मूव्स कौन सी ये फिल्म हो सकती है
3: I know.
2: I also know because I prepared the question. But if you know, तो हमारे पास आप जरूर मैसेज कीजिए BF लिखे सबसे पहले फिर उसके बाद अपना आंसर अपना नाम और भेजिए 5599 पर याद रहे आज की हमारी बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे अ फियरलेस कॉप विद अ वेरी विद अ स्वैगी एटीट्यूड फाइट्स क्राइम व्हाइल बेंडिंग द रूल्स इन हिज ओन यूनिक स्टाइल He finds himself caught between family troubles, a powerful enemy, and a love story that changes his life. Known for his iconic style, punchy dialogues, and unforgettable dance moves, aaj ki Bollywood of the movie, kaun si movie hai? Ye Bollywood movie of the day, kaun si movie hai? Ye aapko batani hamare paas message karte hue, BF space se answer, name 5599 par. Let's see, kya aaj koi bhi sahi movie guess kar paata hai ya nahi?
4: Let's go.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI.

0: A very, very beautiful song early in the morning आज आपके लिए straight from the heart में हम शामिल कर रहे थे दीपाली सहाय की आवाज में. मैं वापस आऊंगा. Netflix पर ये फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख सकते हैं. और ये गाना भी तो काफी historic है because of the whole story behind you know दीपाली सहाय being signed up for this particular song.
1: तो
0: वो story I think हमने इसके बारे में बातें भी की है ना. फिलहाल 12 मिनट बाकी है 7 बजने में. और इधर आज का हमारा जो बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे आपको पहचाननी है, इंटरेस्टिंग आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं. राउडी राठौड़ हरमिला, आपने अपना जवाब जो है ये दिया है. और कमाल की बात ये है कि इट्स नॉट जस्ट यू, लेकिन आपके साथ आज कई लोगों ने राउडी राठौड़ जो है ये कहा है. शलनीत है, साथ में जितेश है, अमन है, प्रीति है, विकास है, नंदनी आपका भी जवाब राउडी राठौड़ आया है, रेनू आपने भी यही जवाब जो है ये दिया है, एंड अवि आपने कहा है सिंगम. तो अभी तक देखा जाए कोशिशें की जा रही हैं, बट गलत आंसर्स ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास. राउडी राठौड़ एंड सिंगम आपने अगर अपने आंसर्स हमें भेजे हैं, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग इन द आंसर्स फर्स्ट, बट यू हैव टू लिसन टू दिस केयरफुली. अ फेयरलेस कॉप विद अ स्वैगी एटीट्यूड फाइट्स क्राइम व्हाइल बेंडिंग द रूल्स इन हिज ओन यूनिक स्टाइल. ही फाइंड्स हिमसेल्फ कॉट बिटवीन फैमिली ट्रबल्स, a powerful enemy and a love story that changes his life. Known for his iconic style, punchy dialogues and unforgettable dance moves. I think last wali line par agar aap thoda dhyan doge to aapko film ka naam pata chal jayega.
1: Acha, last wali line phir se bata do tab.
0: Known for his iconic style, punchy dialogues and unforgettable dance moves. To agar aapko jawab mil gaya hai to jaldi se hamare paas apna answer aap bheje. 5599 पर बी एफ लिखना है सबसे पहले, फिर आंसर, फिर नाम. रोनल्ड है, अमन है, साथ में सईद आपका भी मैसेज आया है. हरमिला आप अगेन यू हैव ट्राइड बट अनफॉर्चुनेटली इवन दिस टाइम यू आर रॉन्ग. सिम्बा कहा है आपने.
1: हाँ, सिम्बा भी आइकॉनिक थी. पुलिस वाला भी था,
0: बट ये फिल्म नहीं
1: भी बढ़िया था.
0: It's not
1: dialogue
0: the movie.
1: Bhi
0: it's not the movie we're
1: Actor
0: talking about. Unfortunately, not the movie we're talking about.
1: Let's see.
2: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Tubo jao, papi ho. Tubo jao.
4: We gotta go. Are you ready?
5: Come and take a trip with me.
6: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter code now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
7: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
8: Let's go.
7: Visit flysolomons.com. T's and C's apply. Hum, accurate traffic.
9: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
10: High of just 14 today, but should stay fine all day. Into the city at the moment, Southern Motorway, almost half an hour, Manukau to town, 50 minutes from Drury. Slow Papakura to East Tāmaki and Sloan at Mount Wellington. Southwestern, a little bit slow both ways, but not too bad. Northwestern, 25 minutes in from Massey. Slow patches from there, but heavy at St. Luke's. Northern, 22 from Constellation, slow there to Glenfield at Esmond and at Silverdale.
9: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
11: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
12: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें. पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए. auckland.gov.nz/where-it-goes पे. Tamaki Turuki, All Together Auckland.
13: 3, 2, 1, rush! The rush is on at BP. Today only, save 20 cents per litre and get double points on fuel and shop. There's more to score at BP. Scan everyday rewards today and instantly save 20 cents per litre, max 50 litres. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewards-rush. Come on and get
8: Kiwi kids are active kids. Creative kids. Sporty kids. Are you a Weet-Bix kid?
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: बस 5-6 मिनट रह गए हैं अभी 7 बजने में और लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद क्लूज को समझ नहीं पाए या फिर आपने ओवरलुक कर दिया।
0: मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हरमिला हर एक कॉप मूवी के बारे में हमें बता देगा लेकिन सही जवाब नहीं देगा। हरमिला ने दोबारा कोशिश की है या तिबारा कोशिश की है फिर से और उन्होंने इस बार वांटेड लिखा है जो कि अगेन गलत है। सनी आपने तो टोटल डिफरेंट मूवी ही भेज दी है, आपने पद्मावत लिखकर भेजा है अपना आंसर। वी टॉकिंग अबाउट अ कॉप मूवी जहाँ पर ये जो कॉप है बहुत ही स्वैगी स्टाइल है इनका और आइकॉनिक स्टाइल है, पंची डायलॉग्स, अनफॉरगेटेबल डांस मूव्स। कौन सी फिल्म हो सकती है ये?

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 8 degrees temperature Auckland mein bhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 13, overnight kam se kam 3 degrees. A fine day. Sunset aaj ka 5:51 PM par hoga.
0: Breakfast show with Weejay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Good morning. Morning Madness.
3: हेलो कियोरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. 4 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर. देखते देखते देखो ना, आज के इस प्रोग्राम का 1 घंटा जो ये भी निकल गया और पता भी नहीं चला. दैट्स हाउ आवर मॉर्निंग स्टार्ट्स एंड ऑल थैंक्स टू यू कि जब आप हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ते हैं तो इतना मजा आता है दैट वी डोंट इवन रियलाइज कि हाउ फास्ट टाइम फ्लाइज.
1: एग्जैक्टली, वक्त जो है पंख लगाकर उड़ता जाता है और कभी कभी हमको एहसास होता है, कभी कभी हमको एहसास नहीं होता है. कुछ चीज़ें हम हासिल करते हैं अगर हम ध्यान देते हैं, और अगर नहीं तो फिर ये मौके हाथ से निकल जाते हैं.
3: बिल्कुल. चलिए, अब जबकि आज के इस ब्रेकफास्ट शो के सफर में हम पहुंच चुके हैं मॉर्निंग मैडनेस तक, तो अब शुरू कर रहे हैं मॉर्निंग मैडनेस आप सभी के साथ. बट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद न्यू थिंग्स दिस आवर, पिछले घंटे का जो सवाल हमने पूछा था, हरमिला ने तो आज सच में मजा ही करा दिया. इन्होंने इतनी सारी कोशिशें की एंड देयर वाज अ टाइम आई फेल्ट लाइक कि ये हर एक मूवी का जो नाम है ये लिखकर भेजेंगे, विच इज अ कॉप मूवी, लेकिन जो हमारा जवाब है वो नहीं भेजेंगे. बिकॉज ही फर्स्ट हीरो राडी राठौर, देन ही रोट सिम्बा, देन ही रोट वांटेड. फिर उसके बाद में कुछ और क्लूज हमने दिए या कुछ बातें की अबाउट द मूवी. कुछ और लोगों ने अपने आंसर्स भेजे. सनी वेल से अश्मीत का मैसेज आया, जया ने अपना जवाब भेजा, अमन ने आंसर भेजा, देविका ने भेजा, प्रकाश ने भेजा, एंड वी हैव प्रीति जिन्होंने बड़ा ही प्यारा सा मैसेज भी सेंड किया है. इट्स सो लवली टू हियर योर लवली वॉइस इन द मॉर्निंग पूजा एंड विजय. इन्होंने कहा होप यू हैव अ ब्लेस्ड डे, और साथ में जवाब भी भेजा है हमारे सवाल का. शीतल दिवाकर, इनका भी आंसर आया है. साथ में प्रिसिलिया है और अनुरीत, इन्होंने भी अपना

0: आंसर जो है ये भेजा है। अनुरीत ने भी गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा है और साथ में एक जवाब भेजा है फर्ज। और प्रनीता इन्होंने भी अपना आंसर जो ये सेंड किया है। हरमिला आपने एक और एक कमाल की चीज ये की, पहले तो इन्होंने सही जवाब भेजा, फिर बाद में जाकर इन्होंने एक और एक जवाब भेजा, विक्रम वेदा। तो आई थिंक ही केप्ट ऑन सेंडिंग ऑल द कॉप मूवीज इन बॉलीवुड, और जो इस पर्टिकुलर यू नो डिस्क्रिप्शन को फिट करता है उस हिसाब से इन्होंने भेजे अपने आंसर्स। बट हरमिला यू गॉट इट राइट, एक बार आपने सही जवाब भेजा लेकिन उसके बाद फिर आपने गलत जवाब भेजा, बट ट्राई कितना किया आपने, विच इज
1: Amazing.
0: Exactly. एक मैसेज भेजकर भी आप चुपचाप बैठ सकते हो, इट्स नथिंग कि आप बार बार भेजो, कोई ऐसा हम तो प्राइज नहीं गिव अवे कर रहे थे, बट यू हैड कीप ऑन सेंडिंग
1: यू केप्ट ऑन सेंडिंग योर
0: मैसेजेस, व्हिच इज You know, it's worth appreciating. Thank you so much.
1: Okay. आपको पता है ये वो गाना आपने सुना है कभी?
0: अच्छा एक मिनट, हमने सारी चीजें
1: बता दी। अच्छा आंसर नहीं बताया, बता दो।
0: मैं सोच रही थी आप बताओगे। The answer is simple, it's Dabang. We're talking about Chulbul Pandey.
1: So, thank you so much. जितने भी लोगों ने कोशिशें जो है ये की, गाने के बारे में मैं पूछने जा रहा था, कभी भी आपने वो गाना सुना है गंगम स्टाइल?
0: हाँ
1: गंगम स्टाइल,
0: गंगम स्टाइल, नॉट गंगम स्टाइल।
1: कौन सा स्टाइल?
0: गंगम स्टाइल।
1: अरे हाँ
0: नहीं,
1: आई मीन इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं अपना खुद
0: गंगम स्टाइल, वो गंगम स्टाइल ही गाते थे पहले, वो बात अलग है, बट वो गंगम स्टाइल है। Anyways, जी बताइए।
1: 2013 में इस गाने ने, अभी से तकरीबन यू नो 10-13 साल पहले इस गाने ने रेवेन्यू, एड रेवेन्यू में $8 million जो है ये कमाया था।
0: वाओ,
1: दैट्स अबाउट 13 इयर्स बैक। और अभी कहते हैं कि उस टाइम पर 1.2 बिलियन व्यूज मिले थे इस गाने को,
0: राइट?
1: एंड नाउ द व्यूज हैव गॉन अप टू स्लाइटली ओवर 6 बिलियन। 6 बिलियन जो है ये। तो अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या है वो तो पता नहीं, जिस तरह से पे आउट होता है ना आरपीएम रेट्स के मुताबिक $1-3 पे 1000 व्यूज, कहते हैं कि द राइट होल्डर्स हैव लाइकली एंड लव टू मीट टेंस ऑफ मिलियन डॉलर्स।
0: यार आम भाषा में बताओ ना
1: कि कम से कम 10-15 million dollars जो है ये तो कमाए होंगे
0: इस गाने ने।
1: हाँ,
0: okay.
1: एड रेवेन्यू में अलोन।
0: अच्छा अलग से?
1: हाँ,
0: वाओ,
1: जस्ट इमेजिन
0: अभी भी पैसे कमा रहा है गाना।
1: हाँ हाँ,
0: इंटरेस्टिंग यार, बट वो एक एक वन ऑफ हिट इन्होंने दिया, उसके बाद चलकर इन्होंने कोशिश की,
1: जरूरत नहीं पड़ी फिर।
0: हाँ वैसे तो जरूरत नहीं पड़ी, पर फिर इन्होंने कोशिश जरूर की, बट थिंग्स डिडंट वर्क आउट, वो एक अलग चीज है। एनीवेज आज चलिए आपने गाने के बारे में बातें की ही है, तो हम आपके लिए एक ऐसा गाना लेकर आ रहे हैं विच इज समथिंग दैट यू माइट हैव हर्ड बट इस अंदाज में नहीं। आई कैन बेट कि आपने ये गाना जो है ये सुना होगा, लेकिन इस अंदाज में शायद ये आप पहली बार सुन रहे हैं। और इस गाने की खासियत ये है कि जिस ग्रुप ने इसे गाया है उन्होंने इस गाने की कमाल की खूबसूरती तो बरकरार रखी ही है, लेकिन अपना जो टच इस गाने को दिया है दैट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एंड इट्स अ मैशअप जो वायरल हो रहा है। इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द स्माइल लांगा ग्रुप।
1: यस वो गाना खोल यू नो अपने पीसी पर ओपन करके मैं भी यहाँ बैठा था कि अभी इसके बारे में
0: बातें करेंगे। राइट, सो या तो हमने सोचा अभी आपको सुनाई देते हैं। तो स्माइल लांगा ग्रुप जो है, लांगा ग्रुप जो है, इन्होंने इस गाने को क्रिएट किया है, और बड़ा ही खूबसूरत इंडियन फोक वोकल के साथ साथ आपको जो वेस्टर्न स्टाइल है ये इस गाने में सुनने को मिलेगा। इट्स गोइंग क्वाइट गुड और काफी लोग इस गाने को पसंद भी कर रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज भी इसे ऑनलाइन मिल रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज मॉर्निंग मैडनेस की शुरुआत इस गाने के साथ।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
0: Rashi Vibes.
2: मेष यानी एरीज, आज आपके लिए कहा जा रहा है कि ऑफिस में काम पर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। बहुत एनर्जी के साथ आप काम करेंगे, जिसको लोग पसंद भी करेंगे। हो सके किसी भी तरह का रिस्क भरा इन्वेस्टमेंट जो है ये ना करें, और कहीं से कुछ पैसे जो है ये आज आपको मिल सकते हैं।
3: वृषनी टोरस, आपके लिए कहा गया है कि अगर नौकरी पेशा वाले लोग हैं आप, तो आज आप यू नो प्रोग्रेस करने के लिए जो मेहनत इतने दिनों से कर रहे थे, उससे जुड़ी कुछ खबर आपको मिल सकती है। सो इट विल वर्क आउट फॉर यू, जिसके लिए आप काफी खुश रहेंगे। और साथ में आपके लिए ये भी बताया गया है कि अगर पार्टनरशिप में कोई भी काम आप कर रहे हैं, या कोई भी काम बनती हो, बात बनती हो इस मामले में, तो किसी भी तरह की गलतफहमी को बीच में ना आने दें, वरना बनता बनता काम जो ये आपका बिगड़ सकता है। आज
2: मिथुन यानी जेमिनी, ऑफिस में कॉलीग्स का सपोर्ट आपको मिलेगा। लव लाइफ में कुछ नया और कुछ फ्रेश आज आप एक्सपीरियंस करेंगे। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। मेंटली काफी आप लाइट और हैप्पी फील करेंगे आज।
3: कर्क यानी कैंसर, आपके लिए वैसे बताया जा रहा है कि आज का जो ये दिन है, काम को बोझ या काम का जो बोझ है ये थोड़ा ज्यादा रह सकता है आपके ऊपर, और इसकी वजह से यूड फील दैट प्रेशर। बिजनेस है अगर जो आपका, तो सोच समझ कर सौदे करें। डील्स जो भी आज आपको करने हैं पूरे, मेक श्योर यू आर थिंकिंग इट थ्रू, और तभी आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं।
2: सिंह यानी लियो, नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए आज दिन अच्छा है, और आज मैरिड लाइफ में खुशहाली होगी। फाइनेंशियली भी दिन आज आपका बढ़िया रहेगा, एंड सो विल बी योर हेल्थ।
3: एंड उसके बाद कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि आप जहां पर नौकरी करते हैं वहां पर आज आपकी इज्जत बहुत होगी। यू विल सी द पीपल रिस्पेक्ट यू, पीपल अप्रोच यू, पीपल अप्रिशिएट यू, और ये चीज आपको बहुत अच्छी लगेगी। और दूसरी ओर ये भी कहा गया है कि आज यू नो पैसों के मामले में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो समस्याएं थी जो आप फेस कर रहे थे, इस मामले में आपके हाथ फायदा लगेगा, एंड फाइनली यू माइट सी योरसेल्फ कमिंग आउट ऑफ इट।
2: तुला यानी लिब्रा, अगर अपने कोलीग्स के साथ मिलकर कोई काम आप करते हैं, इसमें अच्छा खासा सक्सेस आपको मिलेगा। बिजनेस है तो लेन देन करते समय थोड़ा सावधान रहें, अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल आज आपके लिए बहुत जरूरी होगा।
3: और उसके बाद अगर आज देखा जाए तो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपके लिए आज बताया जा रहा है कि आज का जो ये दिन है, खास तौर पर आप जो भी काम कर रहे हैं सफलता के साथ जरूर कर पाएंगे। सो इट विल मेक यू फील वेरी हैप्पी, बट डोंट सी इट एज एन ओवर कॉन्फिडेंट थिंग फॉर यू, क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि जो भी कर रहा हूँ भाई सक्सेसफुल हो रहा है, आई एम जस्ट यू नो द किंग ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग अगर आप में आ रही है, तो थोड़ा खुद को हम्बल करने की कोशिश करें, बिकॉज इन दैट वे आप कहीं ना कहीं गलती करोगे, और कोई ना कोई गलती आपको काफी महंगी पड़ सकती है। आज आपके लिए ये भी बताया गया है कि आज आंखों में किसी तरह की तकलीफ आप एक्सपीरियंस करेंगे, सो ट्राई एंड बी केयरफुल अराउंड योर आईज।
2: धनु यानी सेजिटेरियस, आज हो सकता है आपके मन में ऐसा विचार आए कि इट्स टाइम नाउ कि अपनी जो नौकरी है इसे आप बदलें, कुछ चेंज किए आपको जरूरत है। बिजनेस डील्स अच्छे जाएंगे, और अपने पार्टनर से किसी बात को लेकर आज बहस ना ही करें तो अच्छा होगा।
3: और उसके बाद अगर देखा जाए तो धनु यानी सेजिटेरियस के बाद आज हाँ मकर यानी कैप्रिकॉर्न, काम में सफलता और अच्छा खासा प्रमोशन आपको आज मिल सकता है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। पैसों के मामले में भी आज आपको काफी फायदा होगा, बट यू हैव टू बी केयरफुल, अलर्ट, सतर्क रहना है आज आपको।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, ऑफिस में आज कोई रुका हुआ काम किस्मत के भरोसे पूरा हो जाएगा। क्या बात है भाई, बिजनेस से आपको पूरा फायदा होगा, और रुका हुआ पैसा भी आज आपको वापस मिल सकता है।
3: और उसके बाद अगर देखा जाए तो मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है कि ऑफिस में आपके सुझाव को वेलकम किया जाएगा, एंड इट विल मेक यू फील सो स्पेशल। उसके अलावा जीवन साथी जो है ये आपके भावनाओं की कद्र करेंगे, अगेन will make you feel really very special. लेकिन ये बात आप याद रखें कि दूसरों के जो तौर तरीके होते हैं towards you, the way they treat you, it shouldn't get on your head कि हाँ मैं तो यही deserve करता हूँ या ऐसा ही treatment deserve करता हूँ, because when expectations बढ़ेंगी आज आपकी, and if they are not being met by anyone, तो वो एक इमोशनल प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी कर सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड, आज ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है। दिस वर योर राशि वाइब्स फॉर टुडे। उम्मीद करते हैं दिन सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे।
2: 19 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर। एज ऑफ यस्टरडे मोर देन 1000 एंट्रीज जो है ये ऑलरेडी आ चुकी है
3: फॉर बोर्डिंग कॉल।
2: यस, मोर देन 1000 एंट्रीज, तो जस्ट इमेजिन आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है विन 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतू विद सोलोमन एयरलाइंस और $1000 स्पेंडिंग मनी। याद रहे है सोलोमन एयरलाइंस, जो अब चार बार हफ्ते में नॉन स्टॉप ऑकलैंड टू वनुआतु फ्लाई करते हैं। फ्लाई सोलोमन्स डॉट कॉम विजिट आप कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन के अंतर्गत अगले घंटे आज का पहला मौका जो है ये आपको मिल सकता है, जहां पर जैसे ही बोर्डिंग कॉल जो है ये आपको सुनाई दे, यू विल हैव टू गो टू रोवा एंड एंटर कोड नाउ, जहां पर लिखा होगा ऑल यू गॉट टू डू इज वहां पर बोर्ड नाउ ये टाइप करें और हिट ऑन सबमिट, और ऐसा करके आप ड्रो में शामिल हो सकते हैं। सो मोर देन 1000 एंट्रीज ऑलरेडी, यू स्टिल हैव द अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास या आपने कम से कम, अगर ऐसा करते हैं आप ये बताइए कि कम से कम कितनी बार अभी तक आपने अपनी एंट्री जो है ये सबमिट की होगी।
3: ओके,
2: चाहे एक बार, दो बार, जीरो बार, टेन बार, व्हाटएवर इट मे बी, बी सी उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम, ये 5599 पर आप जब तक नेक्स्ट टू मिनट्स, हाँ सिर्फ दो ही मिनटों का वक्त आपके पास होगा, विद इन टू मिनट्स आप हमें बताएं कि कितनी बार हम बोर्डिंग कॉल में अपनी एंट्री जो है अभी तक आपने सबमिट की है। बीसी, आंसर और नाम 5599 पर आप हमारे पास भेजें, और अगर अभी तक नहीं किया है तो जब बीसी लिखकर भेजेंगे तो कंपटीशन पेज का लिंक भी मिल जाएगा ना।
3: राइट, तो जल्दी जल्दी हमारे पास अपने मैसेजेस आप सेंड करें, और ऑन द मॉर्निंग शो द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा मॉर्निंग मैडनेस का मजा उठाते रहे। अ वेरी गुड मॉर्निंग राजू जी, आपको जय शिव शंभू। विजय भाई एंड पूजा जी, हैव अ ब्लेस्ड डे, आपने कहा है। गुड मॉर्निंग टू ऑल, राज ड्राइविंग फॉर आरवी प्रकाश ट्रांसपोर्ट, एंजॉयिंग योर प्रोग्राम, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच। Have a wonderful day.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
7: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
6: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
7: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
8: Coffee? The usual?
9: How about the unusual?
10: Can't wait for coffee? Then don't! Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
11: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercentre, Cavendish Drive, Manukau.
12: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Beautiful German Grohe Basin Mixers 149, American Standard Toilet Suite 349, Luxury Clashish Wall Vanities 399. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
13: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल। 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलिशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट।
14: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
16: Bollywood's most wanted.
17: Kundi khadao, ya seedha andar aao.
18: Main laao apna A-game.
16: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
19: 25 मिनट हो रहे हैं अभी, 7:00 थोड़ी देर में न्यूज हेडलाइन हम आपके लिए लेकर आएंगे। बर्थडे और एनिवर्सरी ग्रीटिंग्स भी कुछ देर बाद है, तो मैसेजेस नहीं भेजे हैं आपने तो वक्त है आपके पास। 5599 पर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। शीना पापा टॉय टॉय से आपने कहा है कि अभी तक 2 times आपने एंटर किया है हम बोर्डिंग कॉल में। भाई कम आई डोंट नो कितनी बार हम लोगों ने अनाउंस कर दिया है। अंकुर ने 8 times, फरा अभी तक आपने एक भी
20: एंट्री बार
19: अभी तक एक भी एंट्री आपने नहीं भेजी है, बट आपको लिंक मिल गया होगा फरा। आप नेक्स्ट टाइम जब बोर्डिंग कॉल प्ले हो 8 बजे के बाद, तो आप एंटर कर सकती हैं। धीर इज लीडिंग एट द मोमेंट विद 24 entries.
20: दैट इज अमेजिंग।
19: जितने लोगों ने अभी तक बताया है, हाँ, जितने लोगों ने अभी तक बताया है, धीर हैज एंटर्ड 24 times.
20: यस, एंड मोर देन 1,000 entries जो है ये ऑलरेडी आ चुकी है।
19: लेट्स सी कौन किसने अभी तक सबसे ज्यादा,
20: बिकॉज़ ये जो बोर्डिंग कॉल प्रमोशन रोवा पर है ये सिर्फ हमारे लिसनर्स के लिए है, हर किसी के लिए नहीं। हूँ के नेक्स्ट टेस्ट रोवा, सो इट मींस जितनी भी एंट्रीज आई है ये आप सब ने ही मिलके की है। अभी आप सब में से सबसे ज्यादा एंट्री किसने की है ये हम पता करने की कोशिश आज जरूर कर रहे हैं, एंड वी विल डेफिनेटली फाइंड आउट इफ यू कैन लेट अस नो।
19: तो 5599 पर BC, उसके बाद कितनी बार आपने हम बोर्डिंग कॉल में एंटर किया है और अपना नाम लिखकर 5599 पर हमारे पास जल्दी से भेज दे। थोड़ी देर बाद सेलिब्रिटी अलार्म भी खेलेंगे आपके साथ।

0: You know, I'm trying my level best कि आज celebrity alarm में जो voice आपके लिए मैंने तैयार किया वो सुनाऊं।
1: हाँ, सुनाओ सुनाओ।
0: कुछ ना कुछ हो रहा है यार। I don't know if I'll be able to play it correctly or not. That's why थोड़ा delay भी हो गया because there's some issues going on. I think with my side of the PC. But anyways, I'm trying again कि मैं आपको ये आवाज़ सुनाऊं जो आज के हमारे celebrity हैं हमारे celebrity alarm में and here we go.
2: All that which lot of celebrities does to spread the wrong news. I just wanted to come live and tell you all straight because rather than telling each and every channel one by one the same questions again and again.
0: तो ये कौन है आपको बताना है?
1: अच्छा। तो BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमारे पास भेजिए। आज तो अभी मेरे को आइडिया नहीं है कि ये कौन हो सकते हैं।
0: आपको नहीं पता?
1: हाँ।
0: अच्छा, ये पॉपुलर है।
1: Yeah, इसीलिए तो सेलिब्रिटी अलार्म में है।
0: But there was a time शायद ये क्रेजी पॉपुलर हुआ करते थे।
1: अच्छा।
0: पर कौन है ये? देखते हैं कि क्या आप में से कोई इनकी आवाज पहचान पाता है या नहीं। तो एक बार फिर से सुना रही हूँ। सबसे पहले तो आप इनकी आवाज अच्छे से सुनिए। Okay? Here we go.
2: All that which lot of celebrities does to spread the wrong news. I just wanted to come live and tell you all straight because rather than telling each and every channel one by one the same questions again and again, I just want to clear the air again.
0: तो ये कौन हो सकते हैं? देखते हैं कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं या नहीं। अभी तक सिर्फ एक ही कोशिश की गई है और इन्होंने लिखा है कृष्णा अभिषेक। बट नो, इट्स नॉट कृष्णा अभिषेक। बट लेट्स सी इफ यू कैन फिगर आउट कि ये कौन है। और अपना आंसर सबसे पहले BF लिखे, फिर आंसर लिखे, फिर हमारे पास अपना नाम लिखकर अपना जवाब आप भेज सकते हैं 5599 पर।

0: visit flysolomons.com. Accurate traffic.
1: Get up and Gold Coast.
2: Staying final day today, but a little cooler, high of 14 degrees. Sitting bound on motorways, southern now 40 minutes, Manukau to the CBD. We're slow on and off from Papakura, some heavy patches from Manukau to the city. Northwestern, 34 minutes in from Massey, got slow patches on and off from there, heavy at Te Aritu and Point Chev to St. Luke's. Northern, 27 in from Constellation, a bit heavy there, slow to the bridge and slow at Silverdale.
1: Trade the winter chill for Gold Coast sunshine with great low fares at jetstar.com.
3: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
4: Farmers Red Dot sale is now on with 50% off Red Dot clothing, 60% off Red Dot sleepyhead chiropractic beds, 40% off Red Dot beauty and lingerie, and 40% off Red Dot men's underwear. Farmers Red Dot sale is now on. Conditions and exclusions apply.
5: डॉक्टर ने क्या बोला?
6: BP और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए.
5: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता.
7: That conversation is happening in more TV homes than you think. Hi, I'm Nitesh Hira from Assured One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
8: Book your free insurance review today. Call Assured One on 0800-77-HIRA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. North Endale Advisory Limited, trading as Assured One, is a licensed financial advice provider.
9: A safe night can change everything. That's why Contact donates the energy to power Women's Refuge. This winter, when you donate a safe night for someone seeking safety, we'll match it up to 5,000 nights. Donate now at safenight.nz.
1: 2 p.m. call out, we're on your way. Heading back to the office? We're on your way there too. Commute to site? Yep, you guessed it, we're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
10: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercentre, Cavendish Drive, Manukau.
11: The beat of Bollywood.
12: World's best, hamari good brands nahi hai.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
14: News headlines.
15: सुबह के मुख्य समाचारों में प्राइम मिनिस्टर और सोशल डेवलपमेंट मिनिस्टर लुइसा अब्स्टन ने कानूनी गलती के कारण हजारों पेंशनर्स को विंटर एनर्जी पेमेंट न मिलने पर माफी मांगी है, जिसके तहत मई से अगस्त के बीच लगभग 14,862 सुपर एनुएंट्स और वेटरन्स प्रभावित हुए थे। एजेंसी में पास हुए इस लॉ चेंज में ऑटोमेटिक पेमेंट लेने वाले पेंशनर्स को रिकॉन्फर्मेशन प्रोसेस से अलग नहीं रखा गया था, जिसे लेबर ने रुकावट बताया, जबकि अब्स्टन ने इसे पॉलिसी ओमिशन माना है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट ने अब सभी 4,000 से 6,000 प्रभावित लोगों की रुकी हुई पेमेंट्स को रिज्यूम करके बैक पे कर दिया है, जबकि अब्स्टन ने इस पूरे मामले को अनएक्सेप्टेबल बताया है। इसके अलावा अन्य खबरों में, देश के अलग अलग अस्पतालों में अधिकारियों ने फ्लू के चलते कई स्पेशल फ्लू वार्ड्स सेटअप किए हैं, ताकि लोगों का जल्द से जल्द इलाज किया जा सके। रेडियो न्यूजीलैंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ न्यूजीलैंड के बॉसेस जो हैं हर दिन मुलाकात कर रहे हैं, ताकि इस सिचुएशन को अच्छी तरह से मॉनिटर किया जा सके। ओएफसी चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स के अंतर्गत आज ऑकलैंड एफसी होस्ट रेवा का सामना करेगा। ओएफसी चैंपियंस लीग इस साल फिजी में खेला जा रहा है, और आज 3 बजे पहले सेमीफाइनल में दोनों टीमों का मुकाबला होगा। ये दोनों टीमें जो हैं, इन्होंने पूल स्टेजेस में मुश्किलों का सामना किया, जबकि ऑकलैंड एफसी ने लेट गोल्स के जरिए अपने कुछ मैचेस जीते, और रेवा की तो शुरुआत ही खराब रही, जब पहले मैच में उनकी हार गैलेक्सी एफसी के खिलाफ 4-1 से हुई। ऑकलैंड सिटी एफसी हेड कोच रूडी मोज का कहना है कि इस बार वो चाहेंगे कि वो समय से पहले अच्छा खेल दिखाकर रेवा से आगे निकल जाएं। इस मैच पर अपडेट्स आज हम पर आपके लिए हम लेकर आएंगे, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 7 बजे गैलेक्सी FC और सेंट्रल कोस्ट के बीच खेला जाएगा और साथ ही में ये मैचेस आप FIFA प्लस पर लाइव भी देख सकेंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
14: बर्थडे ग्रीटिंग्स।
16: इसका बर्थडे भाई?
17: मेरा भी बर्थडे है, चलो लाइन में आ जाओ।
16: हैप्पी बर्थडे टू यू।
18: आज 19th ऑफ अगस्त को वेरी हैप्पी बर्थडे आपको विश करते हैं, जहाँ के भी अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सबसे पहले आज हैप्पी 21st बर्थडे टू शिवाना प्रसाद ऑफ ब्लॉक हाउस बे, लॉट्स ऑफ लव। आपके पापा है संजेश, मम्मी है प्रनीता, भाई है शनील, भाभी है शैजल और साथ में दो बहनें हैं श्रिया एंड शेरोन। और आज आपके जन्मदिन के खास मौके पर आपको ढेर सारा प्यार एंड आशीर्वाद आपके आजा आजी और नाना नानी की ओर से, एंड साथ में जितने भी परिवार वाले हैं यहाँ न्यूजीलैंड में अब्रॉड, सभी की ओर से आज आप तक हम जरूर पहुंचा रहे हैं।
15: आज तितिरंगी में विंस सिंह अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। शेरल वाटसन है, आपके माता पिता हैं बैक इन फिजी, इन्होंने आपको याद किया है, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया है। बहन है आपकी संगीता सिंह और तमाम जितने भी परिवार वाले हैं सभी आज आपको प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं। वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
18: हैप्पी बर्थडे आज साहिल वर्मा आपको भी विश कर रहे हैं, इट्स योर स्पेशल डे टुडे, सो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपके सभी अपनों की ओर से, पेरेंट्स की ओर से, आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं और यू नो वेरी बिग एक्सटेंडेड फैमिली, सभी की ओर से आज आपके जन्मदिन के खास मौके पर लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स एंड विशेस ऑन योर स्पेशल डे। सो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी आपको भी अगर आज आप इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जहां कहीं भी, हमारी पूरी की पूरी हम टीम की ओर से।

0: is true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
1: अभी 17 मिनट रह गए हैं 8 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और आज तो सेलिब्रिटी अलार्म अगर देखें तो 1, 2, 3, 4 अटेम्प्ट्स ही किए गए हैं. इतना डिफिकल्ट है?
2: नहीं नहीं, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है. कुछ कंफ्यूजन शायद लोगों को हो सकता है, बट डिफिकल्ट आई डोंट थिंक सो. आई पर्सनली डोंट थिंक सो. बट अगर आप चाहें तो मैं एक बार फिर से सुना सकती हूँ.
1: अब चाहे क्या, अब सुनाना ही पड़ेगा.
2: सुनाना ही पड़ेगा, वो बात भी है.
1: और कुछ क्लू भी देना पड़ेगा.
2: अच्छा, क्लू देना पड़ेगा. आई ट्राई, बट आई डोंट नो इफ आई कैन प्रोवाइड एनी क्लू or not, but okay, पहले तो इनकी आवाज सुनाते हैं, अच्छे से सुनिएगा. ये है आज के हमारे
3: celebrity. Lot of celebrities does to spread the wrong news. I just wanted to come live and tell you all straight, because rather than telling each and every channel one by one the same questions again and again, I just want to clear the air again.
2: तो ये आज के हमारे सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी अलार्म, और इनकी आवाज हमने आपको सुनाई जो आपको पहचाननी है. नाउ पहली चीज तो बता दें कि किसी ने हमारे पास मैसेज किया है एज मिका सिंह. मिका सिंह इज नॉट द राइट आंसर, वो नहीं है ये. और गुंजन, गुड मॉर्निंग मैसेज आपने भेजा है. साथ में सोनल, आपका भी मैसेज हमें मिला है, थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग विजयन पूजा. सुकर खुश की ओर से भी मैसेज आया है, सो थैंक यू आपके भी मैसेजेस के लिए. पर आज के हमारे सेलिब्रिटी कौन है ये एक्टिंग फील्ड से है तो नहीं, पर काफ़ी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में ये दिखे हैं एक्टिंग करते हुए, और साथ में इन्होंने रियलिटी टीवी भी किया है. बट दैट इज़ नॉट द इंडस्ट्री ही ओरिजिनली बिलोंग्स फ्रॉम. ये इन सारे मामलों में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं आए हैं बिकॉज ऑफ एनी अदर इंडस्ट्री जिसका हिस्सा ये थे, जिसमें इन्होंने काफी नाम भी कमाया और कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई इनको लेकर.
1: वाओ.
2: और जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री से ये है, इट्स लाइक अ बिग डील व्हेन इट कम्स टू इंडियंस.
1: अच्छा,
2: वो पर्टिकुलर फील्ड, व्हाटएवर यू सेड, लोग काफी फॉलो करते हैं, स्पेशली इंडियंस.
1: स्पोर्ट्स?
2: या I can चलो मैं बोल देती हूँ.
1: तो चलो, ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से है या स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी से है,
2: पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी हिस्सा ये बने बाद में चलकर.
1: तो अब थोड़ा आसान हो गया होगा. जब तक आप अगला गाना सुन रहे हैं, तब तक का ही टाइम है आपके पास अपना आंसर भेजने के लिए और अनुमान लगाने के लिए कि आज के हमारे सेलिब्रिटी कौन है. BF, अपना आंसर, अपना नाम, ये तीनों चीजें जो है ये लिखकर 5599 पर हमारे पास आप भेजें.
2: भेज सकते हैं.
1: हाँ,
2: और माधवन लिखा है, निलेश आपने अनफॉर्चुनेटली दैट्स रॉन्ग, शोएब ने गुड मॉर्निंग कहा है, थैंक यू. किसी ने अपना आंसर भेजा है, यूजी चहल ये लिखा है किसी ने, तो ये भी गलत है.
1: ओके, सो नेक्स्ट गाने तक का टाइम, जब तक ये गाना खत्म होता है तब तक आप सोच सकते हैं स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इनका नाम है. तो कौन है आज के हमारे सेलिब्रिटी?
2: इन्होंने एक रियलिटी शो में पार्ट लिया था एंड ही वाज द रनर अप देयर.
1: अच्छा,
2: कई सालों पहले.

0: NZ. Offer ends August 31st.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Don't mind, lekin aap dono ki jodi badi cute hai.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
3: तो चलिए अब बारी है कि आज का थ्रोबैक जो है ये हम आपको सुनाएं, बट बिफोर वी डू दैट वी हैव टू रिवील द आंसर फॉर आवर सेलिब्रिटी अलार्म।
4: हां हां जेका, ये जवाब आपने हमारे पास भेजे हैं। किसी ने कहा है श्रीकांत, शोएब ने बताया है, विराट कोहली का नाम आया है, साथ में डिस्प्यूट विद गौतम गंभीर, सोनल गुप्ता ने कहा, एस श्रीनाथ ये आंसर आया है, प्रिया विराट कोहली कह रही हैं, स्वाति कह रही हैं सलील अंकोला, और अमित गोस्वामी, रोहित शर्मा, गुरविंदर सिंह, मनु रिवासी, इन्होंने कहा है श्री संत, फॉर्मर बॉलर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, और साथ में रत्ना ने भी श्री संत जवाब जो है ये हमारे पास भेजा है।
3: एंड उससे पहले भी हमारे पास कुछ आंसर्स जो है ये आए थे श्री संत, मेरे ख्याल से सोनल गुप्ता इन्होंने ये जवाब दिया था, और देयर वाज समवन एल्स, हाँ गुंजन, इन्होंने भी यही जवाब दिया था। सो आज के हमारे सेलिब्रिटी, वेल सम ऑफ यू गॉट इट राइट विच इज श्री संत, ये है आज के हमारे सेलिब्रिटी इन सेलिब्रिटी अलार्म। और कमाल की बात ये है कि ही इज़ द गाय जिन्होंने यू नो क्रिकेट की दुनिया में काफ़ी नाम कमाया, फिर कुछ कंट्रोवर्सीज हुई और उसके बाद चलकर आई थिंक इनके गुस्से को लेकर काफ़ी सवाल ये उठाए जाते हैं ना, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन बिग बॉस, डू यू नो दैट?
4: नहीं नहीं मुझे नहीं पता।
3: आपको नहीं पता, एक सीज़न में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था बिग बॉस में, और उस सीज़न के मतलब उस सीज़न में ये फिनाले तक पहुँचे थे पर जीते नहीं थे, एंड आई कांट रिमेम्बर विच सीज़न, आई थिंक बिग बॉस सीज़न 12 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, यस, एंड उस सीज़न में द विनर वॉज दीपिका, नॉट हिम, फिनाले तक पहुंच के। तो श्री संत जो कि आज के हमारे सेलिब्रिटी रहे, इन्होंने क्रिकेट की दुनिया में तो नाम कमाया ही, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने अपनी फिल्मी करियर, एक्टिंग करियर पर भी काम किया, जहां पर इन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया, कुछ मलयालम, कन्नड़ा और तमिल फिल्मों में भी ये दिखे हैं, लेकिन बहुत सारे टेलीविजन प्रोग्राम्स जो है ये इसका हिस्सा भी रहे हैं। सो आज के सेलिब्रिटी कुछ लोगों ने जैसे कि हमने कहा सही पहचाना, अब कल देखते हैं एक नई आवाज़ आपके लिए सेलिब्रिटी अलार्म में हम ज़रूर लेकर आएंगे, और आप में से कितने लोग उस आवाज़ को पहचान पाते हैं ये डेफिनेटली डिपेंड करता है। फिलहाल 6 मिनट बाकी हमारे स्टूडियोज में, या 5 मिनट बाकी, माफ कीजिएगा, हमारे स्टूडियोज में 8 बजने में, अगले घंटे आपके लिए लेकर आएंगे रश आवर।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में याद रहे आज का वेदर मेनली फाइन रहने वाला है विद ब्यूटीफुल सनशाइन जो आप एक्सपीरियंस करेंगे. राइट नाउ टेम्परेचर 8.7 डिग्रीज है, हाई ऑफ 13 एक्सपेक्टेड. बाद में ओवरनाइट 3 डिग्रीज आज टेम्परेचर रहेगा एंड सनसेट 5:51 PM पर होगा.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन बिग और स्मॉल. ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको. इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे luxury living.
0: The Rush Hour brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: आज ट्रेंड पेट्रोल में सबसे पहले देखते हैं इन द लास्ट 24 आवर्स इंडिया में क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है. और सरप्राइजिंगली न्यू लाई चाइनीज मूवी बॉक्स ऑफिस पिछले 9 घंटे में. न्यू लाई
1: मूवी का नाम है,
3: शायद होगा किसी चाइनीज फिल्म का नाम.
1: ओके.
3: इसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों ने
1: बातें की हैं,
3: रिसर्च किया या सर्च किया है. और उसके बाद अमित मालविया बीजेपी, ओवर 20,000 पीपल.
1: वाओ.
3: सरप्राइजिंगली विद इन द नेक्स्ट इन द लास्ट 23 आवर्स भोजपुरी को भी लोगों ने बहुत ज्यादा इंडिया में
1: गूगल किया.
3: हाँ, गूगल किया
1: ये शब्द भोजपुरी.
3: ओवर 50,000 पीपल लुक्ड फॉर रोहन नायडू ऑन इंटरनेट. अब रोहन नायडू कौन है ये देखकर मेरे मन में भी सवाल उठ रहे हैं कि
1: ये कौन है, मतलब ये नाम पढ़कर
3: कि ये कौन हो सकते हैं. सो रोहन नायडू हैदराबाद बोर्न इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट एंड नाउ The astronomer behind a black hole star study.
1: Okay.
3: ये है रोहन नायडू. 50,000 से ज्यादा लोगों ने पसिंदु सूर्य बंदारा इनको भी गूगल किया.
1: Okay.
3: ये भी पता नहीं कौन है. और एक फुटबॉल मैच है मेरे ख्याल से अल नसर और दिरिया के बीच, पिछले 2 घंटों में बहुत सारे लोगों ने इन इंडिया इसको गूगल किया.
1: Okay. So there you go. There are a lot of people who are trying to find out about different things. आज on the breakfast show यहाँ न्यूजीलैंड में जो I can say ट्रेंड कर रहा है is the Auckland Gospel Choir. ऑकलैंड गॉस्पल क्वायर जो है इन्होंने इनफेक्ट पार्ट लिया था वर्ल्ड क्वायर गेम्स 2026 में.
3: एंड
1: दे हैव वॉन गोल्ड रिप्रेजेंटिंग न्यूजीलैंड. सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑकलैंड गॉस्पल क्वायर. और ऑफ कोर्स इट्स अ बिग डील क्योंकि 14th वर्ल्ड क्वायर गेम्स जो स्वीडन में हुआ था इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और न्यूजीलैंड के लिए गोल्ड जीता.
3: यू नो द इंटरेस्टिंग थिंग मैं देख रहा था कि इंडिया में अभी पिछले मैंने कहा 1-2 घंटों में सबसे ज्यादा दिरिया वर्सेस अल नसर जो है लोगों ने गूगल किया. और यहाँ न्यूजीलैंड में अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 न्यूजीलैंड में ये जो गूगल सर्च है इज सिटिंग ऑन नंबर 12 राइट नाउ. दिरिया वर्सेस अल नसर जो इंडिया में सबसे ज्यादा गूगल किया गया.

0: यहाँ पे नंबर 12
1: पर है।
0: यहाँ पे कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा गूगल हुई?
1: जो सबसे ज्यादा गूगल हुई है अपेरेंटली इन द लास्ट 15 आवर्स ओवर 2000 पीपल इन्होंने काउंसिल I don't know, council का क्या है ये गूगल
0: किया।
1: प्लस मेक्सिको अंडर वाटर केव रेस्क्यू और वेलिंगटन टू पिक्टन फेरी कैंसलेशंस।
0: वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये है रश आवाम और इस घंटे आपके लिए आज का व्हाट्स योर टेक टॉपिक भी हम लेकर आएंगे, समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग जिस पर हम बातें करने वाले हैं। एंड वीड लव टू हियर फ्रॉम यू योर वॉइस योर व्यूज। तो याद रहे इसके लिए आप हमारे पास अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं ऑन 5599 बट वीड लव टू टॉक टू यू जिसके लिए आप हमारे पास यू नो कॉल कर सकेंगे 0800 004866 पर। सो बी रेडी फॉर दैट। पर फिलहाल इस घंटे की शुरुआत आप सभी के साथ ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM पर या रोवा ऐप पर अगर आप हमें सुन रहे हैं।

भाई लाजी माजी बच्चों को यहाँ पर

0: made better.
1: Two fryanda, char toast, butter, jam, or a special chai.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Attention everyone. हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
3: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
2: क्या आपकी

0: सैपलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar Golden Diamonds, Botany Town Centre.
3: Auckland's growing, with more people on our roads every day. So we need to make better use of the spaces around your hood. AT is proposing to connect bus and transit lanes along Mount Eden Road, Sandringham and Remuera Roads to ease congestion and create smoother journeys for all road users. And we want to hear from you. To have your say, search Keeping Central Auckland Moving on the AT website. AT, your city moving.
4: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
5: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
6: अब हमारा क्या होगा?
7: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
5: तो क्या करें?
8: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
9: You filled the pinata before I sealed it, right?
10: No, you did.
9: I thought you did.
11: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
12: Kia ora. If you're enrolled to vote, you'll soon receive an enrolment pack in the mail. Keep an eye out for yours.
13: Your enrolment pack should arrive by 22 August. Open yours and check your details to make sure they're correct. Learn more at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
14: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
15: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
17: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Harper Toy and Hamilton.
18: What's your take?
19: 17 मिनट हो रहे हैं, 8 बजकर व्हाट्स योर टेक का टॉपिक बताने से पहले इतना आपको याद दिला दे कि ये वो घंटा है जब हम बोर्डिंग कॉल किसी भी वक्त हो सकता है, और जैसे ही बोर्डिंग कॉल आपको सुनाई दे रोवर पर आपको जाना है और बोर्ड नाव जो है ये एंटर करना है। सो मेक श्योर यू कीप लिसनिंग जैसे ही ये आपको सुनाई दे। आज का जो हमारा व्हाट्स योर टेक है इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है ये हम आपसे पूछने जा रहे हैं, क्योंकि ये मैंने कहीं पर पढ़ा, जिस तरह से ये क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था
5: वैसे ही आप पूछोगे,
19: वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ। डज एनीवन स्टिल कैरी अ हैंडकरचीफ?
5: ओह आई डोंट, पर मेरे पास है लाइक बट इतना भी नहीं है, लाइक 3-4 होंगे जो कभी जरूरत पड़ती है फॉर सम अदर पर्पसेस लाइक
19: स्नीजिंग एंड
5: नहीं, जब मेरी बेटी हमारी बेटी बीमार पड़ती है
19: अच्छा
5: तो उसको जब सर्दी जुकाम हो जाए ना तो वो कपूर और साथ में अजवाइन, उसका वो उसको थोड़ा सा ऐसे अजवाइन को थोड़ा सा रोस्ट कर कपूर के छोटे छोटे टुकड़े कर उसमें बांध कर उसके गले में बांधती हूँ ताकि उसके महक से उसके नाक वगैरह जो है ये खुल जाए
19: okay.
5: और उसको जुकाम के टाइम पे थोड़ा रिलीफ मिले। सो आई यूज इट फॉर दैट ओनली।
19: तो अब ये सवाल जब उन्होंने पूछा तो मन में ये भी सवाल है कि ऐसे और कौन कौन सी चीजें होती थी पहले जब शायद हम छोटे
5: इस्तेमाल करते थे, अब नहीं करते,
19: अब नहीं, वो नजर ही नहीं आता ज्यादातर लोगों के पास। तो 800-00 हम और 800-004-866 ये नंबर है हमारा जिस पर आप कॉल करें और बताएं डू यू स्टिल कैरी अ हैंडकरचीफ, हैंकरचीफ या और ऐसी और कौन कौन सी चीजें थी जो पहले बहुत इस्तेमाल होती थी लेकिन
5: होती है
19: अब उतनी
5: देर पहले तो इट वाज लाइक जब आप स्कूल का यूनिफॉर्म देख लो या फिर कुछ भी आप फॉर्मल भी अगर पहनते लाइक एवरीवन जिनके पॉकेट्स होते हैं उसमें तो रखते हैं बट आई रिमेम्बर व्हेन वी यूज्ड टू गो टू स्कूल तो हमारा यहाँ पे फ्रंट में पॉकेट हुआ करता था अराउंड द चेस्ट तो उसके ऊपर ना मेरी मम्मी बड़ी खूबसूरत तरीके से उसको फोल्ड कर कर ऐसे लगाती थी इन दैट पॉकेट जहाँ पर स्कूल का जो मोनोग्राम बोलते हैं ना बैज बोलते हैं वो डिस्प्ले होता है तो उसके अंदर वो हैंकरचीफ डालती थी एंड इट यूज्ड टू स्टे देयर बड़ा खूबसूरत तरीके से बट बाय द टाइम आफ्टरनून होता था तो पता नहीं कहाँ गुम हो जाता था पहले तरह तरह के हैंकरचीफ्स आते भी थे ना लाइक ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिज़ाइंस एंड कलर्स एंड डिफरेंट मटीरियल्स के अभी तो आई डोंट नो किसी ने मैसेज किया है इन्होंने कहा है आई ओनली यूज हैंकी व्हेन इन फिजी सिंगापुर और जापान काइंड ऑफ कंट्री टू वाइप स्वेट शनील ने कहा है हाँ समझ में आता है
19: तो अब लाइन सा आपके लिए हम खोल चुके हैं और आपको कॉल करना है या फिर आप चाहें तो 5599 पर हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं बता सकते हैं कि क्या आप ये करते हैं किसी ने कहा है आई कीप इट फॉर माई सेल्फ एंड टू ऑफर समवन इन नीड
5: अच्छा
19: हाँ और किसी ने सवाल उठाया है कि व्हाई इज इट गेटिंग एक्सटिंक्ट
5: ना
19: बहुत
5: True,
19: कम देखने
5: बहुत
19: को मिलता
5: कम
19: है
5: लोग इस्तेमाल करते हैं
19: एंड आई डोंट नो यहाँ पर कहाँ पर बिकता है वो मुझे तो ये भी नहीं पता है कि न्यूजीलैंड में पर्टिकुलरली इन ऑकलैंड
5: मैंने देखा है टूडला शॉप से नोल जो है
19: हाँ,
5: वहाँ
19: अच्छा,
5: पे मिलता है हाँ, दिखा है मेरे को गुड मॉर्निंग शेरल कैसी हो
6: गुड मॉर्निंग आई एम गुड थैंक यू पूजा हाउ आर यू विजय भाई
19: गुड गुड गुड मैम आप कैसी हैं
6: अच्छा हैंकरचीफ कैमार्ट में मिलता है एंड इट्स आल्सो आई मीन आई नीडेड इट व्हेन वी वर गोइंग फॉर अ फ्यूनरल और एक जगह दान करने के लिए भी लेना था बट फाउंड इट इन कैमार्ट वेरी अफोर्डेबल कॉटन वन नो वन यूजेस इट वी डोंट यूज इट ईदर बट हां माय डॉटर आई मीन सम टाइम व्हेन शी इज नोजी देन आई पुट द स्मॉल वन व्हिच आई हैव लाइक मेबी 4-5 फ्रॉम फिजी That is there for her to put it in her pocket because the tissues and I mean tissues लेके जाती है जो छोटा पैकेट होता है but I just said put it in your pocket I mean you don't know when you did but maybe yeah we don't use it that much
19: don't use it
5: right
19: okay thank you
5: pleasant और बता भी दिया कि कहाँ मिलता है thank you so much आपके call के लिए Cheryl तो हैंकरचीफ इज वन ऑफ दोज थिंग्स जिसके साथ आज हमने कॉन्वर्सेशन शुरू किया कि डू यू गाइस स्टिल यूज इट और हु यूजेस इट बट देयर कुड बी अदर थिंग्स अगर आपको याद आए कि ऐसी कोई और चीज़ जो वी यूज्ड टू यूज क्वाइट अ लॉट जब हम बड़े हो रहे थे लेकिन अभी शायद उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता या एग्जिस्टेंस में उतना नहीं है अगर आपको पता हो तो आप हमारे पास ज़रूर भेज सकते हैं 5599 पर हमारे पास आप टेक्स्ट अपना जो है ये सेंड कर सकते हैं या फिर आप 0800-004-866 पर हमारे पास कॉल कर सकते हैं आई थिंक देयर इज वन थिंग दैट आई रिमेंबर जब आई वाज ग्रोइंग अप स्कूल में लाइक प्राइमरी स्कूल में मोस्टली पेंसिल से लिखावट करते थे हम पेंसिल एंड रबर ये तो अभी भी मिलता है इट्स नॉट दैट की आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक्सटिंक्ट हो गया बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल आई थिंक या 5 के बाद और समथिंग पेन से राइटिंग जो ये कराते थे पहले
19: ओके
5: तो उस टाइम पे ना अगर पेन से गलती हो जाए तो उसे मिटाने के लिए जो ट्विंक का इस्तेमाल होता था आई डोंट सी किड्स केयरिंग इट दीज डेज स्कूल्स में स्पेशली
19: ट्विंक
5: मैंने तो नहीं देखा है ट्विंक ही बोलते थे ना उसको
19: नहीं हम लोग तो ट्विंक बोलते थे आप
5: क्या बोलते थे
19: ट्विंक
5: तो मैंने क्या बोला
19: ट्विंकी
5: मैंने ट्विंकी कब बोला
19: अभी बोला
5: मैंने ट्विंकी बोला मैंने ट्विंक बोला
19: अच्छा मैं शायद आप बोल रही थी कि ट्विंक ही बोला
5: हाँ,
19: लेकिन इतनी जल्दी
5: सुनाई दिया
19: हाँ, इतनी जल्दी बोला कि
5: सो आई हैवंट सीन किड्स कैरी दैट और यूज दैट क्वाइट अ लॉट इन स्कूल्स दीस डेज बट आई हैव सीन इट इन डिफरेंट प्लेसेस अवेलेबल बट मुझे नहीं पता बच्चे इसका कितना इस्तेमाल करते हैं होता भी है या नहीं गुड मॉर्निंग सपना
18: गुड मॉर्निंग पूजा जी गुड मॉर्निंग विजय भाई
19: गुड मॉर्निंग कैसी हैं आप
18: मैं ठीक हूँ आप लोग कैसे रोशनी बात करेगी
5: अच्छा रोशनी बात करेगी बताइए रोशनी
18: गुड मॉर्निंग अंकल
5: गुड मॉर्निंग तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज है जो अब धीरे धीरे गायब हो रही है
18: नहीं एक्चुअली मुझे बोलना था कि आपने बोला ना वो जो ट्विंक था
5: हाँ
18: वो उसकी जगह पे लोग व्हाइट आउट यूज करते हैं व्हाइटनर जैसा
5: क्या यूज करते हैं
18: तो वो व्हाइटनर व्हाइटिंग होती है
5: अच्छा
19: व्हाइटनर
5: हाँ,
19: ट्विंकी
5: सेम पर्पस सर्व करता है
18: तो वो इवॉल्व हो गया ट्विंक से
5: अच्छा हमारे टाइम पे ट्विंक
18: पहले वो रबर वो इरेजर आता था पेन इरेज करने का पेन से लिखा हुआ
5: अच्छा
20: जो दो साइड से, हाँ हमारे टाइम पे वो आता था।
19: आप किस टाइम, मेरे मन में सवाल ये उठ रहा है कि आप किस टाइम की है कि उस टाइम पर इरेजर आता था।
5: आप रोशनी के जमाने के तो नहीं है? आपके कॉल के लिए एंड सपना एंड मेघा है वो वंडरफुल डे स्कूल
19: रोशनी
5: रोशनी एंड मेघा सॉरी बाय। कितनी बोलती हूँ मैं ना, कितनी ज्यादा है। देखो नाम भी गड़बड़ कर दिया।
19: परम महाराज जी ने कहा है जय सिया राम पूजा और पीछे आई कांट लीव or go out of my house without it. It's like a habit. Last 50 years.
5: Kya handkerchief?
19: Haan.
5: Oh, wow.
19: 50 saalon se lekar chalte the. Aaj bhi lekar chal rahe hain.
5: Acha Barkha ne bada kamal ka ek cheez kaha hai.
19: Ek cheez kahi hai na.
5: Ya ek cheez kahi. Do chutiya jo hoti thi na pehle, wo do chutiya aap bandh lo aur niche ribbon bandh lo ya fir usko niche se utha ke aise upar roll kar kar bandh lo, wo aajkal koi nahi karta. दो चुटिया बांधते हैं शायद, पर उसे थोड़ा
19: चुटिया बोलते हैं या चोटियां बोलते हैं? मुझे तो चोटिया पता है,
5: मैं तो चुटिया ही बोलती हूं।
19: काली तेरी चोटी है
5: हाँ, तो आपका थोड़ा रिफाइंड वाला
19: है। मेरा रिफाइंड वाला है, आपका रिफाइंड वाला है।
5: लोग समझ गए कि हम क्या बोल रहे हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट। बट बरखा इट्स सो ट्रू, बट आपको पता है मेरी कहानी, मैंने कभी भी ये नहीं बांधा ये दो चोटियां हो या चुटिया हो, क्योंकि बचपन में मेरे फादर मेरे बालों को पता नहीं क्यों ऐसे बॉयकट दिया करते थे। आई वॉज वेरी लाइक इररिस्पॉन्सिबल व्हेन इट केम टू हेयर, आई गेस हमेशा बाल खुले रहते थे।
19: आई वाज
5: व्हेन इट कम्स टू हेयर आई सेड,
19: तो मैंने बोला आई वाज
5: आई वाज।
19: निलेश दयाल ने कहा है फ्लैट टॉप कॉम वी यूज्ड टू कैरी इन आवर हाई स्कूल टाइम, स्टाइल मारने के लिए स्कूल में।
5: लड़कों के लिए ज्यादा होता था ना,
19: हो सकता है।
5: या
19: क्रिश रोन इन्होंने कहा है करेक्शन पेन,
5: हाँ वही ट्विंक ना।
19: हाँ तो ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं 5599 पर आप हमें टेक्स्ट करके बता सकते हैं जो। अच्छा किसी ने कृष्ण ने ये भी कहा फ्लैट टॉप कंगी।
5: वही वही।
19: तो आप हमें बताएं ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जो पहले के समय टाइम पर हम अपने साथ कैरी करते थे लेकिन आजकल नहीं होता है। आजकल कुछ लोगों ने अभी वॉलेट भी कैरी करना बंद कर दिया ना, जैसे सब कुछ इतना डिजिटल हो गया,
5: वो मोबाइल वाला जो होता है लोग उसमें अपने कार्ड वगैरह रख लेते हैं, कुछ लोग तो पैसे भी इसमें रख लेते हैं।
19: प्लस जो जो मेन क्वेश्चन है कि क्या आप अभी भी रुमाल कैरी करते हैं या नहीं, 5599 हमारा नंबर जिस पर आप मैसेज कर सकते हैं।
5: एंड मेक श्योर कीप हियरिंग फॉर आवर स्पेशल बोर्डिंग कॉल। हम बोर्डिंग कॉल जैसे ही हो वैसे आप बोर्ड करने के लिए रेडी हो जाइए। व्हाट यू नीड टू डू इज विजिट आवर रोवा ऐप, जहां पर आपको मिलेगा एक टैब व्हिच सेज हम बोर्डिंग कॉल, जहां पर लिखा होगा एंटर कोड नाउ। और जैसे ही वहां पर एंटर कोड नाउ आप देखें तो आपको वहां पर टाइप इन करना होगा बोर्ड नाउ BOARD स्पेस NOW और फिर उसे सबमिट करना होगा। वंस यू डू दैट यू विल बी पार्ट ऑफ दिस वेरी अमेजिंग ड्रॉ, जहां पर आप जीत सकते हैं 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी। थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआतु एंड विजिट flysolomons.com। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए इनके सर्विसेज के बारे में प्लस टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई, जिसके लिए आपको hum.rova.nz जो है ये विजिट करना होगा।
19: अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे ऐसे कितने लोग हैं जो फिलहाल रोवा पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। जैसे हमने पहले बताया ओवर 1000 एंट्रीज ऑलरेडी आ चुकी हैं हम बोर्डिंग कॉल के लिए। सो इफ यू वांट योर चांस यू नो उतना स्ट्रांग रहे, द मोर यू मोर टाइम्स यू एंटर द बेटर योर चांसेस आर। ऑल द वे फ्रॉम रोटोरुआ मोरेना सुनील मोरार पटेल जी वहां से हमारा साथ दे रहे हैं ऑन Rova, thank you so much. Good morning and welcome.
21: Bollywood's most wanted.
22: Gundi ghad dao. Ya seedha andar aao.
23: Main laun apna A game.
21: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: Accurate traffic.
3: Curtain Studios birthday sale. Up to 50% off selected ready-mades.
4: Staying a fine one all day with a high of 14 degrees. Into the city on the northwestern motorway. 40 minutes from Massey. We're heavy on and off from there to the CBD. Easing around Grey Lynn. Upper Harbour Motorway. Quite heavy northbound. We had a crash before the Albany Highway off-ramp. It has been cleared, but still quite congested. Southern 46 Manukau to the city. Slow from Takanini. Heavy from Otahu. Northern 30 from Constellation. Heavy patches from there.
3: Huge savings store-wide. Visit Curtain Studio today.
5: Discover the magic at Go Bananas Chai Ke, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
6: Go Bananas Chai Ke is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
5: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Chai Ke Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
6: Available at selected branches. T's and C's apply.
7: Please use your imagination for the following ad.
8: If I won Powerball, I'd plan to do something crazy like... And once I'd calmed down, I'd actually do something like...
7: Imagine winning $15 million this Wednesday. Play in store or online.
9: डॉक्टर ने क्या बोला?
10: BP और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए.
9: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता.
11: That conversation is happening in more TV homes than you think. Hi, I'm Nitesh Hira from Assured One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
12: Book your free insurance review today. Call Assured One on 0800-77-HIRA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. North and Bill Advisory Limited, trading as Assured One, is a licensed financial advice provider.
13: Rebels 30th birthday continues with $30 deals on now. That's selected kids' clothing, hydro flasks and Nike equipment for only $30. Plus save $30 off selected casual running and kids' shoes. $30 deals and so much more on now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
14: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner, sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities, all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
15: तो बस 20 मिनट बाकी है इस समय हमारे स्टूडियोज में 9 बजने में, और ठीक ऊपर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट रहेगा, जिसके बाद आपके लिए लेकर आने वाले हैं आज का हमारा व्हाट्स गोइंग ऑन. बट उससे पहले कुछ मैसेजेस आए हैं. राम राम विजय एंड पूजा फ्रॉम जैनेश लाल जेनू, इन्होंने कहा है नाइस प्रोग्राम.
16: थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय. माई हस्बैंड ऑलवेज हैज इट. ऑल्सो बैक व्हेन वी वर किड्स इन स्कूल, कोकोनट ऑयल इन हेयर एंड टू प्लेट्स डन.
15: हां, प्लेट्स जो चोटियां.
16: अच्छा, ओके, टू प्लीट्स. अच्छा, प्लेट्स क्या बोलते हैं?
15: जो भी है.
16: इट्स जस्ट फ्यू प्लेसेस एंड वन बिग वाइंडर शार्पर ऑन टीचर्स डेस्क.
15: शार्पनर.
16: अच्छा,
15: जो इसे वाइंड करते
16: हैं. ओनली वन पर्सन वाज इन चार्ज
15: टू यूज दैट. या राम राम विजय भाई एंड पूजा जी यूज्ड टू कैरी हैंडकरचीफ एवरीडे इन फिजी, नॉट हियर, हैवंट यूज्ड शू पॉलिश फॉर एजेस. That's a good one. Also, A Pacific school bags. Back in days, it was everyone's first choice in primary school. इन्होंने कहा है. Thank you so much आप सभी के messages के लिए. Thank you so much for contributing for our segment today. अपना अपना जो भी आपने message भेजा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जो experiences आपने share की हैं, thank you so much for that. आज का वर्ल्ड सिटी टॉपिक आपके लिए हम लेकर आ रहे थे.
16: Boarding call play हो चुका है. अगर आपके पास link नहीं है, BC लिखकर 5599 पर भेज दो. भाई हम बता भी रहे हैं आपको, ताकि आपके लिए आसान हो जाए. BC, B और C के बीच में कोई स्पेस मत देना. BC लिखकर 5599 पर भेजो. लिंक डायरेक्टली आपके फोन पर आ जाएगा. जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक, इट ओपन्स अप द पेज. वहां पर बोर्ड नाउ टाइप करो और सबमिट नाउ हिट कर दो. इतना सिंपल हमने आपके लिए कर दिया है. फॉर योर चांस टू विन टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु विद $1,000 स्पेंडिंग मनी.
17: लेट्स गो.
0: From the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku. Accurate traffic.
4: Fly Solomon Airlines.
5: High of 14, staying fine all day into the city. We're starting to ease southern, 44 minutes Manukau to town. Slow from Manurewa, heavy Otahu to the city. Southwestern, heavy northbound through Whitty, but fine the other way. Northwestern, 33 Massey to town. Slow from Te Gatatu, heavy from the causeway to St. Luke's. Upper Harbour Motorway, heavy northbound due to a crash earlier. Northern 28 and from Constellation, heavy patches from there.
4: Auckland to Vanuatu from $925 return. Selected dates, conditions apply. FlySolomons.com.
6: And paid Mrs. सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
7: हाँ. अच्छा,
6: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं.
7: मिसेस सिंह.
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
0: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
8: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more? To bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry! Visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
9: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercentre, Cavendish Drive, Manukau.
10: Skinny will do anything to keep prices low and customers happy. Switch to Skinny and get $30 credit on all four weekly plans, $27 and above. $30 credit available to new customers only. In September 4th, T's and C's apply.
11: Get the skinny!
12: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
12: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो चलिए थ्रोबैक की बारी आई है. समय की ओर देखिए, 12 मिनट बाकी है इस समय हमारे स्टूडियोज में, वैसे 9 बजने में. और आपके लिए जबकि हम लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही कमाल का अपडेट, तो इस पर कुछ डिटेल्स आपके साथ पहले शेयर करते हैं. सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ये सामने आया है, एंड दिस इज समथिंग दैट कैन हैपन इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वेरी सून. ऑजीज और कीवीज के लिए बहुत ही जल्द एक नया तरीका जो है ये शायद यू नो अवेलेबल हो, जिसके साथ आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पेमेंट्स कर सके एज अ शॉपर.
13: अभी भी तो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल.
1: हाँ, लाइक यू आर यूजिंग योर टैप कार्ड्स, योर स्वाइप कार्ड्स ना, कैश अगर नहीं इस्तेमाल करना. हाँ, फोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बट दिस इज इवन वन स्टेप अहेड ऑफ दैट.
13: क्या ऐसे मुंह दिखाकर पेमेंट कर देंगे?
1: जी नहीं, दैट इज पॉसिबल. सो अपेरेंटली वेरी फोन जो है इन्होंने लॉन्च किया है एक न्यू विक्टा पेमेंट टर्मिनल इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जहाँ पर डिवाइसेस जो है ये डिजाइन किए गए हैं इवेंचुअली सपोर्ट कर रहे हैं विद फेशियल और पाम वेन रिकग्निशन पेमेंट्स. तो ये टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन रोलिंग आउट मोर वाइडली लेटर दिस ईयर, जिसके साथ और भी जो रिटेलर्स है ये ऑन बोर्ड आएंगे एंड कस्टमर्स को एक ऑप्शन जो है ये मिलेगा. कस्टमर्स विल बी एबल टू लिंक देयर बायोमेट्रिक प्रोफाइल एक पेमेंट कार्ड के साथ, अकाउंट के साथ, मतलब एक कैमरा जो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करेगा और एक रीडर जो आपके फेस वेन्स को आइडेंटिफाई करेगा, आपके पाम्स में जो वेन्स है उसको आइडेंटिफाई करेगा, बेसिकली लाइंस जो उसको आइडेंटिफाई करेगा. और इस टेक्नोलॉजी के साथ आपको आपके पेमेंट्स करने में और आसानी होगी और जल्दी से आप ये कर सकेंगे, जबकि ट्रेडिशनल कार्ड, फोन और पिन पेमेंट्स जो है दे विल रिमेन एज एन ऑप्शन. बट दिस इज समथिंग दैट पीपल कैन डू वेरी सून, योर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है ये इस्तेमाल करते हुए अपना पेमेंट करना. आपने अपना चेहरा दिखाया या फिर अपना अपना जो पाम है ये रीड करा एंड उसके जरिए यू कैन डू योर पेमेंट्स. इट विल बी लिंक्ड टू योर अकाउंट, टू योर कार्ड, जिसके थ्रू पेमेंट जाएगा. बट देन दिस इज व्हाट्स कमिंग वेरी सून.
13: मुंह दिखाकर आप शॉपिंग करो,
1: पेमेंट करो, शॉपिंग नहीं. शॉपिंग तो बिना मुंह दिखाए भी आप कर सकते हो, पर पेमेंट कर सकते हैं आप मुंह दिखाकर. यू नो, आई वांट टू नो, अगर आप फिलहाल हमें सुन रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू,
13: मतलब अगर आप हमें सुन रहे हैं,
1: लाइक इफ यू आर लिसनिंग टू अस राइट नाउ, और आप इस सिचुएशन में फिट होते हैं तो आप हमारे पास.
13: जो नहीं सुनेगा उन तक तो आपकी बात पहुंचेगी
1: ही नहीं. जो नहीं सुनेंगे वो खैर है ही नहीं, बट अगर आप सुन रहे बट इन दिस सिचुएशन यू डोंट फिट, तो आप वैसे भी जवाब नहीं दे पाओगे ना. तो आई वांट टू नो, जितने लोग सुन रहे हैं जो इस सिचुएशन में फिट बैठते हैं वो हमें बता सकते हैं कि नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए तरीके आ रहे हैं ऑफ डूइंग पेमेंट्स आफ्टर डूइंग योर शॉपिंग. आप फिलहाल किस स्टेज पर है? कैश पेमेंट्स, बैंक के जो एटीएम कार्ड्स होते हैं, स्वाइप कार्ड्स होते हैं वो, जो वीजा डेबिट कार्ड्स विद द क्या बोलते हैं उसको, टैप ऐप ऑप्शन, पे वेव ऑप्शन, या फिर जो फोन पर गूगल पे जो बोलते हैं ना, मोबाइल वॉलेट, इसके थ्रू ये ऑप्शंस अभी अवेलेबल है. तो आप किस स्टेज पर है?
13: I went up to, you know, phone se payment karna, and then I moved back.
1: Moved back to what?
13: Moved back to PayWave, and then moved back to swiping the card.
1: Achha, I
13: main aage jaakar main piche aa gaya hu.
1: Achha, I'm at the stage jahan pe I'm still doing payments with cash and swiping card. Good morning, hum.
3: Morning, hi.
1: Ji, kinse baat ho rahi hai?
3: Mittal.
1: Kya naam hai Mittal?
3: हाँ जी.
1: तो आप किस स्टेज पर है अभी फिलहाल व्हेन इट कम्स टू डूइंग पेमेंट्स?
3: तो मैं पहले वीजा और वो टैप करती थी, बट नाउ आई एम बैक टू द एटीएम एफपोस कार्ड.
1: अच्छा, लाइकवाइज
3: वो सरचार्ज और वो पे करना पड़ता है, देन यू एंड अप पेइंग मेबी $50-$70 अ मंथ
1: मोर
3: एक्स्ट्रा. So it's better
1: I buy coffee or my breakfast. See, there you go. Thank you so much. Cash payments ka istemal karti hai do?
3: Nahin, cash to nahin karte. Mostly the
1: F-Post.
3: Cash nahin uthate
1: hai
3: bank se,
1: aise
3: use karne ke liye, but mostly
1: F-Post. Okay, nice. Thank you so much aapke call ke liye. Have a wonderful day.
3: No worries.
1: Thank you.
3: You guys.
1: Bye. One more call. Good morning, kaise? Ji, bye-bye. Good morning, kaise hai aap?
11: गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा जी, कैसे हो?
1: बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए.
11: मैं भी फैंटास्टिक.
13: तो आप किस स्टेज पर हैं?
11: मैं भी एक कार्ड यूज करता हूँ, जस्ट ये पे भी नहीं करता मैं, उसमें सरचार्ज वगैरह लगते रहते हैं, या तो कैश या बैंक ट्रांसफर या कार्ड, बस वो.
1: चलो,
11: पिन डाल के
1: एक मिला हमें कैश वाला. थैंक यू आपके कॉल के लिए.
13: थैंक यू.
1: तो इंटरेस्टिंग है ना. तो आप भी मैं बता सकते हैं, व्हेन इट कम्स टू मेकिंग पेमेंट्स, अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है कि बस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कहा जा रहा है कि फेस रिकॉग्निशन या पाम रिकॉग्निशन के जरिए भी अब आप पेमेंट कर सकेंगे, विच विल बी लिंक्ड टू अन अकाउंट और अ कार्ड दैट यू होल्ड. बट ऑन द अदर हैंड, अगर अभी देखें पेमेंट ऑप्शंस में कैश है, स्वाइप कार्ड्स है और वीजा डेबिट कार्ड्स है एंड मोबाइल वॉलेट जो गूगल पे एंड ऑल है, ये सारे ऑप्शंस है. आप किस स्टेज पर हैं अभी फिलहाल व्हेन इट कम्स टू मेकिंग पेमेंट्स, ये आप हमें ज़रूर बता सकते हैं. यू कैन सेंड अ मैसेज टू अस ऑन 5599 अपने नाम के साथ. वी'd लव टू हियर कि आप कहाँ पर हैं. मैंने कहा कि मैं हूँ कैश एंड स्वाइप कार्ड्स पर, आपने क्या बताया था?
13: कार्ड्स.
1: कार्ड्स. Okay.
13: Swipe
1: cards. Okay.

0: Rugby with Shift 4. Encouraging news for Damien McKenzie ahead of Sunday's test against the Springboks at Ellis Park. All Blacks assistant coach Tana Umaga says the fullback's ankle injury is looking good at training.
1: Oh, he was sharp today. He got through what he needed to get through, so you know he's trending well for being available for this weekend.
0: And tennis superstar Venus Williams has been given a wild card for the US Open 29 years after reaching the final on debut.
2: Sports News.
3: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
4: World's best, hamari good brands nahi hai.
3: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
5: 10 degrees temperature Auckland mein bhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 13, overnight kam se kam 3 degrees. Kafi chilly conditions aaj hone wale hain. Make sure you are adequately prepared. Mausam saaf aur suhana sunset 5:51 pm par hoga.
3: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: What's going on? Kya bakte ho?
7: Are kehna kya chahte ho?
8: आज की क्या बकते हो स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फनी एंड अनफॉर्चुनेट एट द सेम टाइम आई वुड से. हार्डली ऐसी कहानियाँ होती है जो ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, बट दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज़ लाइक दैट. नाउ दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. अपेरेंटली मैंने ये कहानी पढ़ने के बाद जाकर थोड़ा रिसर्च किया जस्ट टू फाइंड आउट कि कहीं ये वन ऑफ दोज वायरल स्टोरीज तो नहीं है जो सिर्फ यू नो वायरल होने के लिए या फिर कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए क्रिएट किया गया हो, बिकॉज दैट डज हैपन दीज डेज, राइट. This is a genuine story which apparently happened for real. ये story is from Colorado और ये Mount Elbert जो है Colorado में, वहाँ पर एक hiker जो है ये गए थे hiking करने के लिए in an unusual search and उसके बाद में चलकर कुछ चीज़ें हुई जहाँ पर he was reported missing for nearly 24 hours. Search teams ने repeatedly इनको call किया, इनको टेक्स्ट किया, बट देयर अटेम्प्ट्स वेंट अनआंसर्ड क्योंकि जो नंबर है हाइकर के फोन पर ये आ रहा था नजर एज अननोन. सर्च टीम कॉल कर रहे थे इनको रिलोकेट करने के लिए, बिकॉज ही वेंट मिसिंग फॉर 24 आवर्स ना. सो वो उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उस चक्कर में उनको कॉल कर रहे हैं, उनको मैसेज कर रहे हैं, ट्राइंग टू अप्रोच हिम, जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये कहाँ पर है, व्हाट्स द सिचुएशन लाइक. लेकिन वो रिस्पोंड नहीं कर रहे थे, वो फ़ोन नहीं आंसर कर रहे थे क्योंकि उनके फ़ोन पर आ रहा था अननोन नंबर. एंड इवेंचुअली ये जो हाइकर है, इन्होंने ये जो ट्रेल था इनका जहाँ से ये घूमे थे, उस ट्रेल को इन्होंने रीडिस्कवर किया, जिसके बाद चलकर ही फॉलोड द ट्रेल एंड मेड इट बैक टू हिज कार. और फॉलोइंग मॉर्निंग जब यू नो ही वॉज अनअवेयर कि ऐसा कोई सिचुएशन हुआ जहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन जो इनके लिए जारी की गई थी उनको ज़्यादा पता नहीं था. लेक काउंटी सर्च एंड रेस्क्यू जो लेटर है उनको जब ये पूरे सिचुएशन का पता चला कि ये जो हाइकर जिन्हें मिसिंग रिपोर्ट किया गया था, जिनके लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये जारी करने के लिए कॉल्स किए जा रहे थे, बट ही डिडन्ट आंसर बिकॉज ही थॉट इट्स अननोन नंबर, रिस्क हो सकता है, स्कैम हो सकता है. एंड वो गुमे थे, वो बात उनको नहीं पता थी कि उनके लिए किसी और ने रिपोर्ट कर दिया उनको मिसिंग. तो उन्होंने ये पूरी की पूरी सिचुएशन जो है ये जाकर शेयर की ऑनलाइन.
5: सो ऑल द टाइम ही न्यू हिज वे बैक.
8: नो, ही डिडंट नो हिज वे बैक, ही गॉट लॉस्ट. बट ही डिडंट नो कि उनके बारे में किसी ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दी कि 24 घंटे हो गए हैं और ये गायब है.
5: ओके,
8: बिकॉज ही डिडंट नो दैट समवन ही न्यू. जब ये नहीं पहुंचे उनसे मिलने के लिए या फिर व्हाटएवर, तो उस टाइम पर उन्होंने उनके बारे में रिपोर्ट कर दिया होगा.
5: और फोन पर इनके कॉल आ रहा था, ये आंसर नहीं कर रहे थे.
8: हाँ,
5: क्योंकि वो अननोन कोई कॉल कर रहा था.
8: बट द वियर्ड थिंग व्हिच आई फाइंड इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज कि इनके फोन पे कॉल आ रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन वाले जो ही कर रहे थे.
5: अब ऑब्वियसली जब आप गुम गए हो तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि कोई ढूंढ रहा होगा शायद.
8: बट आई एम थिंकिंग जिन्होंने इनके लिए मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की होगी वो इनको क्यों नहीं कॉल कर रहे थे,
5: उनका भी शायद अननोन आ रहा होगा.
8: या हो सकता है ना, दैट्स क्वाइट पॉसिबल. या बट ही डिडंट नो कि ये गायब थे. सो अपेरेंटली व्हाइल ही वाज ट्राइंग टू रिलोकेट हिमसेल्फ, लाइक ही डिडंट नो कि ही वाज रिपोर्टेड मिसिंग, तो व्हाइल ही वाज ट्राइंग टू फाइंड हिज वे बैक तो इन्होंने वो ट्रेल डिस्कवर किया जहाँ पे ये अपनी गाड़ी तक पहुंचे एंड वापस सेफली घर आ गए. एंड देन नेक्स्ट डे ये पूरी की पूरी कहानी जो है ये इंटरनेट पर डाली गई बाय द लेक काउंटी सर्च एंड रेस्क्यू. एंड दिस इंसिडेंट एक्चुअली यू नो काफी हिलेरियस साबित हुआ एट द सेम टाइम, बट ऑन द अदर हैंड पीपल हैव देयर ओन क्वेश्चंस. बट दिस इज समथिंग दैट वी कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम टू. अगर आप कहीं भी ऐसे हाइकिंग वगैरह करने जाते

0: करते हैं देन यू शुड हैव अ प्लान. सर्टन टाइम तक आप वापस नहीं आते हैं जस्ट इन केस देन व्हाट शुड द पीपल यू नो डू अबाउट इट. या फिर आपको हाइकिंग करते हुए कहीं पर आप अटक गए, फंस गए, कुछ हो गया, गुम गए, तो उस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकलोगे या कैसे हेल्प के लिए आप यू नो चीज़ें जो है ये अप्रोच करोगे, ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हियर इन न्यूजीलैंड गो फॉर हाइकिंग टू एंड इफ यू आर वन ऑफ देम देन बी प्रिपेयर्ड विद अ प्लान. ना
1: First of all, I think somebody should know कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं and expected time of return.
0: Yeah.
1: You know, कौन सा ट्रैक आप ले रहे हैं या all those things. And अभी के ज़माने में तो you know smartphones and वो सारी चीज़ें अपने locations को आप share वगैरह कर सकते हैं. So
0: you options बहुत
1: हैं. हाँ, you can look at what the best option is.
0: Right. फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हुए अब बारी है कि हमारे जो पिछले घंटे थ्रोबैक से पहले हमने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि पेमेंट करने के मामले में आप किस स्टेज पर हैं. कुछ लोगों ने हमारे पास अपने मैसेजेस जो है ये भी सेंड किए हैं. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने मैसेजेस जो है ये सेंड करने के लिए. सबसे पहले इधर एक मैसेज जो है ये आया है और इन्होंने कहा है कॉन्टेक्टलेस पेमेंट या कॉन्टेक्टलेस रिंग एंड आईफोन. आई एम एन इंजीनियर, विल बी अ वेस्ट इफ आई डोंट यूज व्हाट आई डिजाइन. ये कहा है मोहिनीश ने.
1: मोहिनीश क्या डिजाइन करते हैं आप? इज एन इंजीनियर. नाइस. क्योंकि बता रहे हैं रिंग एंड आईफोन इस्तेमाल करते हैं कॉन्टेक्टलेस वे से पेमेंट करते हैं. या अमेजिंग. आई थिंक इंडिया इज एडवांस्ड इन डिजिटल पेमेंट्स. एवरी शॉप हैज गॉट देयर ओन बारकोड्स. यू गो टू गूगल पे, स्कैन दैट बारकोड एंड जस्ट पे. बट ओवर हियर इट्स पे वेव ओनली,
0: जिस पे सरचार्ज होता है कहीं से जगह पर ना.
1: हां हां.
0: राइट, सो देयर यू गो. अभी देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग बातें इस घंटे आपसे जरूर होंगी. वी हैव गॉट सम
1: इंटरेस्टिंग थिंग टू टॉक अबाउट. आई हैव नोटेड इन फीजी टू, वहाँ पर पेवेव भी है, ये स्वाइप वाला है, एफपोस. एंड इसके अलावा जो टेलीकॉम कंपनीज है वहाँ पर, उन्होंने भी कॉन्टेक्टलेस मोबाइल पेमेंट्स जो है ये सेटअप कर दिए. जहाँ भी आप जाओ आप वहाँ पर
0: बारकोड है.
1: हाँ, आपका फंड जो है इट्स यू नो आप अपना जो है जो उनका
0: वॉलेट है जिससे
1: मोबाइल वॉलेट में पैसे डिपॉजिट कर लो और उसी से आप पेमेंट्स करते चलो.
0: या यू डोंट नीड टू कैरी कैश विद यू बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल ऑप्ट फॉर कैश पेमेंट्स ना. बट नेवरदलेस व्हाटएवर द सिचुएशन इज एज आईव सेड कि इस घंटे भी कुछ दिलचस्प बातें आपसे होंगी. थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे आपके लिए कम्युनिटी न्यूज. हमारे आसपास क्या हो रहा है हमारी कम्युनिटी में, विल फाइंड दैट आउट विद यू.

0: What's going on?
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: कम्युनिटी की खबरों का वक्त हो चुका है। सबसे पहले तो याद दिलाते हैं, आज वेंसडे हो चुका है, थर्सडे कल का दिन ही बाकी रह गया है, जिसके बाद फ्राइडे को आपके लिए होने जा रहा है एनजेड कल्चरल ट्रस्ट की पेशकश, प्रेजेंटेड बाय साउथ ऑकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड, भजन जैम्स लाइव। रवितेश देव और उनके साथ अमेजिंग टीम ऑफ म्यूजिशियंस आर्टिस्ट जो है ये परफॉर्म करने वाले हैं। फ्यूजन भजन, डिवोशनल म्यूजिक, कीर्तन, इन सभी का मजा आप लेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में। और ये रहेगा वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो पापाटोयोटो में। टिकट सिर्फ $30 हैं जो आप ले सकते हैं eventbrite.com से, या फिर जेस फ्रेश मार्ट पापा टोय टोय, वैली फ्रेश पापा टोय टोय, या शिव प्रसाद एंड सन्स कैल्स्टन से। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री। यहां पर स्नैक्स और कावा भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। सो मेक श्योर इसी सैटरडे को, अच्छा हाँ दो ही दिन बाकी रह गए हैं, सैटरडे को आप एंजॉय कर सकते हैं भजन जैम्स लाइव।
3: तो इसके लिए आपको तैयार रहना, इन टिकट समय पर जो है ये जरूर ग्रैब कर लीजिएगा। ऑन द अदर हैंड, लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू कि खास होने जा रहा है आप सबके लिए न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन द्वारा 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट। ये रहेगा इसी सैटरडे एंड संडे 22nd एंड 23rd को बर्कनहेड स्काउट्स हॉल, जहाँ पर आप जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ कैरम प्लेयर, चाहे किसी भी स्किल लेवल के आप हैं, आप इसमें ज़रूर रजिस्टर कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है पंकज मोंगा, इनसे बातें कर सकते हैं 02109085067 पर।
2: और ऑकलैंड भक्ति सत्संग आपके लिए ला रहे हैं ग्रैंड त्रिकोणा कीर्तन नाइट, ये परसों होने जा रहा है शुक्रवार को वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो पापाटोयोटो में। कलाकार रहेंगे सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अच्युतन नायर, ऑकलैंड न्यूजीलैंड के नितिन गाउंडर और लोटो का फिजी के अश्विन कुमार अपर। टिकट सिर्फ $20 जो जयस फ्रेश मार्ट पापाटोयोटो से आप ले सकते हैं।
3: और ऑन द अदर हैंड, लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू कि थोड़ी देर बाद आपके लिए लेकर आने वाले हैं आज का हमारा कॉम्पिटिशन रक्षाबंधन प्रमोशन के तहत सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू, जहां पर अपने सिबलिंग की परफॉर्मेंस को आप भी रिव्यू कीजिएगा ताकि आप उस ड्रॉ का हिस्सा बन सके, जहां पर यू कैन विन योर शेयर ऑफ $500 जो हम गिव अवे कर रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी खास आपके लिए है, बट डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट ऑन आवर सोशल मीडिया कॉम्पिटिशन। और सोशल मीडिया की बात हम कर रहे, तो थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे जरूर कि इसमें पार्ट लेने के लिए आपको क्या करना है।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: 24 minutes after 9, only on Humbling Bollywood's biggest hits. Aapke liye lekar aa rahe hain The Breakfast Show with Vijay and Pooja. Aur thodi der pehle humne aapse kaha tha na ki aapko batayenge ki kaise aap hamare saath participate kar sakte hain siblings performance review mein. और वो मौका देने का समय अब आ चुका है फाइनली.
3: तो कॉल करना है आपको 0800-004-866 पर. सोचिए अपने भाई या बहन के बारे में और उनकी आप इस रक्षाबंधन पर उनको खुश कर सकते हैं. आप भी खुश हो सकते हैं क्योंकि भाई आप इनाम जीतेंगे. दो दो लोगों को $250 मिलने वाला है. एंड इट्स वेरी सिंपल. ऑल यू गॉट टू डू इज हम आपको एक टॉपिक देंगे जिस पर आपको अपने भाई या बहन का परफॉर्मेंस रिव्यू करना है. जैसे कि ट्रेवल करते समय आपके भाई या बहन जो है कैसे को पैसेंजर हैं. जो भी आपको करना है तो जब अगर हम ये आपसे पूछेंगे देन यू रिव्यू. सोचे कि आपके भाई या आपकी बहन जो है आपके साथ ट्रेवल कर रही थी वो जर्नी आपका कैसा था.
2: मेरे तो आई थिंक मेरे सिबलिंग्स में मैं अगर देखूँ अगर मैं बताऊँ हाउ विल आई रिव्यू. माई ब्रदर इज वेरी बैड. माई एल्डर सिस्टर इज ओके. बट माई मिडिल सिस्टर जो मेरे से एक साल बड़ी है शी इज द बेस्ट कंपनी टू ट्रेवल विद. बहुत चिल है, बहुत काम है, बहुत कूल है. आई गिव हर 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग. व्हेन कम्स टू माय ब्रदर आई गिव हिम अ 2 एंड व्हेन कम्स टू माय सिस्टर आई गिव हर अ 5 लाइक एल्डर सिस्टर. ऐसे
3: तो ऐसे आपको रिव्यू करना है. अब लाइन हम आपके लिए खोल चुके हैं. जल्दी से आप कॉल करें क्योंकि टाइम बहुत ही कम है हमारे पास और हम चाहेंगे कि आपका नाम हम उस ड्रो में शामिल करें जो नेक्स्ट वीक दो लोगों को ये इनाम दिला सकता है.
2: बिल्कुल. 0800-004-866 हमारा कॉल टेलीफोन नंबर है. टोल फ्री नंबर है तो इस पर आप कॉल करोगे आपको हमसे बातें करने के लिए पे नहीं करना पड़ेगा. एंड बदले में आपका नाम इस ड्रो का हिस्सा बन सकता है. $500 दो लोग जीत सकते हैं तो मौका आपके पास जरूर है उनमें से एक बनने का. और अगर आप पैसे जीते यो कॉल रखना है तो रख लो, शेयर करना है तो शेयर कर लो. आई थिंक वी हैड स्पोकन टू वन ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स इन दिस पर्टिकुलर प्रमोशन जिन्होंने ये कहा था कि अगर वो जीत गई तो अपने भाई को लंच या डिनर पर लेकर जाएंगे और सारे पैसे वैसे स्पेंड करेंगे. It's a good idea, no? So, let's see. 0800-004-866 par. Good morning.
4: Good morning.
2: Hello.
5: Good morning. Hello.
2: आपसे एक request है कि आप please अपने radio का volume धीमा कर सकते हैं सबसे पहले तो.
5: Yeah, Ashwin बात कर रहा हूँ.
3: कैसे हो Ashwin?
5: ठीक हो भाई.
3: Okay. ये बताओ
5: कि आपका program तो.
3: Thank you for listening. कितने भाई बहन हैं आप?
5: मैं लोग चार बहन हो और चार भाई हो.
3: चार बहन और चार भाई. अच्छा तो आज आपकी चार बहनें जो हैं उनको आपको रिव्यू करना है. कभी ऐसा हुआ है कि आपने चारों बहनों के साथ एक साथ कहीं ट्रेवल किया हो?
5: जी हाँ जरूर किया है.
3: ओके. कहाँ से कहाँ गए थे?
5: मैं लोग सिंगाटोका से मैं वेली रोड का हूँ. मैं घर से घूमने गया था अपनी नाना के घर कम्बीसी.
3: ओके.
2: कितना कितने
5: लोग वहाँ गया? चार भाई. क्रिसमस का टाइम था तो मैं लोग जब गया वहाँ पे तो उधर से जब आने लगा तो मेरे माँ जो था वो सबको एक एक आइस ब्लॉक लेके गया. वो आइस ब्लॉक बहुत बड़ा था. वही टाइम बस आने लगा. तो जब बस आने लगा तो ये लोग बोले वो बिग तो बस आने लगा. तो मैं बोला बिग तो मैं तो छोटा था. मैं नहीं दिखा. ये लोग तो बिग दिया. मैं तो लेकर चढ़ा हूँ. आधा कपड़ा में गिरा आधा मुंह में गिरा. ये लोग तो गुस्सा रहे मेरा ऊपर ना. जैसे बाहर उतरा वैसे मुझे दिया दो तीन.
3: किसने दिया?
5: बहन ने दिया. तुमने मेरी बेइज्जती करा दी.
2: दो तीन दिया ऊपर से.
3: आपकी
5: तीन दिया.
3: आपकी बहनें जो है उम्र में सभी आपसे बड़ी है या छोटी भी है कोई?
5: एक छोटी है और सब बड़ी है.
3: एक छोटी है तो बड़ी वाली ने आपको पीटा?
5: ना बड़ी वाली ने पीटा है.
2: कितने साल पहले की बात होगी यार अश्विन?
5: अभी तो बैक टू स्कूल टाइम है. क्लास छह बरस का था मैं।
2: नहीं मुझे कैसे पता कि आपको छह बरस हुए, कितने साल हुए?
3: तो कम से कम 20-25 साल तो हो गए होंगे ना।
5: 30 साल हो गए।
2: 30 years ago
3: आपकी बहन ने आपको पीटा था।
2: 35 years ago। हाँ चलो 35 लगा लेते हैं, पर उनको आज भी ये बात याद है और याद करके कितना हंस रहे। देखो
3: बहन ने पीटा था।
5: नहीं, कभी कभी बोल रहे ना। हाँ। और एक चीज और था, मेरा बहन मुझे बहुत मारती थी कभी कभी। मैं लोग जाकर नदी में कपड़े धोते थे ना। हाँ। तो वो मुझे बोलता कि साबुन उठा ले चलो, कभी बोलता पिटना उठा के चलो, तो मैं उठाकर पानी मिक्स देता था।
2: ओ, इसीलिए पीटा आपको अश्विन।
5: मैं भी जैसा पानी में सीधा। अभी बोलते हो तुम कितना बनवास थे, जब हम लोग कभी बैठते हैं तो क्या भी प्याला मैं एक दफ मैं तो केतली भीग गया पानी में। वो केतली बहते बहते गए थे वो पीछे नदी में, जब केतली जब भीग गया तो नदी किनारे किनारे जाते ना। हाँ। जाते जाते जाते वो गहरा पानी में पानी भर के केतली डूब गया।
3: केतली तो अश्विन ने पानी में फेंक दिया। चलो
5: केतली था ना,
3: तो बहुत पीटती थी बहन आपकी।
2: बातें हम कुछ और करने जा रहे हैं, पर इन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई। इट्स ओनली फेयर कि अगर इनका नाम ड्रॉप
3: किया। ऑब्वियसली हां अश्विन, थैंक यू सो मच,
2: थैंक यू फॉर कॉलिंग अश्विन, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके कॉल के लिए यार।
3: तो अश्विन का नाम तो ड्रो में आ चुका है, आपका नाम भी ड्रो में शामिल हो सकता है, प्रोवाइडेड आप सुनते रहें और अगली अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। प्लस डोंट फॉरगेट विजिट आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक जहां पर हमारा रक्षाबंधन कंपटीशन जो है ये भी चल रहा है,
2: विजिट करना है हम 104.2 FM विद द ब्लू टिक, दैट्स द वेरीफाइड पेज, और वहां पर फीचर्ड फोल्डर में आपको दिखेगा एक पोस्ट। नाउ व्हेन यू सी दैट पोस्ट इट सेज सिबलिंग बॉन्ड्स आरंट डिफाइंड बाय एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, A lifetime in one object. That's the post, right? तो पोस्ट के कॉमेंट सेक्शन में आपको एक जरूरी चीज करनी है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज पड़ी हो, could be a shirt, could be a घड़ी, could be a चप्पल, could be a pen, anything, जो आपके भाई और बहन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल है, बिकॉज उससे कुछ यादें आपकी जुड़ी है, कुछ बातें आपकी जुड़ी है, एंड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का फोटो आपको उसी पोस्ट के कॉमेंट सेक्शन में जाकर शेयर करना है। वो फोटो के साथ आपको उस फोटो को कैप्शन देकर ये बताना है 2-3 लाइन में कि क्यों ये चीज आपके लिए स्पेशल है, और अपने भाई या बहन को आपको टैग करना है। अभी तक अगर देखा जाए इंटरेस्टिंग एंट्रीज आई हैं, लेकिन बस एक या दो लोग हैं जिन्होंने सारे कंडीशंस सही तरीके से मीट करते हुए अपनी एंट्रीज रजिस्टर की है, और $300 हम गिव अवे कर रहे हैं हमारे इस कॉम्पिटिशन के तहत ऑन आवर सोशल मीडिया। सो इफ यू वांट टू विन दोस $300, रिमेंबर सही तरीके से आपकी एंट्री हमारे पास भेजनी बहुत जरूरी है।
0: Bollywood's most wanted.
4: Kundi khad gao. Ya seedha andar aao.
6: Main laun apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
2: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया.
1: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
3: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को 0800 लॉजिक गुरु.

0: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
1: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Like New Zealand-grown loose pre-ripened avocados, a fresh deal at just 99 cents each. And Huggies Jumbo Nappies 64 to 108 pack, just $26.89 per pack. T's and C's apply.
2: For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
3: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
4: Join the Tribe!
3: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
4: join the Tribe!
5: 3, 2, 1, rush! The rush is on at BP. Today only, save 20 cents per litre and get double points on fuel and shop. There's more to score at BP. Scan everyday rewards today and instantly save 20 cents per litre, max 50 litres. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewards-rush.
6: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
8: What's going on?
9: 17 मिनट रह गए हैं 10 बजने में और डेली राउंडअप में आज सबसे पहले 41 साल के एक व्यक्ति जिस पर आरोप है कि उसने दो लोगों की हत्या की और तीसरे की हत्या करने की कोशिश की पिछले महीने नोचो में अब उनका नाम जो है पब्लिकली या पब्लिक तौर पर लिया जा सकता है और इनका नाम है मार्क गोविंदन गोविंदन जो है ये आज सुबह ऑकलैंड हाई कोर्ट में उपस्थित हुए जहां पर उनका नेम सप्रेशन जो है ये खत्म हुआ उन पर अपने माता पिता की हत्या करने का आरोप है ग्लेनफील्ड स्थित उनके घर पर और उसके बाद बिगडेल में अपने भाई की हत्या करने की कोशिश करने का भी आरोप है इनके मुकदमे की सुनवाई जो है ये अगले साल जाकर शुरू होने को है 3 हफ्तों तक उनके मुकदमे की सुनवाई होगी और इस पर और भी जानकारियां बाद में हम आपके लिए लेकर आएंगे
10: इसके अलावा कहा जा रहा है कि एक ऑफिशियल डाटा ये सामने आया है और न्यूजीलैंड स्कूल्स जो है इस डाटा में पता चल रहा है दे आर बीइंग हिट बाय अ मेजर वेव ऑफ विंटर सिकनेस ऑलमोस्ट 10% ऑफ क्लासरूम टाइम वाज लॉस्ट नेशन वाइड लास्ट वीक क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे वो सिक थे एंड दे कुडंट अटेंड द क्लासेस The worst level जो record किया गया है in 3 years so far. Some schools are also struggling क्योंकि teachers are off sick, forcing them to combine classes या फिर management जो है ये staff को एक साथ लेकर आ रहे हैं even sending some students home to work things out.
9: आज एक बार फिर डेजर्ट रोड के कुछ हिस्सों को बंद करना पड़ा हैवी आइस और फ्रीजिंग कंडीशंस की वजह से वायोरो और रंगीपो के बीच आज सुबह एनजेड ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाकाकोटाही द्वारा रास्ते को बंद किया गया ये क्लोजर सुबह 7:10 पर अनाउंस किया गया और ट्रैफिक को स्टेट हाईवे 49 स्टेट हाईवे 4 स्टेट हाईवे 47 और स्टेट हाईवे 46 के थ्रू डाइवर्ट किया गया था
10: और द फाइनल अपडेट फ्रॉम माई एंड आई थिंक लास्ट वीक अर्लियर दिस वीक इसके बारे में काफी बातें हुई है जहां पर अब न्यूजीलैंड में सिटीजंस अरेस्ट जो बिल है ये पास कर दिया गया है जिसका मतलब ये होता है कि कीवीज नाउ हैव अ वाइडर पावर टू मेक अ सिटीजंस अरेस्ट आप किसी को डिटेन कर सकते हैं रीजनेबली अगर आप बिलीव करते हैं कि वो एक क्राइम कमिट कर रहे हैं तो लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हुए यू हैव टू टेल देम दैट दे आर बीइंग हेल्प फॉर द पुलिस और रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो एंड स्ट्रेट आफ्टर दैट यू हैव टू कॉल 111 एज सून एज पॉसिबल टू रिपोर्ट द मैटर पुलिस का फिर भी कहना है कि ऐसे मामले में द सेफेस्ट थिंग टू डू वुड बी टू मेंटेन योर डिस्टेंस and let the police handle the situation. So ye the aaj ke daily roundup.
11: Let's go.
6: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. Do baate.
2: Aaj ki do baaton ka waqt jo hai ye ab ho chuka hai aur in baaton par thoda gaur karein to ज़िंदगी बदल सकती है हमारी. कहते हैं कि कहकर सोचना और सोच कर कहना ये इंसान का व्यक्तित्व बदल देता है. कहकर सोचना और सोच कर कहना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है.
3: राइट, ट्रू, बिल्कुल सही. बट इफ आई मे आस्क, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट थिंग टू डू?
2: सोच कर कहना.
3: बिल्कुल,
2: ऑब्वियसली. और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है.
3: अच्छा,
2: पता नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल.
3: हाँ भाई, आजकल के जमाने में आई थिंक दिस इज द एप्ट थिंग दैट यू कांट फिगर आउट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ताकि खुद की वैल्यू तो समझे आप. कोई आपकी इज्जत करे ना करे, कोई आपसे प्यार करे ना करे, आप खुद की इज्जत जरूर करें, आप खुद से प्यार जरूर करें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है. चलिए इन्हीं बातों के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत. जाने की जाने का समय जो हो रहा है, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. और तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें अपना साथ और समय देने के लिए, आज प्रोग्राम को इतना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अपनी ओर से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए. एंजॉय योर डे, हैव फन एंड एंजॉय आज का हमारा फाइनल थ्रोबैक ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. कल मिलते हैं.

0: better, live better.
1: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye kyunki aa rahi
2: hai My Time with Kashika.
3: Kia ora and namaskar and a very very warm welcome is thande thande din mein. मैं अपनी वॉर्म विशेस लेकर हाजिर हो चुकी हूँ 12 बजे तक आपका और मेरा अरे मैं यानी कि आपकी रिमाइंडर क्लॉक काशिका वैसे तो कशिश फूस के साथ जाने से आपके लिए मुमकिन हो जाता है कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी कोशिश रहती है कि आपके साथ बातें करें आपको याद दिलाएं और बताते रहें कि आपके लिए कितनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बट ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग इज़ यू यू हु इज़ लिसनिंग टू मी राइट नाउ क्योंकि आप जो हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अपने लिए अपने आसपास जितने लोग हैं शायद उनके लिए भी लेकिन जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तब तक आप दूसरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं बस इसी नोट पर ये बताते हुए कि टाइम इज़ मनी और टाइम कितना वैल्यूबल है ये आता है ऐसे फर्राटे मारकर निकल जाता है आप पकड़ते पकड़ते भी नहीं पकड़ पाएंगे इसे तो ठीक है जिस तरह से जिस रफ्तार से समय चलता है हमें उस रफ्तार को कैच करना है लेकिन हाँ हमारी बातें तो ऐसे चलती रहेंगी याद है कि अगले हफ्ते रक्षाबंधन है और क्योंकि ये रक्षाबंधन का सुनहरा ब्यूटीफुल सा एक डे है तो मैं बस थोड़ी ही देर बाद टेलीफोन की लाइंस खोलने वाली हूँ कल आप लोगों ने कुछ इजाज़त नहीं दी बट मैं चाहती हूँ कोई एनी फनी प्रैंक हो या कोई ऐसा मोमेंट जहाँ आपको लगता है आपने अपने भाई बहन को कहा कि भाई तू बहुत नॉटी है ओ तू बहुत रोंदू है ओ तू बहुत लड़ाकू है तू बहुत यू नो चिक चिक करने वाला है ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपने अपनी तरफ से अपने भाई या बहन के लिए रेडी कर दिया था अच्छा मैं ही वो जानना चाहती हूँ आपसे 5599 पे तो नहीं 0800 00 हम पर थोड़ी देर बाद आप कॉल कीजिएगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं दूंगी अबाउट किस तरह से आप अपने भाई और बहन के साथ मिलकर $500 यानी 250 ईच जीत सकते हैं लेकिन अभी के लिए बचाओ क्या तो चलो सुनते हैं

0: Kids Adda.
1: मैं इस समय एक्सपर्ट तो मैं आपको बनाना चाहती हूँ. रीजन इज दैट आप एज अ भाई या बहन एक्सपर्ट हैं अपनी चीज़ों में, लेकिन आपको पता है आपके भाई या बहन जो भी हैं उनके साथ आपका क्या एक इशू हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई. चलो ठीक है, मैंने प्रोग्राम की जब शुरुआत भी की थी तो मैंने आपसे यही कहा था. क्या कहा था अगर आपको याद है कि मैंने क्या कहा था? बस आपको तोलना है, बोलना है क्या कहना है अपने भाई या बहन के बारे में. चलिए 0800 हम पर आप कॉल कीजिए क्योंकि मुझे आपकी कॉल का इंतज़ार है. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि भाई बहन का ये जो रिश्ता होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं. और ऐसे में आपको लगता है उनकी परफॉर्मेंस को हमें रिव्यू करना है, उनका एक तरीका हमें देखना है, करना है, तो बस ठीक है आपको मुझे कॉल करना है. कभी कुछ भी ऐसा इंसिडेंट, कभी कुछ ऐसी बात आपको लगता है कि आपके भाई या बहन आपके लिए बहुत बड़े सपोर्ट रहे हैं या नहीं रहे, क्या हुआ है, चलिए अपने रिव्यूज़ दीजिए हमें. 0800 हम पर कॉल करें. दो लकी विनर्स जो हैं यानी कि भाई बहन $250 ईच लेके जाने वाले, विनर का नाम 28 अगस्त के दिन हम अनाउंस करने वाले हैं. बिल्कुल अपने लिए समय मत गवाइएगा, एक सीरियस अप्रेजल समझ लीजिए अपने भाई या बहन का. दूसरी तरफ से हम जब तक मैं आपकी कॉल का वेट करती हूँ, जो भी कॉल करना है मूड है तो कर लीजिएगा कॉल, क्योंकि कभी कभी ऐसी भी चीज़ें होती हैं ना, कुछ मेमोरी में आपकी रह जाती हैं या फिर आपको लगता है कि ये बात मुझे आज तो बतानी ही बतानी है. अपने भाई बहन का एक इंसिडेंट है, कुछ भी है, या फिर एक ऐसी निशानी जो आपको लगता है अपने भाई या बहन के आप कैरी करते हैं, जो मैं करती हूँ, वो भी बता सकते हैं. अच्छा, निशानी से मुझे याद आया दैट कुछ ऑर्डिनरी चीज़ें भी हो सकती हैं, बट मगर वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी आपकी एक याददाश्त बन जाती हैं. वो कुछ भी हो सकता है. क्या वो आपके पास अभी भी है? अगर है तो हमारे फेसबुक के पेज पर आ जाइए, वहाँ पर एक अपनी वो जो भी आपकी याददाश्त है, मेमोरी है, उसको उसकी एक फ़ोटो आप लोड कीजिए और 2 या 3 सेंटेंसेस में अपनी उस कहानी के बारे में या उस मेमोरी के बारे में बताइए कि सो एंड सो और ऐसा मेरे भाई ने या बहन ने या मुझे गिफ्ट किया था या दिया था या मैंने उससे चोरी किया था. कुछ भी हो सकता है, बस आपको अपने भाई या बहन को टैग करना है, आपका नाम हम ड्रॉ में ऐड कर देंगे फॉर $300 कैश. तो भाई ये इतने सारे आपको मौके हम जब देते हैं तो यही कहते हैं कि इस मौके को गवाइए मत, है ना. और आपकी कॉल जब आ जाएगी तो समझ लीजिए मैं आपको ऐड करने वाली हूँ टू द ड्रॉ. अब ये ऐसा मत कहिएगा कि कि कुछ होता नहीं है तो मेरी कॉलर जो हैं बहुत बहुत अच्छे हैं. थैंक यू, गुड मॉर्निंग, किन से बात हो रही है?
2: Good morning, Kashika ji. This is Manpreet here.
1: Hi, kaisi ho Manpreet?
2: Ji, theek hu. Aap kaise ho?
1: Bilkul badhiya. Batao.
2: I'm lucky ki mera ek bhai bhi hai aur meri ek behan bhi hai.
1: Arre wah.
2: Ji, to main ye jo chhota sa incident hai wo aapke sath share kar rahi hu, including my sister, kyunki bhai ke sath kabhi koi problem nahi hui. He is 5 years younger than me.
1: Achha.
2: So he is always like a little baby to us. So usko sath kabhi bhi touch wood kabhi bhi koi problem nahi hui.
1: Kya naam hai aapke bhai ka?
2: Sister ka difference, uska naam Pushpinder hai.
1: Achha, okay.
2: Ji, aur meri sister ka naam hai Prabjot. वो इंडिया में है और वो उसका और मेरा एज डिफरेंस 2 years का है और हम लोग मतलब कैट फाइट शुरू से लेके आज तक.
1: ओह माय गॉड.
2: लेकिन जो इंसिडेंट मैं आपको बता रही हूँ वो कैट फाइट के रिलेटेड नहीं है. वो है कि व्हेन आई गॉट मैरिड बैक इन 2014, तो उस शादी वाले दिन में जैसे है ना उसको आदत है अपनी मर्जी करने की, हार जीत करने की.
1: आपकी आवाज कट रही है.
2: आई वाज सेइंग ना, आपके लिए उसका बिहेवियर स्टार्टिंग से एक दिन पहले इतना चेंज हो गया. और वो रोती रो रो के उसने मेरा मूड खराब कर दिया. जो मैंने एंजॉय करना था वो भी नहीं मैंने किया. इतना वो रोई है ना कि मैंने चले जाना है. तो जब हम देखते हैं तो उसमें भी बस उसका मुंह और आंखे लाल.
1: आपकी मनप्रीत आपकी वॉइस कट हो रही है, शायद आप किसी ऐसे एरिया में हैं. लास्ट का पार्ट आपको समझ में नहीं आया. आपने बताया कि आपकी शादी हो रही थी, उससे एक दिन पहले से उन्होंने रोना शुरू किया, आप अपनी शादी को एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि वो इस तरह से रो रही थी कि आप चली जाओगी. उसके बाद क्या? सॉरी, ये लाइन आपकी पूरी एकदम
2: सॉरी बिकॉज जी बिल्कुल, क्योंकि जिस एरिया में मैं हूँ थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क का इशू।
1: ये कौन सा एरिया है भाई, ऐसा कौन सा एरिया है?
2: ये हुनुआ साइड का एरिया है।
1: अच्छा
2: जी, अपर नॉर्थ की तरफ ऑकलैंड में अगर आपको पता है तो हुनुआ।
1: यस नॉर्थ, हाँ बिल्कुल। पूजा को तो पता है कि वो वेस्ट ऑकलैंड में था वैसे।
2: जब भी मैं वो सुनती हूँ हमेशा मेरी हंसी आई जाती है। तो पूजा जी को मैं अगर कभी पूजा जी से बात होगी तो मैं बोलूंगी जी मैं वेस्ट से बात कर रही हूँ।
1: अच्छा फिर क्या हुआ आपकी सिस्टर के साथ, बताइए।
2: तो मैं आपको बस ये बता रही थी कि उसने जो है रो रो के अपना जो मतलब मूड खराब किया और हम लोगों का मूड खराब किया ना, और हर फोटो खराब की और हर वीडियो में उसका बस नाक लाल है, आंखें लाल है, क्योंकि वो रो रही है।
1: माय गॉड।
2: तो अभी तो मुझे अभी तो हंसी आ रही है, लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम पे मुझे लगा इसको हो क्या गया, मतलब यही तो चाहती थी कि मैं जाऊं यहाँ से इसको। हाँ। ये कि ये जाएगी तो सब मुझे मिलेगा।
1: oh,
2: एक कैट फाइट बहनों में होती रहती थी और मतलब कि हाँ चल जा मुझे नहीं केयर, मुझे नहीं लेना देना तुझसे कुछ भी। और द डे आई गॉट मैरिड उससे एक दिन पहले और जिस दिन शादी थी, मतलब उस बंदी ने इतना रो रो के, और मुझे पता है, और आज तक टचवुड अब शी इज ऑल्सो मैरिड, शी ऑल्सो हैव किड्स है ना, तो अब हमारा बॉन्ड डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये जो इंसिडेंट आई है मैं उसको भी हाईलाइट करती रहती हूँ कि देख सब कुछ ठीक था जो तूने फोटोज और वीडियोस में अपना हाल किया हुआ है ना, कि पता नहीं तुझे किसने मार के बिठा दिया वहां पे कि बैठ जा।
1: अरे माय गॉड।
2: जी तो ये इंसिडेंट मैं उसे डेडिकेट करूंगी, उसका नाम है प्रभजोत।
1: ओके थैंक यू सो मच। एंड आपका नाम मैंने ड्रॉ में ऐड कर दिया है, आपका, पुष्पिंदर का एंड प्रभजोत का। मेरे हस्बैंड का नाम भी प्रभजोत है बाय द वे।
2: वेल यू नो पंजाबी नेम्स वेरी कॉमन एंड वेरी सिमिलर, लाइक इवन मी मनप्रीत, आपको हर थर्ड फोर्थ पर्सन मनप्रीत मिल जाएगा, मेल फीमेल डजंट मैटर।
1: आई नो
2: जी, थैंक यू कशिका जी,
1: थैंक यू सो मच, टेक केयर, bye.
2: Thank you, Ji. Thank you. Bye-bye. My time with Kashika. Guys, kal chal raha hai bahut news mein. Happy to nahi. Attention everyone. हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
0: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
2: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
0: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
2: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
0: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
2: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
3: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर। There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.
4: Coffee? The usual?
5: How about the unusual?
6: Can't wait for coffee? Then don't! Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
7: If you're doing a rebrand and have multiple stores or offices around the country, you don't have to juggle different signage companies. At Speedy Signs, you deal with one project manager, one point of contact who coordinates everything nationwide. Nearly 30 locally owned Speedy Signs teams handle all the details, from site checks to installation. So you get brand consistency backed by local knowledge. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster.
8: So, you and the boys have that mildly inappropriate, actually very inappropriate group chat. maybe it's time to balance it out with a more appropriate group, like Blood Buddies, a group that donates blood and plasma together. This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever. Yours could save lots of lives. No joke, it gives you that warm feeling inside. And you get free biscuits. The boys love biscuits. Get your Blood Buddies together and book now at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
9: Discover the magic at Go Bananas Chai Ke, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
10: Go Bananas Chai Ke is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
9: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Chai Ke Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
10: Available at selected branches. T's and C's apply.
11: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट। squirrel.co.nz
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
3: Office shout out.
1: सो ऑफिस शाउट आउट में मेरे पास अभी आपका कॉल आया था एंड आपने कॉल तो ज़रूर किया मनप्रीत, लेकिन कोई और भी आपके साथ साथ अलावा मुझे इस समय सुन रहे हैं ऑल द फ्रॉम हुना, कहते हाँ हमारा रिसेप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। मनप्रीत जी को बता दीजिए, वो जिस इलाके में भी हैं हमारा रिसेप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। तो भाई ठीक है, वेरी वेरी ग्रेट। एंड दिस इज़ नन अदर दैन आपका नाम राज, तो थैंक यू सो मच, आपने ये मैसेज भेजा है एंड यस ऑफिस शाउट आउट आपके लिए था।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: get ready.
1: Passengers, stand by. The next humboarding call could be your ticket to paradise. Listen out and get ready for your chance to win 2 return air tickets to Vanuatu and $1,000 spending money.
2: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
3: The beat of Bollywood.
4: World's best, hamari koi branch nahi hai.
5: वैसे हमारी कोई ब्रांच है तो नहीं, लेकिन हम ब्रांच आउट कर रहे हैं. आपको चाहते हैं कि आप भी ब्रांच आउट करें, चिलैक्स करें, रिलैक्स करें एक हॉलिडे में. और ऐसे में ये बोर्डिंग कॉल का आपने एक यू नो मैसेज सुना है, मगर ये बोर्डिंग कॉल का अनाउंसमेंट नहीं आया है. बेसिकली आपको रिमाइंडर देने के लिए है कि भाई तैयार हो जाओ. ये कभी भी बोर्ड नाव का आपके लिए यू नो हमारा अनाउंसमेंट बच सकता है. और उसके बाद आपके पास सिर्फ 30 मिनट्स होते हैं जिसके ज़रिए आप जाकर अपनी एंट्री पूरी करते हैं. अब आप ये रोज़ हम आपके लिए प्ले करते हैं आपके लिए, और चाहते हैं कि आपको मिले 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआटू विद सॉलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 कैश, या आप मनी स्पेंड कर सकते हैं. याद रहे हम बोर्डिंग कॉल जो है आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम सॉलोमन एयरलाइंस के सौजन्य से, जो 4 बार हफ्ते में फ्लाई करते हैं नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआटू. वैसे flysolomons.com के ज़रिए आप डिटेल्स जान सकते हैं अबाउट द एयरलाइन एंड हाउ इट फ्लाइज, वेयर इट फ्लाइज, प्लस हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी अगर आप समझना चाहते हैं वो भी आपको हमारे रुवा ऐप के ज़रिए, हमारी वेबसाइट के ज़रिए भी मिल सकते हैं. हमारे कंपटीशन में अगर भाग लेना चाहते हैं तो जिस समय वो बोर्ड नाउ होगा तो BC लिखिएगा 5599 पे, ताकि आपको वो लिंक मिले एंड यू डोंट मिस दैट आउट. क्योंकि भाई ये मिस आउट करना है ही नहीं. कभी कभी किसी के लिए कोई मुहूर्त अच्छा होता है. वैसे देर आर मोर देन 1000 एंट्रीज विच वी हैव रिसीव टिल नाउ, सो वी आर वेटिंग कि आप क्या उसमें से एक वो लकी हैं या लकी बन सकते हैं.

0: ईट बेटर लिव बेटर. और एक लॉ चेंज हुआ था जो पास हुआ था अंडर अर्जेंसी लास्ट ईयर. उसका मतलब ये था कि बेनिफिशरीज जो थे उन्हें एक सर्टन पेमेंट मिलना था, सच एज सपोर्टेड लिविंग पेमेंट, अकोमोडेशन सप्लीमेंट, डिसेबिलिटी. ये अलाउंस जो था रिकन्फर्म कर रहा था द सर्कमस्टांसिस एटलीस्ट वंस इन एवरी 52 वीक्स, और ये कन्फर्म किया जाता था कि दे आर एलिजिबल. हाउएवर जो विंटर एनर्जी पेमेंट था विच वॉज सपोज टू बी ऑटोमेटिक फॉर जिनके सुपरएनुएशंस हैं, वेटरन्स हैं, इनको एक बेनिफिट मिलने वाला था एंड दे वर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लेजिस्लेशन. इसका मतलब ये था कि जो पेमेंट था वो एक्सपेक्टेड था उनके लिए, लेकिन ये कॉन्सिक्वेंसेस थोड़ा सा शायद लगता था रश्ड हो गया था. सोशल डेवलपमेंट मैनेजर ने ब्लेम किया ऑन द पॉलिसी ओमिशन, और फिर उन्होंने बताया कि ये कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई. मिनिस्ट्री वर्कड राउंड द क्लॉक टू करेक्ट दिस एरर एंड इंश्योर किया जो करेक्ट अमाउंट है इट वॉज पेड बैक. सो सोशल मिनिस्ट्री ने कहा कि बिटवीन 1st May to 7th of August अ टोटल ऑफ 14,862 सुपर एनुएशन और वेटरन्स जो हैं इन्हें विंटर एनर्जी पेमेंट्स जो थे जिसकी वजह से इफेक्टेड थे उस पर काम किया है. एंड ऑन August 13th दे कम्प्लीटेड द रिव्यू, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया उन पेमेंट्स को जो या तो कैंसिल कर दिए गए थे या सस्पेंड कर दिए गए थे. एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड हैज़ अपोलोजाइज्ड whoever has not received their winter energy payment. Have you received it? Agar aapne nahi kiya to please definitely get in touch.
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: Puri planning se aaye hain, shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप. वेस्ट वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये. आई हैव लॉट्स ऑफ फन बेसिकली विद द कोल्ड वेदर.
3: कौन है?
4: हुनुआ और वेटाकरे.
3: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में.
4: किधर है हुनुआ?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
6: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
7: बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स.
6: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स. हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन.
7: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग. स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो ज्यूसी.
6: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट. अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स.
7: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.
8: इट्स मेक हैप्पी सीजन. Get your McHappy cookies from Macca's. Just $3.50. All proceeds go towards keeping families together at Ronald McDonald House Charities. T's and C's apply.
9: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
10: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
11: And award goes to Indelible Homes.
10: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite Master Builder.
12: Kahani of Indelible Homes.
13: Kia ora. If you're enrolled to vote, you'll soon receive an enrollment pack in the mail. Keep an eye out for yours.
14: Your enrollment pack should arrive by 22 August. Open yours and check your details to make sure they're correct. Learn more at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
15: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
16: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
15: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
16: Available at selected branches. T's and C's apply.
17: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
1: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
0: Now this is strange. आपका कॉल आया, आपने मुझसे कहा that Kashika, मुझे तो कोई ड्रीम आता ही नहीं है. I don't know. तो you know, sometimes या आपको याद नहीं रहता कि आपको कोई ड्रीम आया कि नहीं आया. How would you remember? ये डीप स्लीप होती है जब आप उठते हैं. Your brain does not save those dreams sometimes. कभी कभी होता है you miss out on the REM sleep stage. एक REM is rapid eye movement जो आप करते हैं. Most of the dreams happen during that REM time. कुछ मेडिकेशंस होती हैं, स्लीप एड्स होती हैं जो आपके लिए आपकी लोअर ड्रीम जो एक रिकॉल होता वो नहीं रखते. कभी कभी आपको एक स्ट्रेस होता है, वो वरीज जो होती हैं वो आपकी स्लीप की क्वालिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं. आपके ब्रेन को रेस्ट देने के लिए कभी कभी ऐसा होता है, वो मेडिसिन जब दी जाती है, मेडिकेशन होता है, तो आप बहुत डीप स्लीप में चले जाते हैं. इट्स यू नो मोस्टली कहा जाता है कितने रेगुलर. आज मैं ड्रीम के बारे में इसलिए बात नहीं करी क्योंकि आपका जो कॉल आया तब आपने कहा मुझे तो ड्रीम ही नहीं आती. तो आई थॉट इट्स बेटर वी टॉक अबाउट दैट. तो इफ़ यू गो टू बेड एंड वेक अप एट द सेम टाइम एवरी डे, एक रेगुलर आपका स्लीप का स्केड्यूल होना चाहिए. एंड कीप अ पेन एंड पेपर रेडी ऑन योर साइड एट द बेड साइड. जहाँ पे आपका कोई थॉट आता है या मोमेंट आता है व्हेन यू वेक अप, फटाफट उसको लिख डालिए. एक चीज़ और है जो आप कर सकते हैं और वो है यू लाई स्टिल फॉर अ मिनट अपनी आइज बंद करके व्हेन यू वेक अप. एंड फिर वो अपने जो फेडिंग मेमोरीज हैं जो ड्रीम की, उन्हें पकड़ने की कोशिश कीजिए. देखिए इट माइट हेल्प यू, इट माइट ब्रिंग दोज थिंग्स यू नो बैक टू यू. बट इफ़ यू आर ऑलमोस्ट सर्टन दैट आप नहीं ड्रीम कर पा रहे तो इट्स परफेक्टली नॉर्मल. डोंट वरी अबाउट इट. ऐसा इसमें कुछ खास नहीं है. इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल दैट यू डू नॉट ड्रीम. ऑलमोस्ट एवरी ड्रीम जो हर रात को होता है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस इमीडिएटली. बट योर ब्रेन यू नो फेल्स टू स्टोर दैट काइंड ऑफ मेमोरी और इट फील्स कि आपने कभी ड्रीम ही नहीं किया था. शायद ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ.
1: दिल से दिल तक. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: 0800-RACHNA. इधर उधर जाने से बचना. कॉल करो 0800-RACHNA. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: ये इतनी ठंड पड़ रही है. आई एम सॉरी, आई हैव नॉट पिक्ड अप योर नेम. आपका कॉल आया था बट आई प्लान टू टॉक अबाउट इट. डू यू नो कि ये ड्रीम कितनी देर तक होता है? सो वी विल टॉक अबाउट दिस टुमारो, बट आई हैड अ वेरी वेरी गुड डिस्कशन. आपका नाम मैंने नहीं पूछा, बट येस आई वॉज क्वाइट इनलाइटेंड जब मैंने बात की. बट मैं इसके बारे में आज पढ़ूंगी और फिर मैं कल आपके साथ बात करूंगी. एक ड्रीम कितनी देर तक चलता है? Ah, my God, this is some fact which I would like to probe into and check ki bhai kya hota hai aise mein.

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग है हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
4: 3, 2, 1, rush! The rush is on at BP. Today only, save 20 cents per litre and get double points on fuel and shop. There's more to score at BP. Scan everyday rewards today and instantly save 20 cents per litre, max 50 litres. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewards-rush.
5: Got an event on the calendar? Then your signage should already be in motion. Speedy Signs produces pull-up banners, display walls, teardrop flags, and expo signage that grabs attention fast. They handle design, production, and install, so you can focus on conversations and conversions. Big presence, zero last-minute panic. If your event is coming up, now's the time. Don't leave it to the last minute. Call them now on 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz.
6: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
7: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
8: खुल गया
9: भरत भाई, टिफिन खुल गए छे। संजना का डिब्बा खुल गया।
10: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा,
9: डिब्बा खुल गया।
10: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
11: Logic Finance Limited, changing lives with logic.
12: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. A new report is calling for action to address growing poverty among pensioners. Almost 20% have put off dental and doctor visits due to the cost. Christian Social Services' Alice Sutton says many are struggling.
13: We want to see things like special needs grants being more accessible and the accommodation supplement for older people. So this means that they wouldn't have to burn through their savings before relying on extra support from the government.
12: The NZDF has launched a new specialist course for drone operators. Participants are trained to build and use first-person view versions of the tech. Lieutenant Colonel Simon Golk says they've changed the battlefield.
14: Examples seen in Ukraine show how drones have changed regular operations, such as the resupply of forward troops, intelligence, surveillance and reconnaissance, and the destruction of military targets.
12: Drivers are being urged to use extreme caution on State Highway 2 between Opotiki and Gisborne due to ice. NZTA says crews have been using grit on the road, but the surface has iced over again. It's now reopened to heavy vehicles, but all drivers will be piloted through the area near the Fulton Hogan Quarry. And Queenstown Airport has celebrated its 90th anniversary with a strong financial result. They've declared a total dividend of $20.4 million for the year ending June. In rugby with Shift 4, All Blacks defence coach Tana Umanga is taking nothing for granted heading into Sunday's first test against South Africa at Ellis Park. He says the Springboks provide plenty of threats.
15: They've grown in terms of their attacking prowess in the backs and utilising their forwards in the right spaces.
12: And a new number for All Whites captain Chris Wood, who'll wear number 9 on his shirt for Nottingham Forest when the English Premier League football season kicks off this weekend.
0: Sports News.
11: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
16: Hum par shok suchnaye aap tak late hai, Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
17: Sochit kiya jata hai ki Dhanlakshmi Rao urf Subhu ki patni ke pati रानी रेनू और देविका के पिता पापा टोई के आदित्य विक्रम राव की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार कल यानी 20 तारीख को 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा. सूचना दोबारा सुने. धनलक्ष्मी राव उर्फ सुबू के पति रानी रेनू और देविका के पिता

0: एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू पीपल, हाउ आर यू? ठंड बहुत है और ऐसी ठंड में आप अपने आप को वार्म ज़रूर रख रहे होंगे। भाई काशिका हूँ मैं, आपकी रिमाइंडर क्लॉक यही तो बताती रहती हूँ कि इस मौसम में ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे समय ये करो, वो करो, और ये मेरा राग जो है चलता चला जाता है 10 से 12 बजे तक आपका साथ मैं निभाती हूँ। कशिश फूज के सौजन्य से आ जाती हूँ मंडे टू फ्राइडे, ऑल राइट। लेकिन इस ठंड के मौसम में, जैसे ठंड इतनी लग रही है, ऐसा क्या है जो हम घर में खा सकते हैं जिससे हम वार्म रह सकते हैं? आई नो हम लोग घर में अपने हीट पंप्स ऑन करते हैं, हीटर्स ऑन करते हैं, अपने इनर्स पहनते हैं, जो भी हमारे वूलन्स होते हैं वो निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ठंड के मौसम में जो हमें अगर खाते हैं तो हमें बहुत अच्छा रहता है, हमारी बॉडी जो है वार्म रहती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ही उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको मैं इतना ज़रूर बताना चाहती हूँ, अगर आपकी कम्युनिटी में कुछ खास हो रहा है तो प्लीज़ ज़रूर हमें बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं आपकी कम्युनिटी में आपकी आवाज़ बनना। buzz@hamfm.com पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।
1: बचाओ क्या?

0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Eat better and live better. Kashish Foods तो ये कहते चले आ रहे हैं, लेकिन traditional कुछ जो हमारे इंडियन घर जो हैं उसमें ईजिली डाइजेस्टेड जो चीज़ें होती हैं जिसमें थोड़े से स्पाइसेस अगर आप ऐड करते हैं वो आपका कोल्ड कंजेशन रिमूव कर देते हैं. खिचड़ी जो होती है, रसम जो है एक साउथ इंडियन स्टाइल का सूप है, हल्दी दूध और मसाला चाय जिसमें थोड़ी अदरक और काली मिर्च अगर आप ऐड करते हैं, इट डेफिनेटली हेल्प्स यू आउट. इसके साथ साथ कहते हैं कि वॉर्म चिकन सूप जो है असेंशियल फ्लूइड्स प्रोवाइड करता है, आपको हाइड्रेटेड रहता है, आपके कंजेशन को ईज आउट कर देता है. कभी कभी कहते हैं कि जो अदरक होता है ना वो आपके थ्रोट को काम करता है, लहसुन आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हनी आपके जो कोल्ड है उसको ईज आउट करने की कोशिश करता है, ऑरेंजेस एंड लेमन्स जो है आपकी बॉडी को विटामिन सी देता है जो आपकी बॉडी को हील करने में हेल्प करता है. स्पाइसी फूड आई डोंट लाइक, बट कहते हैं कि स्पाइसी फूड अगर आप लेते हैं तो आपकी नोज क्लियर होने लग जाती है, आपका म्यूकस जो है वो थिन होने लग जाता है. एंड ऑफकोर्स कुछ चीज़ें ऐसी होती चिप्स क्रैकर्स जो आपके सॉर थ्रोट को हर्ट करते हैं, सो डेफिनेटली ट्राई नॉट टू यूज़ ऑल दैट. येस, आपका टेक्स्ट आया और आपने कहा कि टू स्टे वॉर्म यू नो आई ट्राई टू हैव सम नेचुरल बॉडी हीट ऑफकोर्स एंड एक्सलेंट चॉइस ऑफ स्टफ व्हाट आई हैव इज रूट्स वेजिटेबल्स लीन मीट हॉट बेवरेजेस जैसे कि अदरक वाली चाय. ओके, दिस इज रियली नाइस. तो आप अगर आपको ठंड लग रही है तो आप क्या खा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है जो आपको नहीं खानी चाहिए जो आपको ठंड लगती है वो है आपको लेना डेफिनेटली नहीं चाहिए जहाँ पे आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, आपका सॉर थ्रोट हो सकता है, इज़ क्लियर. एंड ऑफ कोर्स इट्स अल्कोहल, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, शुगरी स्वीट्स, ग्रीसी फ्राइड फूड और कुछ जैसे पोटैटो चिप्स वगैरह हो गए. फोकस कीजिए गर्म पानी पीने के लिए, ब्रॉथ्स में आपको पता है कि दे हेल्प एंड सॉफ्ट फूड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. तो आप इन चीज़ों को अगर आप ले लें अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ रेस्ट, सी द डिफरेंस. नाउ कमिंग टू द सिक्स वर्ड स्टोरी, क्या है आज आपकी सिक्स वर्ड स्टोरी?
0: Please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
2: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
3: Let's go.
2: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
4: Jackie didn't think she needed a DVS system.
5: Our home is brand new.
4: Does your new home have condensation? And can it get a bit stuffy sometimes?
5: Yeah, it does.
4: New homes are built tight. They don't breathe very well. DVS can help with that. We have innovative ventilation solutions for all types of homes, new or not so new. Say yes to DVS for a drier, more comfortable home.
6: The heart of a healthy home, DVS.
7: Reliance Ventilation System.
8: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
7: Moisture और ventilation का problem लगता है.
8: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
7: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
9: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.

0: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
1: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
0: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
1: पर डेवलपमेंट के पैसे
0: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
2: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
3: Want to save $500 on your booking at Flight Centre? Bundle your international flights with travel insurance plus an international cruise or tour of 7 nights and save. Terms and conditions apply. Book in store now.
4: Get dinner sorted with fresh deals at New World North Island, like whole chicken legs, $7.99 per kilo, or Pam's stir fry kits, $4.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
5: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
6: You know, I just love the promptness which you all show. और खास तौर पे तब जब मैंने आपसे बात की थी that अभी हम खाने के बारे में बात की थी, तो इन्होंने बताया that cold pizza cures warm broken hearts. अब इसमें ठंड भी आ गई, इसमें सब कुछ आ गया. Cold pizza cures warm broken hearts. All right, this is lovely. Thank you so much. And आपका टेक्स्ट आया है 1086. Thanks a ton. वैसे आपको बता दूँ, 21st of August को आप क्या कर रहे हैं? थोड़ी वार्मथ और थोड़ा अगर माहौल में आपको जोश चाहिए तो एक बहुत ही खूबसूरत सी शाम हो रही है by the Grand Three Corner Kirtan Night. ये वैदिक सेंटर में होने वाली है. $20 की ये टिकट्स हैं. अच्युतन नायर जो सिडनी से हैं और साथ साथ नितिन गाउंडर ऑकलैंड के, लाउटुका फिजी के अश्विन कुमार आपा ये परफॉर्म करने वाले हैं. तो डेफिनेटली ऑकलैंड भक्ति सत्संग में आप पहुंच सकते हैं, इनके साथ शामिल हो सकते हैं. न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इन्वाइट कर रहे हैं फॉर द 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट. ये इसी सैटरडे और संडे के दिन बकनहेड स्काउट्स हॉल में होने वाला है. आप अगर जानना चाहते हैं अबाउट कैरम एंड अबाउट लॉट ऑफ अदर थिंग्स, तो डेफिनेटली अनफिल्टर्ड में सैंडी और रुस्बे ने पंकज जो हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं फॉर कैरम एसोसिएशन ऑफ न्यूजीलैंड, इनसे बातचीत की इन्होंने. तो ज़रूर अगर आप सुनना चाहते हैं, CV लिख के भेजें और ये एपिसोड 5599 पे आप जब लिखेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी.
5: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: झुमका बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
1: पूरे शहर पे कब्जा होगा राज होगा
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स हम
2: देखिए कहीं तो झुमका गिरा है लेकिन कहीं तो बर्फ गिरी है और ये डेजर्ट रोड जो है ये डेजर्ट रोड सॉरी नॉट डेजर्ट मैं खाने में ही अटकी पड़ी हूँ स्टेट हाईवे 1 वहाँ हैवी आइस है और बहुत ही फ्रीजिंग कंडीशंस है प्रोबेबली कॉजिंग जो मोटरिस्ट हैं स्टेट हाईवे 2 के आसपास माटावाई के आसपास जहाँ पे डेजर्ट रोड बिटवीन वायूरो एंड रंगीपो जो है ये आज बंद कर दी गई है मॉर्निंग में और ये पता चल रहा है ये क्लोजर जो है ये सुबह के समय हुआ और इसके बाद कहा जा रहा है ओपुटिकी और गिस्बन एरिया में भी जो वहाँ पे एरियाज़ को बंद कर दी गई क्योंकि वहाँ हैवी आइस के बारे में बताया जा रहा है नाउ दिस इज़ एग्जैक्टली वाई हमें बहुत ज़्यादा ठंड और भी लग रही है सो प्लीज़ ड्राइव विद एक्सट्रीम कॉशन और ये ड्राइविंग कंडीशंस अच्छी नहीं है स्पेशली फॉर द पायलट व्हीकल्स और रो जो है जो आपकी रोड्स जो हैं सामने आप एज अ क्रू अगर साथ में जा रहे हैं मेक श्योर दैट यहाँ पे दोबारा बर्फ़ पड़ सकती है ये फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और भी बढ़ सकते हैं तो मेक श्योर आप केयरफुल रहें जैसे भी रहें बस ठीक ठाक रहें 3 डिग्री तक आज टेम्परेचर आने वाला है मुझे तो ये सोच सोच के बताते हुए भी ठंड लग रही है

0: time with Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: Adbhut.
2: अद्भुत चीज़ें तो बहुत होती हैं, लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और यूनिक भी मैं कह सकती हूँ, ये भजन जैम का एक्सपीरियंस आप रवितेश देव के साथ कर सकते हैं, जहाँ उन्होंने डिवोशनल म्यूज़िक फ्यूजन भजन कीर्तन जो है ये इन्होंने प्लान किया है अलॉन्ग विद टैलेंटेड वोकलिस्ट accomplished musicians और एक vibrant live concert आपके लिए तैयार कर दी है. एनजेड कल्चरल ट्रस्ट के साथ मिलकर इन्होंने इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फीजी ये इसी सैटरडे के दिन शाम 7 बजे वैदिक सेंटर में होने वाली है. डो नॉट मिस दिस आउट. बच्चे अंडर फाइव आर एब्सोल्युटली फ्री. तो एक मेमोरेबल शाम जहाँ पे लाइव म्यूजिक डिवोशन और कम्युनिटी इंटरेक्शन आपके लिए हो सकता है. eventbrite.co.nz के जरिए आप टिकट्स भी खरीद सकते हैं.
0: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
4: ये गलत बोल दिया यार.
3: और पहनता भी नहीं है उसको.
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया अभी.
4: अभी ब्रांड हो गया ना.
3: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
6: Andy didn't think he needed a DVS system.
7: Nah, we're all right, aren't we?
6: But Andy forgot about his daughter who suffered from asthma and allergies.
8: Yeah, Dad.
6: So, Andy got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work making their rooms drier, healthier and more comfortable. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
9: The heart of a healthy home, DVS.
10: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
11: बिजी सुबह हो या शाम का जल्दी का खाना, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर बनाएं. हर मील हेल्दी और डिलिशियस, हाई प्रोटीन, रिच इन फाइबर और स्वाद से भरपूर. ये है हर घर का बेस्ट चॉइस. अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर 100% ऑथेंटिक और माँ के प्यार जितना शुद्ध. आज ही करें ट्राई. आपके नजदीकी स्टोर में उपलब्ध है. स्वाद भी, सेहत भी.
12: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
13: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें.
12: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और 2 और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
13: पर डेवलपमेंट के पैसे
12: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
14: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल. 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री. परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी डिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस. ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट. Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
15: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
14: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
15: Available at selected branches. T's and C's apply.

0: रेस्क्यू में रिसाइकल में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, कभी कभी जो रैपिंग पेपर्स होते हैं, रिबन्स होते हैं, गिफ्ट बैग जो बर्थडे हॉलीडे से हैं, आप उनको संभाल के ज़रूर रख सकते हैं। आई डू दैट क्योंकि कभी कभी यू नो हम कुछ बाहर से ख़रीदते हैं, बट वो गिफ्ट जो बैग्स होते हैं बहुत ही क्यूट होते हैं कुछ तो, और जो रिबन्स होते हैं, जो रैपिंग पेपर का भी यू नो दे रैप इट अप ब्यूटिफुली, लेकिन आप अगर चाहें तो आप यू नो इस तरह से चीज़ों को इकट्ठा करके संभाल सकते हैं एक साथ। और साथ साथ मैं कह सकती हूँ ग्रोसरी बैग्स, इनको फ्लैटन कर सकते हैं ब्राउन बैग्स को, और इनको प्रोटेक्टिव स्कूल बुक के कवर्स की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं या रफ रैपिंग पेपर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे दो तीन तरह की चीज़ें होती हैं। ऑफकोर्स ये जो ब्राउन पेपर होता है, जो पेपर बैग्स होते हैं, इनके अंदर आप अगर हरा धनिया भी रखते हैं तो भी आप समझ लीजिए दैट इट रियली वर्क्स वेरी वेल। ऑल राइट, आई होप कुछ जो बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं वो आपके किसी ना किसी फायदे किसी ना किसी तरीके से आपको फायदेमंद लगा।
1: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: 800 रचना इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: तो भाई मैं यहाँ से तो जा ही रही हूँ अभी, और अभी आ रहे हैं आपका साथ निभाने के लिए। आई थिंक दिस इज़ वाहिद अहमद, एक राइटर हैं जिन्होंने मुझे अभी थोड़े देर पहले कॉल किया था, जब मैं आपसे सपनों के बारे में बात कर रही थी ना कि भाई सपने 3 सेकंड तक के होते हैं, उनके हिसाब से ज्योग्राफिकल जो नेशनल ज्योग्राफिक में ये कहा गया कि एक ड्रीम 3 सेकंड्स का होता है। आई एम गोइंग टू बी रीडिंग अबाउट इट एंड कमिंग बैक टू यू टुमारो ऑन इट, बट अ बिग थैंक यू टू यू जो आप मुझे सुन रहे हैं और आपने अभी कॉल बैक किया, क्योंकि मैंने आपका नाम नहीं लिया था एंड देन आई वाज फीलिंग वेरी गिल्टी कि मैं कैसे आपको एड्रेस करूँ। तो ठीक है जी, अभी के लिए यही कह सकती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, जितने लोगों ने अभी ट्यून इन किया है, एंड वेरी वेरी नाइस डे आपका निकले। स्टे वॉर्म, स्टे हैप्पी एंड लुक आफ्टर योर सेल्व्स। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ दैट कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है हम्पवार या बुधवार, मेरी मुलाकात होगी आपसे वो दिन कहलाएगा गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार, जो भी इसे आप कहना चाहें, लेकिन अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आने का पक्का वायदा करती हूँ, और विद सम मोर इन्फॉर्मेशन, सम मोर बातचीत, आई विल बी देयर। सो लुक आफ्टर योरसेल्व्स। हरिहरन के इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के बाद नुसरत फतेह अली खान साहब के एक गाने को आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल वेदर, स्टे वार्म, कीप हैविंग वार्म वाटर।

0: के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09-279-439 और विजिट legalassociates.co.nz।
8: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
9: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
10: And award goes to Indelible Homes.
9: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
11: Kahani of Indelible Homes.
12: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
13: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
12: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
13: Available at selected branches. T's and C's apply.
14: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
15: Good afternoon, I'm Glenn Stewart with the latest at midday. A man accused of murdering his parents and trying to kill his brother on Auckland's North Shore has appeared in court. As RNZ reports, Mark Govinden's name suppression lapsed. The 41-year-old is set to go on trial next year. A majority of retail employees fear abuse and harassment is going to get worse. Workers First Union points to short staffing as a main contributor. Spokesperson Rudd Hughes says they already had a big push on this 2 years ago.
16: We thought we might start to see some differences from companies, but not a lot has changed. And more than half think things are going to get worse again over the next year.
15: The Defence Force is looking to the future of modern warfare. It's begun specialist first-person view drone training. Lieutenant Colonel Simon Galk says it's a lot of work.
17: The soldiers who attended that course learnt how to construct an FPV drone, then were taught how to fly that drone, and then also taught how to tactically employ that drone as part of a small team.
15: And a more than $400,000 fine has been slapped on a Bay of Plenty labour hire company and its former director. Bhuta Singh Dillon of Indo-Kiwi Horticulture Limited was found to have underpaid four Indian nationals. Three of them were also made to unlawfully hand over tens of thousands of dollars from their wages. The former workers will each get $33,000. In sport, rugby league with Machinery House in a league of their own, and high praise for Chanel Harris-Tavita, who starts at halfback for the Warriors against Souths on Saturday. He took a break from the NRL in 2023, and Matty John said on Fox Sports his return has been remarkable.
18: It's the biggest turnaround I've ever seen in careers. Yep. Chanel, he's come back, and mate, geez, he's playing great.
15: And in football news, Barcelona have signed Spanish FIFA World Cup winner Rodri from Manchester City for $150 million.
14: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
19: वेस्डे 19th of August और आज के लिए सनसेट एट 5:51 PM और मिनिमम टेम्परेचर्स एट अ वेरी कोल्ड एंड फ्रीजिंग 4 degrees ओवरनाइट रहेंगे. इसके साथ में वेदर जनरली फाइन बताया जा रहा है, कुछ कुछ जगह पर हल्की बारिश भी हो सकती है.

क्या रा बुला सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपका साथी, जुड़ गया हूँ एक बार फिर आपके साथ में ऑन योर फेवरेट डाल। हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और यह है लंच बॉक्स, एक गर्मा गर्म हॉट एंड सीजलिंग लंच बॉक्स का प्रोग्राम आपके लिए लेकर आया हूँ। अभी से लेकर शाम तीन तक हमारा और आपका साथ रहेगा 104.2 FM, साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं, आप देश में हैं या फिर बाहर विदेश से हमें सुन रहे हैं, आपका खास स्वागत करते हैं। बस ऐसे ही साथ देते रहिएगा और याद रहे 5599 इज आवर नंबर, इसके अलावा 0800004866 पर आप अपना प्यार जता सकते हैं। मैं हूं अवि, लेकर आया हूं ढेर सारी बातें आपके साथ में शेयर।